चार वर्णों और आश्रमों में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, और जो कर्तव्य से गिरा हुआ होता है वो छोटा हो जाता है। आइए इस भजन के माध्यम से सुनिए।

परमात्मा सब देश काल आदि में परिपूर्ण है। संसार के सत्यता मानने से ही मनुष्य परमात्मा से दूरी का अनुभव करता है।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों की सेवा में मैं संजय आपके साथ इस समय जुड़ गए हैं। और यही आशा लेकर कि कुछ समय आपके साथ व्यतीत करेंगे।

भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिनका आज जन्मदिन है उन्हें बहुत से बधाई दिया जाता है। इस परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है तो परिवार को बहुत से बधाई दिया जाता है। जो अपने नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं तो उनको भी फाइन दाखतु कवेंस एंड फेल वर्क प्लेसियर। जो अपने तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए यानी कि अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए तो माँ सरस्वती को आपको नहीं भूलना। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

रोटरडम में भी राम मंदिर। इसी तरह से हॉलैंड में मंदिर का कमताई नहीं है।

जिनके हृदय श्री राम बसे, ये गीत जो मुकेश जी के आवाज में हम सब सुने और नई हतीन ससन सईफ अंतक में उन्होंने इस गीत को यानी ये भजन को गाए है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं।

अंतर आत्मा को कुछ गलत लगे तो उस पर विचार अवश्य करे, क्योंकि ये अंतर आत्मा ही है जो हमारी वास्तविकता भला भांति जानते हैं।

जीवन किसी से बंधा नहीं होता, बंधी होती है तो उम्मीदें, भावनाएं, आशाएं और भरोसा।

एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए और मन में यह रखे कि अगर मैं जीत गया तो प्रभु मेरे, और अगर मैं हार गया तो मैं प्रभु का।

तो ये हार जीत का संदेश कि अगर मैं हार गया तो, और अगर मैं जीत गया तो। सुनने वालों, हम एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

गलत हूँ वह राह दिखाओ, लेकिन जहाँ मैं सही हूँ वहाँ मेरा साथ निभाओ।

की अनंत प्रेम के मोती राधा, फूलों का खुशबू है राधा, नदियों का धारा है राधा, मोहन को मोह लेती है राधा।

कृष्ण प्रेम में तपती राधा, श्याम के मन में बसती राधा, वृंदावन की हस्ती राधा, महारास की जान है राधा, मिश्री से भी मीठी राधा, श्याम चंदा तो चकोरी है राधा।

वंशीवट की छाया है राधा, मुरली की हर धुन है राधा, प्रेम का हर कन कन है राधा, मोहन की मन मित है राधा। सूरज की किरणों सी राधा, आधी कृष्ण आधी राधा, गोविंद का आधार है राधा।

स्वस्ति मेहुनों के आवास में हम ये सुंदर सा भजन को सुने। कहते हैं कि कन कन में कृष्णा बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी बसे, मन में बसे हनुमान। सुनवाना सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। और ये कहना चाहूंगा कि श्रीमान खेमराज जी ने एक अच्छा संदेश को भेजे हैं। Het leven is een cirkel van geluk, verdriet, moeilijke tijden en gelukkige tijden. Als je een moeilijke tijd doormaak, onthoud dan dat er vredige momenten zullen komen. Sriman Khemraj ji ne ye sandesh ko bheje, een schrijver, filosoof, jo dharm ke bare mein bhi kafi likhte padte hain।

जय जय श्री राधे। पुराणों में राधा नाम की महिमा का बखान बहुत ही विस्तृत रूप में किया गया है। राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये एक महामंत्र कहा गया है।

इस नाम का जप यदि पूर्ण भक्ति भाव से करे तो स्वयं भगवान कृष्ण भक्तों के अधीन होकर सदैव अपनी कृपा बरसाते रहते हैं।

कहा जाता है कि राधा नाम के जप से भक्त को शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों की प्राप्ति होती है।

भी ऐसा कहा गया है कि श्री राधा रानी जी का चरणों के रज को पाने के लिए खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ललायत रहते हैं।

सुंदर सा भजन राधा रानी के अंतर्गत काफी संदेश इस भजन में जो रखा गया गोपाल कृष्ण तिवारी के लिखे गए ये सुंदर सा भजन और अपना आवास दिए है गौरांगी अरोरा जी, नंद रानी गोपी जी और नंद किशोर निमय।

सच्चे शांति। सच्चे शांति वहां है जहां इच्छाओं का अंत होता है। ईश्वर जी ने ये सुंदर सा संदेश भेजे है। ईश्वर जी आपको बहुत सा धन्यवाद। और दूसरा संदेश आपका मैं जरूर रखने की कोशिश करूंगा कि मन एक ऐसी जमीन है जहां आप जैसे मानसिकता का बीज बोएंगे आपको वैसा ही फल प्राप्त होगा। हमें ये सिखाया गया था बचपन में कि बोया पेड़ बबूल का तो आम के प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो। ईश्वर जी के ओर से ये सुंदर सा संदेश। अगर आप ये संदेश में कुछ भी ध्यान देते हो तो जरूर आज एक ऐसा दिन बनाइए, ऐसा वृक्ष को और बोइए जिसे आपके लिए आगे में जाकर मीठा फल को प्राप्त कराए।

मस्त रहे। एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। हम कार्यक्रम का रूप कुछ बदल देते हैं और आपके साथ अभी जुड़े रहेंगे।

सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत का मांग करने वाले श्रीमान रबीन जी जो फैखल से ये कार्यक्रम को सुनते हैं और इस बात को कहते हैं कि मैं हूं ना, ये तीन छोटे छोटे शब्दों से जुड़े हुए कि मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं। सुनने वालों, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, इंटरनेट द्वारा आप दुनिया के हर एक प्रांत में सुन सकते हैं और अगर आपके पास भी कोई संदेश है तो जरूर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम कोशिश रखेंगे कि या आपके जो संदेश है हम यहाँ से सुना सके। हम अगला सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और जैसे कि रबीन भाई जी ने कहा है कि ओल्ड इज गोल्ड, तो क्यों ना एक और पुराने गीत की ओर बढ़ते हैं।

ओल्ड इज गोल्ड कहा गया है ये सुंदर सुंदर गीतों को, और आज मैं उसी के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। भाई रामेश्वर जी ने संदेश को रखे है, और संदेश का बोल ये है कि सीमेंट, जिसे हम सीमेंटी कहते हैं, सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नंबर यानी कि द क्वालिटी होना जरूरी है, और जुड़े रहने के लिए सख्त होना भी जरूरी है। तो ये सुंदर सा संदेश है जो हमारे लिए और भेजे भाई रामेश्वर जी, धन्यवाद हो आपको। हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और गीत का बोल, गीत जो निकाला गया फिल्म एक फूल दो माली 1969 से, और जो बनाया गया, पिक्चराइज किया गया फिल्म

ये सुंदर सा प्यार भरी गीत को हम सुने सुने वालों, ये भी कहा जाता है कि बस अपना प्यार में फंसे मत रहना, और ये भी सुन लेना कि माँ का प्रेम वह अमृत है जिसको पाने के लिए स्वयं परमात्मा भी तरसते हैं। तो क्यों ना एक वैसा गीत हम सुने।

ये सुंदर सा गीत है जो सुनाया गया सभी माताओं के लिए, जो आज कितने माताएं हैं जो अकेले घर से और बैठे हुए, ना कोई बच्चे उनके पास, ना कोई रिश्तेदार उनके पास। प्रकृति ये हमें सिखाते हैं कि पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देता है, वे तो बस उसे उड़ने की कला सिखाते हैं। इसी तरह से हम मनुष्य को भी, हम लोगों को भी ऐसे, हमारा जब जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमारे सेवा करते हैं, हमारे और पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और एक न एक दिन हम उड़ जाते हैं और बाकी बचते हैं घोंसला में कौन, कहीं माता है कहीं पिता है, और एक न एक दिन फिर वापसी हो जाता है। तो जिंदगी में ये जरूर हमें जानना चाहिए, जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाइए, रोज कुछ अच्छे याद रखे और कुछ बुरे भुला जाइए।

दोस्तों सुनने वालों, पा लेने का बेचैनी और खो देने का डर बस इतना ही है जिंदगी का सफ़र।

दोस्तों सुनने वालों, ये भी हम जाने कि सब्र में वो ताकत है जो सताने वाले को भी बुनियाद तक हिला देता है।

गवर्नर जी के ओर से यह संदेश भेजा गया कि उन्हीं यादों को सहेजिए जो आँखों में चमक पैदा करे, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करे।

परमेश्वर जी का ये संदेश मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्हीं यादों को सहेजिए जो आंखों को चमक पैदा करे, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करे।

सुनने वालों, ईश्वर जी ने एक और संदेश को और रखे हैं, हम उसे भी आपके लिए और सुना देते हैं कि सात समय और समर्पण दुनिया का सबसे अच्छे भेंट है। तो ईश्वर जी आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा सुंदर सुंदर और संदेश को हमारे लिए भेजते हैं।

एक सुंदर सा दिन आपको होए और कहते हैं कि एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब, एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब, कोशिश रहे कि कहानी अच्छे हो।

बस यही है जीवन, रिश्तों को कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सुखी पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। तो दोस्तों, इन बातों पे ध्यान देते हुए एक शुभ दिवस आपको प्रस्तुत किया जाता है और एक और सुंदर सा ओल्ड इस गोल्ड, जो पुराने गीत के ओर हम प्लेयर पे चुन करके रखते हैं।

जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, और ये हम जाने कि दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है। इसीलिए उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का।

जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, और अकेले होने से इस ज्ञान को प्राप्त हुआ कि अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से जीवन भर टिकते हैं।

जीवन में भी कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं। और ऐसा भी है कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं।

क्यों ना कोई सराहना करे या निंदा, लाभ आपका ही है। कारण यह है कि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। तो क्यों ना हम एक सुंदर सा ओल्ड इज गोल्ड आज उसी मूड में हूं।

सुनो लो हम सभी मुसाफिर होते हैं और कहते संबंध अगर हृदय से हो तो मन कभी नहीं भरता है।

दोस्तों, सुनने वालों, ये गीत, सुंदर सा गीत जो किशोर कुमार जी के आवाज़ में, कि मुसाफिर है हम यारो, इसी पे कुछ और जोड़ दिया जाता है कि हम जब इस बात को जाने कि पिता कभी नहीं कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, और माँ ने कभी नहीं कहा कि मेरा

तबीयत खराब है, इन्हीं दो झूठ की वजह से आपकी दुनिया सुंदर बनी हुई है। तो आज अपने समय निकाल करके क्यों ना अपने माँ को हम फ़ोन करते हैं, अपने पिता को फ़ोन करते हैं जो आज है इस दुनिया में, क्योंकि हम भी हैं मुसाफिर और एक ना एक दिन तो वापसी है हम सभी का।

और दोस्तों इस बात को हम भी जाने कि क्रोध और आंधी सामान्य है, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है।

जैसे कि अभी आपने सुना कि हम मुसाफिर हैं, जाने के बाद यही लाकर तुम्हें लिटा दिया जाएगा, तुम्हारी दौलत पद मान सम्मान प्रतिष्ठा चिंताएं सब एक घंटे में जल करके राख हो जाएगा।

जिन रिश्ते के लिए रोते हो वो तुम्हारे पूरे जलने तक भी नहीं रुकेंगे। संतुष्ट रहना सीखो। संतुष्ट रहना सीखो, जितना मिला है पर्याप्त है।

दोस्तों सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और यही आशा रखता हूं कि जितना देर तक हम कुछ पुराने गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहे और आपको जरूर कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा लगा होगा। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए हमारे कोलेखा साथी जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, सभी को एक शुभ दिवस नमस्कार, विश यू अ प्लेजेंट डे।

0: वक्रतुंडा महाकाय सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम सब कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। शांता जी से आग्रह करूंगा कि पहले कुछ कहे, फिर बबली जी भी उपस्थित हो गए स्टूडियो में, फिर उसके बाद में राजेंद्र जी हम सबको कुछ कहने वाले हैं, और उसके बाद में विवान जो योंग्र के लिए भी यहाँ पर बैठे हुए हैं।
1: रिश्ता निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, रिश्ता निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, बस दिलों में प्यार चाहिए। उसको निभाने के लिए आपको अभी से शुभ महासंक्रांति कहते हुए स्वीकार कीजिए शांता की प्यार भरी राम राम नमस्कार प्रणाम और ज्योति का प्रकाश के प्रोग्राम। आप सभी को स्वागत कहते हुए और हार्दिक से भी बधाई है।
2: फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को बहुत मुबारक, उनको जो हमको इस प्रकार से प्यार से सुनते हैं और अपना समय सुनने में और कुछ सीखने में भी इस रेडियो के माध्यम से लेते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आज की हमारे बीच में यंगरा के लिए। विवान जी हैं, बबली जी उपस्थित हुई हैं कुछ अपना कार्यक्रम के साथ में, और शांता जी और संजय जी और मैं तो हर बार रहते ही हैं। और आज का जो विषय है वो है पौष मास के व्रत और त्यौहार में जो मेन विषय एक मकर संक्रांति का त्यौहार है। मकर संक्रांति जो होती है, इस दिन पौष माह के महीने में इलाहाबाद में माघ मेला लगता है। क्यों ना बबली जी कुछ कहना चाहे, इसके बाद हम जो उदास बैठे हैं उनकी उदासी दूर की जाए।
3: मेरी ओर से सुनने वालों को नमस्कार। लोहड़ी का त्यौहार है तो उसके उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी।
2: हाँ, थोड़ी देर में बताना है, केवल आपका नमस्कार अभी है, इसके बाद एक वर लोहड़ी का जो त्यौहार है वो भी बहुत ही फेमस त्यौहार है भारत में। उस दिन खूब ढोल नगाड़ी और लोहड़ी जलाई जाती है और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। बबली जी लोहड़ी का कार्यक्रम करेंगे, हम कल के लिए करेंगे, और संजय जी और विवान जी भी हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विवान जी
4: सबको नमस्कार।
2: तो क्यों ना उदासी मन के लिए उदासी दूर की जाए। संजय जी।

0: मेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। तो राम जी तो सबका बेड़ा पार करते ही है, उदासी मन नहीं होना चाहिए। हाँ तो तब तक हम बात कर लेते हैं, आज का जो विषय था उसकी ओर बढ़ते हैं।
1: पर यहाँ पर ये बात हो जाता है कि ये कार्यक्रम के लिए जो हमारे विशेषज्ञ जो है, जिनका हम सब बहुत धन्यवाद कहते हैं, भाई संजय शर्मा जो पहाड़गंज से, भाई रिंकू कालिया जी जो मोहन गार्डन से, जो बजरंगी सेना का सभापति है, और श्रीमती रत्ना जी जो दनहाग से, हम सब के लिए जो विषय को खोज खोज करके रखते हैं, तो हम सब बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि जो हम सब के लिए ऐसा, क्योंकि कार्यक्रम के बनाने के लिए हम सब तो यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, उपस्थित होकर के और हम सब अनाउंस यानी कि कार्यक्रम को बना देते हैं, पर जो तेईमा होते हैं ना, तो ये तेईमा खोज खोज कर हम सब के लिए रत्ना जी, संजय शर्मा जी और रिंकू कालिया जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि ऐसे हम सब के इस कार्यक्रम में ज्योति का प्रकाश में अपना सहयोग दिए हैं। ख़ास करके हमारे जो टीम है, जो हवांत में, जो हम लोग यहाँ दनहाग से इसको प्रेजेंटेयर करते हैं, तो अभी उसके बारे में बातचीत होने वाले है। पर बबली जी, आप कुछ कहने वाले थे?
2: हाँ जी जरूर, मैं आज लोहड़ी के बारे में कुछ कहने वाली थी, लोहड़ी का त्यौहार।
1: क्योंकि बबली जी, लोहड़ी साल में कई बार होता है?
2: एक बार।
1: और साल का ये लोहड़ी होता है एक ही दिवस के होता है, ये बदलता नहीं है?
2: नहीं, ये तारीख बदल जाती है, कभी 12 को आती है, कभी 13 को आती है,
1: पर उसी आसपास में।
2: हाँ जी हाँ जी,
0: 13 को ही ज्यादा करके मनाया जाता है,
1: 13 को। तो उसके अंतर्गत में आप कुछ सुनाने वाले हैं?
2: हाँ जी, लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति, ये तीनों त्यौहार इकट्ठे आते हैं। लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती है, पोंगल साउथ में मनाया जाता है, और मकर संक्रांति पूरे भारत में मनाई जाती है।
1: तो राजेंद्र जी,
0: जी
1: क्योंकि लोहड़ी अभी बबली जी कहने वाले हैं, लोहड़ी के बारे में काफ़ी जानकारी मेरे ख्याल से लेकर आए हैं, पर हमारा मन में ये है कि जैसे कि हम सब कार्यक्रम में उसमें जोड़ देते हैं गीत,
0: हाँ,
1: तो क्यों ना पहले हम अपने लोहड़ी के अंतर्गत में थोड़ा गर्म हो जाते हैं।
0: जरूर।
1: पर बबली जी उंगली उठा दिया है कि पहले कुछ कहना है।
0: हाँ,
2: गीत से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ।
0: बोलिए।
2: मूंगफली की खुशबू और गुड़ की मिठास, मक्के की रोटी और सरसों का साग, दिल की खुशी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको लोहड़ी का त्यौहार।
0: तो इसी बात पे,
1: और ये भी आशा रखता हूँ मूंगफली और यानी कि गुड़ का वो सब आज हम लोग को मिलने वाला, मेरे ख्याल से
0: मिलने वाला।
1: तो चला देते हैं
0: जरूर।

0: गाना खत्म और ये गीत बड़ा सुंदर रूप से हम सब के वो स्फेयर क्रिएट किया कि अभी हम अपने विषय के ओर भी बढ़ेंगे, पर विषय में ये भी जोड़ दिया गया है आज। और लोहड़ी के अंतर्गत ये लोहड़ी क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है और इसका मूल्य बात क्या क्या है, उस अंतर्गत में बबली जी हम सबको सुनाने वाले हैं।
1: बबली जी इसमें एक्सपर्ट है, बबली जी जरूर बताइए।
0: बबली जी आपके लिए माइक्रोफोन जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है आपके लिए, तो राजेंद्र जी जरा से माइक ऑन हो गया है और आप लाइव है जो इस समय फाहून हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा से 188 देशों में सुना जा सकते हैं। तो हम सबको बताइए कि लोहड़ी क्या है और उस अंतर्गत में।
2: लोहड़ी का त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है।
0: पंजाब में?
2: हाँ जी हाँ, क्योंकि वैसे तो सभी मनाते हैं लेकिन पंजाबियों का त्यौहार है, क्योंकि जिस लड़के की शादी हुई हो वो पहली बार ऐसे धूमधाम से धूम धड़क्के से लोहड़ी मनाते हैं।
0: ऐसा?
2: हाँ, और जिनके पहले बेटे के बेटा हुआ हो यानी पोता हुआ हो वो लोग भी बड़े धूम धड़ाके से लोहड़ी मनाते हैं।
0: खूब धूम धड़ाके से लोहड़ी मनाते हैं।
2: हाँ जी।
0: और इसमें ये सिर्फ एक त्यौहार है जो जिसके घर पे नया परिवार आया है और जिसका विवाह हुआ है उसके लिए, या कुछ और है इसमें कि कैसे मनाया जाता है, क्योंकि ये ठंडी समय चल रहा है भारत में।
2: ठंडी समय भी है और वो इसीलिए कि इसमें थोड़ा खाने का भी आ जाता है। ठंड में कहते मूंगफली खानी चाहिए।
0: मूंगफली बोले तो?
2: पिंडा।
0: पिंडा। और
2: रेवड़ी खानी चाहिए।
0: रेवड़ी बोले तो?
2: रेवड़ी मैं नहीं जानती कि क्या कहते हैं।
0: शांता जी आपको पता है रेवड़ी क्या?
1: मैं तो पहली बार सुन रही हूँ रेवड़ी क्या है।
0: तो हमारा
2: चीनी के ऊपर तेल लगा होता है। हाँ। उसे रेवड़ी कहते हैं।
0: सेसम कुकीज़ जो अभी आपने अभी राजेंद्र जी हम सबको खिलाए।
2: हाँ जी, और पॉपकॉर्न भी होते हैं।
3: नहीं, रेवड़ी दूसरा।
0: रेवड़ी तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए राजेंद्र जी, क्योंकि अभी तो हमने खा लिया और अच्छा लगा, बड़ा स्वादिष्ट था।
3: चीनी को घोल के फिर उसमें तिल लगाए जाते हैं, बाहर से
0: तिल लगाया जाता है,
3: तो उसको रेवड़ी बोलते हैं। मीठी होती है
1: ये।
3: और जो हमने अभी खाया है वो रामदाना का बनता है।
0: रामदाना गुड़ के साथ।
3: हाँ।
0: रामदाना जो गुड़ के साथ। तो हमारे सुनने वालों जो इस समय सूरीनाम में सुन रहे हैं, डेनहाग शहर में सुन रहे हैं और ख़ास करके लिख्तफोर्द शहर से सुन रहे हैं, तो बोले रामदाना तो उसके मतलब क्या है?
3: एक मारसा बोलते हैं उसको, छोटा छोटा एक दाना होता है जिसको फुला के उसको गर्म उसमें तवा पे, वो तवा नहीं कढ़ाई में गर्म करके उसमें डाल दिया जाता है। जैसे उसमें गर्म पे पड़ता है एकदम फूल जाता है। जब फूल जाता है तो उसको गुड़ के साथ उबाल के गुड़ को मैश करके और पका के गुड़ को फिर उसके साथ मिला के फिर उसको लड्डू बनाया जाता है। ये तो पट्टी बनाई जाती
0: है। पट्टी कहते हैं इसे, फ्लैट।
3: फ्लैट
0: जैसे कि हम लोग के जो हमारे घरे पूजा आदि होते हैं तो जैसे रोट वैसा।
3: वैसा
2: रोट तो आटे का बनता है, वो तो पिसान का बनता है।
3: सपाट।
0: सपाट। और
2: ऐसी एक गच्चक भी होती है।
0: गच्चक, तो गच्चक क्या चीज है?
2: वो गुड़ की भी बनती है, चीनी की भी। वो भी ऐसी जैसे बनता है अभी मास्टर जी ने।
0: तो मास्टर जी ने इस बात के हम सबको और बता ही दिया है कि गुड़ और के कैसे ये इन चीजों पर। अगर राजेंद्र जी, क्योंकि हम रह रहे हॉलैंड देश में, ये कार्यक्रम चल रहा है हॉलैंड देश से। हॉलैंड देश में कहावत है कि चाहे मौसम गर्मी हो या ठंडी हो, चाहे कोई

0: हाँ बबली जी शुरू करिए।
1: मैं त्योहार के बारे में बता रही थी कि लोहड़ी में लोग रात को इकट्ठे होते हैं और आग जलाते हैं।
2: आग जलाते जैसे कि
1: जैसे ठंडी का मौसम है तो ठंड है भारत में, तो आग भी सेकते हैं और साथ में रेवड़ी मूंगफली ये चीजें खाते हैं और अपना त्योहार मनाते हैं।
2: वो रात में आग लगाया जाता है। तो आग लगाकर उसका
1: चक्कर भी लगाते, पहले शगुन करते हैं, पूजा करते हैं, पहले
2: पूजा करते हैं।
1: हाँ, पूजा करके फिर सब में ये प्रसाद बांटते हैं।
2: तो प्रसाद बांटते हैं,
1: हाँ, फिर गीत गाते हैं, भांगड़ा करते हैं, नाचते गाते हैं।
2: गीत गाते, भांगड़ा करते, नाचते गाते।
1: हम भी बचपन में
2: बता दो भांगड़ा।
1: भांगड़ा होता है, अरे ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, उसके ऊपर डांस करते हैं। हाँ जी,
0: भांगड़ा एक पंजाबियों का डांस होता है।
1: पंजाबियों में दो डांस है, एक भांगड़ा आदमी लोग करते हैं, गिद्दा औरतें करती हैं।
2: गिद्दा औरतें करते हैं।
0: हाँ जी, कैसे करते हैं करके आप एक बार दिखाएंगे
2: तो यहाँ हमारे सभी सुनने वालों दर्शकों ये सुनने वालों के समझ में जरूर आ गया होगा। पर और कुछ कहने वाले आप?
1: बचपन में हम भी एक गाना गाते थे
2: ये लोहड़ी का।
1: हाँ जी, तो बच्चे थे तो बच्चे लोहड़ी मांगने जाते हैं, तो जैसे यहाँ पर कौन सा त्योहार होता है
2: शांता जी, जहाँ
1: बच्चे टॉफी चॉकलेट मांगते हैं।
2: विवान को पता होगा,
3: हेलोवीन।
4: हेलोवीन,
2: तो जैसे हेलोवीन के तरह, जैसे विवान कह रहे हैं, वहाँ आप जा करके और घरे घर और मिठाई मांग सकते हैं।
1: हाँ जी, हम कहते थे सुंदरी मुंदरी होए, तेरा कौन बेचारा होए, दूल्हा पट्टी वाला होए, दूल्हे दी धी वे आई होए, सेन शक्कर पारे दो, कुड़ी दे बोझे पाई हो, कुड़ी दा शालू पुट्टा हो, चाचा चूरी कुट्टी हो, जिमीदार लुट्टी हो, एक पौला कट गया, जिमीदार नस गया, वंडो रेवड़िया भरावां दीआं जोड़ियां।
2: तो राजेंद्र जी, इस पे आपको कुछ कहना है, क्योंकि अभी तो
0: बहुत ही बढ़िया बबली जी ने अभी जो सुंदरी वाला गाना बनाया है, सुंदरी मुंदरिया वाला मीट कॉर्स ने गाया है, और ये बहुत ही अच्छा है, क्यों ना हम भी इस गाने को यहाँ
2: चला देते
0: चला दिए जाए।

0: तो ये बात हुआ ना सुंदर गीत जो हम सब सुने, और पर राजेंद्र जी मैं तो कुछ समझा नहीं गीत में।
1: गीत में आप अगर नहीं समझे तो बबली जी से समझ लो।
0: बबली जी, इस गीत का और संदेश जो है ये तो मैं जरूर समझ गया, क्योंकि ऐसा हुआ राजेंद्र जी, एक बार मैं कहीं पे और कुछ पढ़ रहे थे, तो गोरे लोग थे ना, तो कुछ रिलीजन के बारे में बात हो रहा था वहाँ, और हम कह रहे थे तो वो व्यक्ति बड़ा आराम से बैठ के सुना, और तब हमने जब सब समाप्त हो गया तो हमने उसके पास गए और कहने लगे कि भाई मैं तो कुछ कह रहा था पर हमारे ज्ञान उतना बड़ा नहीं कि हम उसे और समझा सकते होलंड डच भाषा में। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें उसका चिंता नहीं है, हम ये जरूर जानते हैं कि आप जो कुछ कह रहे थे तो ठीक ही होगा। तो यही हुआ कि अभी हम सब, ये कौन भाषा में बबली जी, कौन भाषा में ये गीत गाया गया?
2: ये पंजाबी भाषा में गीत है।
0: ओ, पंजाबी भाषा में ये गीत गाया गया, और ये मेरे ख्याल से पूरा वृतांत जो कि लोहड़ी के अंतर्गत में और सुनाया गया है।
2: लोहड़ी के अंतर्गत भी है, और सुंदरी मुंदरी दो बहने हैं, और उनका रखवाला है, उनका भाई, उसका नाम था दूल्हा पट्टी वाला।
0: दूल्हा पट्टी वाला,
2: हाँ जी।
0: ऐसा
2: तो कहते सुंदरी मुंदरी होए तेरा कौन बचा रहा है, कि तुमको बचाने वाला कौन है, वो कहते दूल्हा पट्टी वाला है।
0: ओ, तो हमने तो सोचा दूल्हा की जो शादी वाला दूल्हा।
2: नहीं, उसका नाम ही दूल्हा पट्टी,
0: दूल्हा पट्टी वाला,
1: दूल्हा पट्टी उसका नाम रहे।
0: ओ, ऐसा हुआ। बबली जी, इसमें और कुछ संदेश है, ताकि हम सबको भी ध्यान देना है, समय के और बढ़ना है, पर संदेश सुना दीजिए।
2: हाँ जी, जरूर। इसमें ये है कि साग और मक्की की रोटी खाते हैं।
0: साग बोले तो
2: साग जैसे पिनासी,
0: स्पेनासी,
2: हाँ, और पांच छह सब्जी और मिला के,
0: हाँ,
2: भाजी,
0: हाँ जी,
2: उसको साग कहते हैं।
0: ओ, मिलावट कहते हैं, यानी कि ब्लथ खुरुंतन का।
2: हाँ, जितनी भी खुरुंतन है पांच छह। अब हाँ, आपको नाम तो पता नहीं होगा, इंडिया में उसको कहते हैं पालक, सरसों, मेथी, ऐसे
0: ऐसे ऐसे मिला के तो सब
2: साग बनता है।
0: साग बनता है,
2: हाँ, रात को बना के रखते हैं, और अगले दिन मकर संक्रांति के दिन उसको खाया जाता है, और उसे शुभ मानते हैं। और मक्की की रोटी,
0: मक्की,
2: मकई,
0: मकई की रोटी।
3: राजेंद्र जी, बबली जी आज बनाई से पानी पूरी और
2: दही भल्ले, पापड़ी,
3: पापड़ी,
1: ओ दही भल्ले पापड़ी,
3: भल्ले पापड़ी।
0: तो पानी पूरी, शांता जी इस पे बताइए कि आप पानी पूरी आज कुछ प्रयोग किया कि नहीं?
3: हाँ, हमने तो इतना सारे खाए कि हमारे पेट
0: और स्वादिष्ट था।
3: बिल्कुल बिल्कुल, सालों के बाद हमने आज पानी पूरी खाई, जो बबली अपने हाथ से प्रेम से प्यार से हम सब मिलजुल कर बनाई है, और यहाँ पे हम थोड़ा
0: शांता जी,
3: हाँ जी,
0: ये पानी पूरी का और एक फिल्म आया था ना होलंड बन में, बनाया गया क्वीन कंगना का, इंग्लैंड में शुरू हुआ वो फिल्म, और जो अलग अलग देशों यूरोप में जा कर के उन्होंने बनाए, तो यहाँ पर आकर के क्वीन जो है
3: ये,
0: तो उसका एक टुकड़ा बनाया गया फोलंदाम शहर में।
3: अच्छा,
0: तो फोलंदाम शहर में उस टुकड़ा को बनाया गया, तो उसमें खास करके रखा गया कि और जाकर के कंगना उस फिल्म में बनाते हैं पानी पूरी।
3: अच्छा,
0: तो गोरे को खिलाते हैं, और यहाँ पर जैसे आज हमने खाए तो पानी पूरी थोड़ा तितलुस भी होता है।
3: हाँ,
0: और गोरे लोग तीता यानी कि तीखी नहीं खाते, तो शुरू शुरू में उनको लगा कि क्या खिला दिया हमें, पर बाद में जब थोड़ा से दूर चल के गए तो उसका स्वाद जो बाद में मिला, तो वो लौट करके दोबारा आ करके और खूब पानी पूरी खाया। और इस बात पे मैं कहना चाहूँगा कि मेरा भी, मुझे नहीं पता कितना बार मैं इंडिया गया हूँ, पर जय बार इंडिया गया हूँ तो वही के पानी पूरी के स्टैंड से मैं पास होता हूँ। और वैसे तो कितनी फिल्मों में ये पानी पूरी के अंतर्गत बातचीत हो रहा है, और वो फिल्म में भी बनाया गया है, तो हम जब पास होते तो दिल करता कि क्यों ना हम एक बार एक खा लेते हैं, पर क्योंकि पानी का वहाँ हम सब के मुसीबत दे सकते हैं।
1: हाँ, कोई बात नहीं, अब की बार हम गंगा जल में पानी पूरी बना के आप लोगों को खिला
0: देंगे
1: भारत।
3: पानी पूरी कहते हैं और गोल गप्पे कहते हैं भारत में।
1: इसी को बोलते हैं,
0: सेम सेम
1: सेम
0: सेम चीजें,
3: सेम सेम, पर अलग अलग जगह में लोग अलग से बात करते हैं।
0: और राजेंद्र
3: दिल्ली में कहते हैं पानी पूरी,
2: दिल्ली में कहते हैं गोलगप्पे, बॉम्बे में कहते हैं पानी पूरी।
3: अच्छा
0: ऐसा, तो राजेंद्र जी ऐसा है कि हमें भी अपना समय पे ध्यान देना है, और समय पे जब ध्यान देना है तो यहाँ शांता जी भी उंगली उठा दिया कि उसका माइक ऑन रखना, क्योंकि
3: हाँ क्योंकि अभी यहाँ पे बात हुई है लोहड़ी के बारे में,
1: लोहड़ी
3: के बारे में,
1: लोहड़ी
3: हाँ, हाँ तो उसको उसके
1: हाँ लोडर लोहड़ी
0: लोहड़ी
3: हाँ मैं तो हाँ लोहड़ी लोहड़ी इज एन पॉपुलर विंटर फोल्क्स फेस्टिवल दैट फॉरनामलक इन नॉर्थ अमेरिका वर्ड गफीर
0: कनाडा बगल
3: नॉर्थ इंडिया
0: इंडिया ओके
3: इंडिया
0: हाँ नॉर्थ इंडिया
1: अमेरिका
3: में
1: बहुत सारे लोग भारतीय हैं।
3: हाँ तो मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ पर हमारे भारतीय लोग बसते हैं है ना वो सभी जगह अपने ये त्योहार मनाते होंगे ना। The Batikanes and the legendes over het Lahori festival zijn talrijk en deze verbinden het festival met de Punjab regio. Velen geloven dat het festival het voorbijgaand winter zonnewending markeert. तो यानी कि जैसे घाम भी थोड़ा सा अपना अलग से दिशा लेगा ना इस पे। हाँ तो ये है थोड़ा से हमने बताई है होलांस भाषा में, दच भाषा में लोहड़ी के बारे में।

0: तो राजेंद्र जी, समय का अनुसार और हम सबका
1: होता है
0: न्यूज और कमर्शियल्स के, और अभी हम सब फिर दोबारा आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004 naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. VAHON Hindoestani Radio.
2: अभी आप लोगों ने सबने न्यूज सुना, अब बढ़ते हैं आगे के कार्यक्रम की ओर। मकर संक्रांति, अभी लोहड़ी का जैसे कि बबली जी ने अभी पूरा निरूपित किया है, यानी समझाया है कि कैसे पंजाब में और लोहड़ी और इधर पोंगल और दूसरी जगह में अलग अलग प्रकार तीन इकट्ठे त्यौहार आते हैं एक ही बार में, और मकर संक्रांति अगले दिन, तो बड़े अच्छे से सब लोग समझे होंगे। बढ़ते हैं मकर संक्रांति की ओर, जो पौष यानी कि पौष का महीना ख़त्म होता और एक संक्रांति होती है जिस दिन माघ का महीना लगता है, उस दिन मकर संक्रांति।
3: राजेंद्र जी, जैसे आप कह रहे हैं कि कौन सा महीना ख़त्म होने वाले हैं हमारे हिंदू के,
2: पौष का महीना,
3: पौष महीना,
2: हाँ
3: ये ख़त्म होने वाले, तो फिर मकर संक्रांति।
2: हाँ, मकर संक्रांति से धीरे धीरे बढ़ते हैं गर्मी की ओर,
3: यानी कि गर्मी धीरे धीरे दिन और लंबा होने लगा।
2: हाँ, दिन और लंबा होने लग गया है ऑलरेडी, लेकिन अभी 14 तारीख तक ठंड ज़्यादा रहती है, 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक काफ़ी ठंड रहती है, इसके बाद धीरे धीरे सुधार होता मौसम में और गर्मी की ओर बढ़ते हैं मकर संक्रांति के दिन से। 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांत होती है, सवेरे हलवा पूरी या खीर बनाते हैं और खिचड़ी रेवड़ी रुपए मूँग की दाल चावल मिलाकर मीन शक्कर ब्राह्मण को देते हैं, साथ में सामर्थ्य होने पर कोई भी 14 चीज़ें मिशन कर गरीबों को बांट देते हैं, यानी संक्रांत के 360 प्रकार के नेग होते हैं। जिस लड़की की इस दिन इस वर्ष शादी होती है, उस वर्ष में, उस दिन में, वर्ष तो पूरे वर्ष होता है लेकिन उस दिन में मकर संक्रांति के दिन में, उस लड़की से जो भी नियम कराया जाता है दूसरे वर्ष, उस लड़की से उद्यापन करवा कर उसकी मायके से ससुराल में विशेष बयाना भी भेजा जाता है। बयाना आप समझिला
3: ना, थोड़ा से सरनामी में, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के सुनने वाले
2: बोले,
3: हमारे मामा जी तो, कार्यक्रम को सुन रहे हैं,
2: हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं तो वो भी समझे इस बात को, और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो जब लोहड़ी के दिन और मकर संक्रांति के दिन लड़की के मायके वाले बहुत सारी चीज़ें उधर लड़की के ससुराल में देने के लिए जाते हैं,
3: कादू यानी कि,
2: हाँ कादू,
3: ऐसा
2: इस बायने में मावे अर्थात खोए के 360 बये अर्थात पेड़े या लड्डू और सास ससुर के कपड़े, चांदी का दिया, बत्ती व चिड़िया, बाजरा, चावल और सामर्थ्य होने पर पूरे परिवार के लिए कपड़े भी भेजे जाते हैं।
3: ऐसा, तो ये तो बड़ा बड़का त्यौहार है।
2: बड़का त्यौहार रहे मन,
3: बड़का सूट के इसलिए के जाना पड़ता है।
2: बड़का संक्रांत पर लड़कियों के यहाँ सामर्थ्य अनुसार प्रतिवर्ष लड़की के दामाद व बच्चों के गर्म ठंडे वस्त्र, फल मिठाई, गज्जक व रेबड़ी और दामाद के टीके का लिफाफा लड़की व बच्चों के रुपए भेजे जाते हैं। बहुएं ससुर जी को जगाने और कपड़े पहनाने का नेग गुड़ की भेली, समझिला भेली ना, मतलब 2 किलो का एक गुड़ का इतना बड़ा टुकड़ा, उसको भेली बोलते हैं, गोल गोल बनता है, तो वो गुड़ की भेली पहनावे के नेक गुड़ की भेली और रुपए देवे व ओढ़ने बिछाने के लिए कपड़े देते हैं। दे सास को सीढ़ी चढ़ाने उतारने का नेक तथा ननंद नंदेव जेठ जेठानी को वस्त्र देते हैं। बहुएं देवर को बादाम से मनाने आदि का कार्य भी संक्रांत के दिन करती है। आज के दिन से 1 वर्ष तक चिड़िया को 1 मुट्ठी बाजरा डालना, जमदारनी को 1 टोकरा व झाड़ू देकर 1 वर्ष तक घर के बाहर झाड़ू लगवाना, जमादार जो झाड़ू लगाते हैं, और अगली संक्रांत तक साड़ी ब्लाउज और रुपए देना, घर के दरवाजे के बाहर दिया जलाना अथवा 1 माह तक 1 थाल प्रतिदिन ब्राह्मण को दान देना आदि नियम भी कुछ महिलाएं धारण करती हैं।
3: ऐसा
2: तो देख लो कितने इसमें नियम होते हैं।
3: हाँ, बड़ा वही तो मैं सुन रहा हूँ राजेंद्र जी की काफी ये बड़ा बड़का त्योहार है,
2: बहुत बड़ा,
3: और ये त्योहार में ये त्योहार के लिए तो जरूर कुछ गीत भी होगा।
2: हाँ तो गीत है,
3: तो हम सब एक गीत क्यों नहीं चला देते,
2: क्योंकि जो नियम है भाई उससे पहले गीत को चला दिया जाए,
3: चला देते हैं।

0: नारायण गरुड़ के वासी और सागर के वासी, जो अभी आपने बहुत ही सुंदर सा जो गीत सुना है बहुत ही मनमोहक था। और अब बढ़ते हैं हम आगे कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम में संक्रांत के नियम बताए गए हैं। जब गुड़ की भेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पापा भेली दिखाओ अपनी। जब गुड़ की भेली बहू देती है अपने ससुर जी को, लीजिए पापा भेली दिखाओ अपनी, थैली यानी पैसों की थैली या हवेली घर बड़ा। तो मेवा मठरी जब देते समय, फल मेवा मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माजी मठरी खोलिए अपनी गठरी।
1: गठरी,
0: हाँ गठरी।
2: तो गठरी के मतलब,
0: गठरी मतलब जब एक कपड़े में बांध के बहुत सारी चीजें रखी जाती है, कौशली चीजें जैसे जेवर और सोना चांदी। तो वो कहती,
2: हाँ,
0: है
2: तिलरी सोना का।
0: हाँ, तो वो कहती है कि मेवा लीजिए और अपन वो गठरी हमको दीजिए।
2: ये त्योहार में ये सब चीज भी होता
0: है, चलता है। तो और जो बड़का बात रहे, वो कहते हैं कि पति को पान खिलाते समय पत्नी कहती है, लो सैया जी पान रखो सदा हमारा मान।
1: ये तो बहुत अच्छा बात है।
0: कौन खिलाता है? पत्नी जब खिलाती है
2: तो उससे कहते हैं कि
0: लो सैया जी पान रखो सदा हमारा मान।
2: ऐसा बात फिर, तो ये त्योहार में भी बड़ा मजेदार बातें होते हैं।
0: फिर छुआरा भी खिलाया जाता है पति को। तो छुआरा खिलाते समय कहती है पत्नी, लो सैया जी छुआरे सदा रहो हमारी।
1: तो ये छुआरे क्या होता है?
0: छुआरे जैसे काजू होता है वैसे बादाम होते हैं, छुआरा भी होता है ड्राई फ्रूट में।
2: ड्राई फ्रूट,
1: अच्छा।
0: हाँ, छुआरा नहीं जाने ला आप?
2: नहीं,
0: छुआरा बबली जी आप समझिए, छुआरा होता है।
3: हाँ जी, जो खजूर होती है
0: वो जब सूख जाता है,
3: सूख जाती है उसको छुआरा कहते हैं।
0: हाँ,
3: आप कहते हो
1: दादल।
2: दादल,
3: हाँ जी,
2: कैसे?
0: हाँ, और जो बड़ा है और बड़ी बात यह है कि देवर को बादाम जब दिया जाता है तो छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम बनियो रही हमारी सदा गुलाम।
2: ऐसा की।
0: और जब नंद को मनाना होता है तो छोटी ननद के कपड़े बनवा कर बतासे देकर भाभी कहती है, लो नंदिया बतासे दिखाओ अपने तमाशे।
2: वो हाँ, तो ननद को सुना देते।
0: हाँ, ननद तो तमाशा दिखाते है ना मम्मी के सामने अपने।
2: ऐसा,
0: तो फिर वो उसको डांट पड़ती है बहू को। तो उस समय वो बदला लेने के सोचते।
2: राजेंद्र जी, कार्यक्रम तो हमारा लगातार इस समय चल रहा है सिर्फ संक्रांति, मकर संक्रांति के अंतर्गत कार्यक्रम जो बनाया जाता है ना, तो हमारे जो विशेषज्ञ है जो हम सब के लिए तेईमा रख देते हैं, और तेईमा के बाद में हो जाता है, उसके बाद में तेईमा जो हम लोग को मिल जाता है, तो उसमें हो जाता है गानों का और तैयारी करना। राजेंद्र जी, तो गाने का तैयारी हम सब के लिए, शांता खेमा जी जो हम सब के लिए तैयारी करते हैं, हम लोग बहुत 5-6 गाने चला पाते हैं।
0: हाँ,
2: पूरा कार्यक्रम में, पर इन्होंने कुछ 18-20 गाना हर बार खोज करके हम सब के लिए चुन के लिए रख देते हैं। पर कुछ गाने बनाए गए हैं जिसे हमें ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा है कि जैसे कि हम लोग के कार्यक्रम के लिए इतना सुंदर गीतों को चुन के रखते हैं, जिसे हम जान गए हैं कि शांता जी जो पिटारा से भर के लाए हैं। तो शांता जी, इसके अंतर्गत में आप कुछ हम सबको सुनाइए।
1: ये पिटारे में गाना गीत भर कर लाती हूँ
2: जी, आप अपने शांता का पिटारा।
1: ना, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कैसे कहते हैं, हिम्मत मिलता है और भी खुशी मिलती है, क्योंकि हमारे सुनने वालों की इसमें भी प्रेरणा है, प्यार है। तो उसी की तरह मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये सब करने के लिए। और जब मैं तैयारी करती हूँ तो बैठकर स्थिर से एक एक गाना इसे खोज कर तैयारी करके लेस बनाती हो, फिर नहलाती हो तो उस पर देखती हूँ। पर वो आसान नहीं है, क्योंकि एक एक गाना को सुनना पड़ता है।
2: सही बात, क्योंकि वो जानना चाहिए, क्योंकि हर एक गीत पे कौन संदेश है उसके पीछे, दत्त कुनवाइनी सोमर लाइफ अचंद,
1: वाकई में उसमें बहुत सारा काम।
2: ये एक रेडियो स्टेशन है जो कि 188 देशों से सुना जा सकता है, और कितने देशों में भी सुना जाता है, और जो लाइव ब्रॉडकास्ट में हम सबको उस पर ध्यान देना पड़ता है। कभी गलती हो ही सकते हैं, गलती तो हम बच्चे रूप में हो ही जाता छोटा में, पर सब गानों को ध्यान देना पड़ता है।
1: वो है, इसलिए चुन कर लाती हूँ, अरे खोजबीन कर हमारा प्रोग्राम को बनाने के लिए, ऐसे ही हम आप लोग भी जो संयोग देखते हैं और इसमें आप लोग के भी प्रेम है प्यार है और हमारे सुनने वालों के भी जो प्रेम है प्यार है, तो मुझे अच्छा लगता है भी ये सब करने के लिए।
2: दोस्तों सुनने वालों, शांता जी जो अपना संदेश हम सबको सुनाए कि कितना काम करना पड़ता है और वो हम सब के लिए तैयारी करके यहाँ आ जाते हैं।
1: पर संजय जी आप भी बहुत इतने सारे तेमा भी खोजते हो और राजेंद्र जी भी अपना वक्त भी निकाल कर आते हैं, टाइम पर पहुंच जाते हैं आप दोनों भी।
2: हमें तो ये है कि बस स्कूटी पे बैठो और यहाँ पहुँचो। राजेंद्र जी
0: बहुत बढ़िया, आपका जो स्कूटी पे बैठो यहाँ पहुँचो वाला सिस्टम है वही सबके ऊपर भी लागू होता है। हम भी अपने जब जॉब से चलते हैं तो सीधा यहीं पहुँच जाते हैं और जैसे कार्यक्रम के अनुसार कार्यक्रम रहता है तो कह देते हैं। तो ज़्यादा इसमें शांता जी का ज़्यादा मेहनत हमें लगता है,
2: ज़्यादा मेहनत है। और दूसरा है कि जो हमारे भाई संजय शर्मा जी जो पहाड़गंज से और रिंकू कालिया जी जो मोहन गार्डन से जो बजरंगी सेना का सभापति है और श्रीमती रत्ना जी जो अपने ओर से हम सब के लिए जो विषय रखते हैं हम सब के लिए खोज देते हैं तो वो हमारे लिए भी आसान हो जाता है। बबली जी आप भी कई बार कार्यक्रम में सहयोग दिए हैं तो आपको ये कार्यक्रम, क्योंकि कभी कभी आप यहाँ नहीं होते और आप ये कार्यक्रम को घर से सुनते हैं?
3: हाँ जी मैं तो हर बार सुनती हूँ घर से।
2: और आपको क्या लगता है ये कार्यक्रम में, क्योंकि
0: लेकिन लोगों को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आता है।
2: मेरे ये बात पे मैं आपका बहुत भी और ये भी सोच रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं क्योंकि कुछ चल रहा है तो उसे चलने दो, पर उसमें ज़रूर कुछ और रखना चाहिए क्योंकि इस पे भी हम सब कुछ बात किए गत दिनों में। ICC में थे भाई राजेंद्र जी के साथ और बातचीत हो रहा था तो इसमें सोचा जा रहा है कि कुछ चीज़ हम सबको और इसमें बदलाव लाना है।
3: हाँ जी, अगर आप बदलाव लाओगे तो लोगों को सुनने में और अच्छा लगेगा।
2: और लोगों को सुनने में, पर हमने ये सोच रहे थे कि लोगों को अब इसमें शामिल करने को।
3: हाँ जी वो तो और अच्छी बात है, बल्कि
2: इसमें बस ये बात हुआ है हमारे बस्तूर जो इस ज्योति का प्रकाश से हम सबके ये हुआ है कि हम क्यों ना इसमें ये डालें कि हम कौन हैं। संस्कृत में उसे कहते को हम ना राजेंद्र जी,
0: को हम।
2: तो उस पे भी थोड़ा से हम लोग इस साल इस पे भी थोड़ा से बातचीत करेंगे कि हम कौन हैं। बबली जी आप भी कुछ कहने वाले
3: कि आपके कहने का मतलब ये कि ऐसा प्रोग्राम रखेंगे कि जिसमें हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं।
2: जी हमारा, क्योंकि हम तो है, हम आज 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 80 साल के हो गए हैं, पर हम वैसे ही थोड़ा आ गया है। हमारा एक पिता हुए है, एक माता हुए है और हमसे पहले हमारे पिता के एक पिता हुए है, एक माता हुए है, उससे पहले उसके एक पिता हुए, एक माता हुए, क्योंकि ऐसे हम सब ये गोरे लोग हम सब के देश में जो 18 पीढ़ी तलक जाते हैं, कोई 22 पीढ़ी तलक यहाँ तलक की उन्होंने खोज डाले।
3: हाँ जी, कि हमारे दादे परदादे कहाँ से आए,
2: हाँ हम किसके किसके बीच है।
3: हाँ जी
2: हमारा शुरुआत तो एकदम यहाँ से कि हमारे मामा जी ने यहाँ हम सब के लिए रखे हैं कि स्तंभम फॉर्म ब्रह्मा, तो वहाँ से पर उतना दूर तो हम लोग हम कम से कम एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तलक जब हम ख्याल कर ले तो हम सब के लिए वही काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि ये बात हो जाता राजेंद्र जी, हमारा ये छोटा से टूटिया हो गया है ये हम सब कहीं विवाह संस्कार में जाते हैं ना, तो विवाह संस्कार में जब कन्या दान को किया जाता ना,
0: हाँ।
2: या साकोचार मंत्र पढ़ा जाता है तो वहाँ एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का नाम और तीसरे पीढ़ी का नाम लिया जाता है। तो वहाँ जब देखो माढ़ों में जब पूछो पिता से कि पिता का नाम, पर पिता का नाम, वृत्त पिता का नाम, तो पहला वाला पूछने पे ये बात मालूम हो जाता है कि दूसरा पूछने का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जब अपने भाई बंधु कर देख करके और ये पूछने लगते हैं बप्पा के नमो कैसे रहा, तो वहाँ पंडित समझ जाता कि कई बजल। ऐसा है कि हम सब अभी कम से कम इस बात पे ध्यान दें कि हमारे जो जिनके जरिए हम आज है, हमारे ये मनुष्य शरीर को हम प्राप्त हुए और हमें कैसे उस पे ध्यान देना है, हमें कैसे हम उन पे हम उन्हें ना भूले, क्योंकि सब हम नहीं जान पाएंगे कभी नहीं। पर कम से कम तो हम लोग जो सूरीनाम से होलांत में आए तो हमारा तो बस 1873 आतीन्द्रिय से तक ना, तो हमारे तो बस ज्यादा दिन नहीं हुआ है, बस पांचवा छठवा पीढ़ी चल रहा
0: है। तो कोई बड़का
2: तो बड़का नहीं है और खोजने के लिए भी रास्ता है। तो राजेंद्र जी क्यों ना हम एक गीत पहले चला देते तो मकर संक्रांति के बारे में और भी बात करना है।
0: हाँ जरूर, एक गीत चाहे हमें चलाना, इसके बाद बात करते हैं मकर संक्रांति की।

0: देने के लिए, दान लेने के लिए, ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो राजेंद्र जी, यहाँ ये बात हो जाता है कि अभी मकर संक्रांति के अंतर्गत में हम सब के कुछ संदेश अभी बाकी रहा, तो हम सब जरूर वो संदेश का और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम सबको ये मकर संक्रांति के बारे में कुछ और संदेश सुनाइए।
1: मकर संक्रांति के जो संदेश हैं वो इस प्रकार से हैं कि घाट पाट सींचने का जो नियम है बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोजाना सींचने हो तो रोज सींचा जाए, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांति आई उस दिन 31 जगह पूरे एक माह का सींच कर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर गोबर पर रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 माह तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर एक साड़ी या ओढ़ना तथा एक चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके हाथ फेर कर अपनी सास के चरण स्पर्श करके देते हैं। और जो चिड़िया मुट्ठी देने का नियम बड़ी संक्रांति से ही लिया जाता है। 12 माह तक एक एक मुट्ठी चावल चिड़िया को देते हैं। यदि रोज़ देना संभव न हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़िया को देते हैं। 12 माह पूरे होने पर बड़ी संक्रांति के दिन उद्यापन करके 1 चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपए इन पर हाथ फेर कर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें देते हैं। यानी सास का इसमें ज़्यादा रोल है मन। इसके बाद भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवा कर एक थाली में मिठाई व रुपए रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम करके भगवान को समर्पित कर दी जाती है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के पीहर वाले लड़की की ससुराल में सोने के निमित्त पूरा बिस्तर, गद्दा, तकिया, रजाई, चादर भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपये तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ अपनी सास के भी चरण स्पर्श करके उनको भी रुपए देते हैं। इसके बाद ससुर जी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती है तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपए तथा लड्डू लेकर आएं तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपए दे दें। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपए दिए जाते हैं। सासू जी को कपड़े पहनाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े, साड़ी, ब्लाउज इत्यादि पहनाकर अपने सासू जी के चरण स्पर्श करके रुपए देती है। और जो मेन विषय है, रूठी हुई सास को मनाया जाता है इस दिन। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती है।
0: ये भी त्योहार में गिनती है?
1: हाँ, ये त्योहार में,
0: संक्रांति में।
1: हाँ, संक्रांति में रहा। इस पर बहू रूठी हुई सासू को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपए देती है तथा चरण स्पर्श करती है और सासू जी से निवेदन करती है कि वही अपने कमरे में चले। इस पर सासू जी अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर अपनी बहू को आशीष देती है।
0: शांता जी, इस पे आपको क्या कहना है?
1: शांता जी की तो सासू होगी, वो अपने बताएंगे।
2: सासू जी मेरी बहुत अच्छी थी, दिल की अच्छी थी, अपने बच्चों के लिए बहुत प्रेम प्यार
1: नहीं है क्या सासू जी?
2: क्या बोलो,
1: अब कहाँ गई सासू जी?
2: सासू जी वो
1: चल बसी।
2: हाँ।
1: तो उसको वही आशीर्वाद भेज दो।
2: हाँ, उस मेरे को आशीर्वाद दो को देख के घर मैं उसको भी प्यार करती हूँ।
1: जलेबी और पान का नेक। एक नारियल में गिन्नी अथवा रुपए भरकर अपने पति को देती हैं। उस नारियल के ऊपर 4 जलेबियाँ, पान तथा रुपए भी रखकर देती हैं। पति के चरण भी स्पर्श करती हैं। पति को मलाई खिलाई जाती है उस दिन। एक चांदी की कटोरी में मलाई अथवा रबड़ी भरकर अपने पति को खिलाई जाती है।
2: राजेंद्र जी, ये मलाई क्या होता है?
1: मलाई जब दूध को गर्म करते हैं और ऊपर एक परत लग जाती है उसको मलाई कहते हैं।
2: इसलिए हमने ये एक जात है ना, मलाई
1: नहीं,
2: इंडोनेशी के जो है।
1: हाँ, तो इसके बाद उन्हें दुशाला अथवा 5 वस्त्र, कोट, कमीज, पैंट, रुमाल, बनियान इत्यादि देकर उन्हें चरण स्पर्श करती है। पति के पैर धोए जाते हैं उस दिन। एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोती है। पैर धोने के पश्चात उन्हें मोजे तथा जूते पहनाए जाते हैं। फिर उनके चरण स्पर्श कर रुपये भी दिए जाते हैं और फिर सासू की कमर को मसल मल दिया जाता है। सासू की पीठ मलकर उन्हें ब्लाउज तथा साड़ी देते हैं। उनके आगे मेवा मिठाई तथा रुपये रखकर उनके चरण स्पर्श करती हैं। दूध पिलाया जाता है। अपने ससुर अथवा जेठ जी को चांदी के गिलास में दूध पिलाते हैं तथा उनके सामने एक थाली में मेवा मिठाई व रुपये भी रखते हैं। दूध पिलाने के बाद वह गिलास भी उन्हीं को दे दिया जाता है। ससुर व जेठ जी बहू को नेक के रुपये देते हैं। इस प्रकार से गेहूँ साड़ी रुपया इत्यादि पर हाथ फेरकर ब्राह्मण को दिए जाते हैं। एक साल तक 360 प्रकार की खाने और पीने की चीज़ें मंदिर में या भांजी नंद आदि को 1.25 शेर के हिसाब से देते हैं। ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उसे तेल की सीसी कंगी सीसा सिंदूर तथा मांग का टीका भी दे सकते हैं। ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी रचाकर उसे अंगूठी दे सकते हैं। ब्राह्मणी के पैर धोकर उसे पाजेब व बिछुए चुटकी पहना सकते हैं। ब्राह्मणी को नहलाकर उसे लोटा बाल्टी तथा साड़ी ब्लाउज रुमाल तौलिया देते हैं। फिर पैर छूकर दक्षिणा भी देते हैं। 14 जगहों में पुरुष महिलाओं तथा बच्चों के भी कपड़े रखकर तथा सुहाग की वस्तुएं आभूषण गीता की पुस्तक तुलसी की माला व दक्षिणा रखकर इन्हें 14 ब्राह्मणों को देकर प्रणाम करना चाहिए। तो हमें चाहे मान 14 ब्राह्मण ढूंढे कल। हाँ, ये तो विषय है कि किसी ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन 12 महीने भोजन कराकर अंतिम संक्रांति के दिन साड़ी ब्लाउज व दक्षिणा देकर प्रणाम करती है और आदर के साथ विदा कर देती है। ये सबसे अच्छा लगा।
0: तो ये सबसे अच्छा लगा।
1: हाँ।
0: तो राजेंद्र जी ये बात है। शांता जी इस पे आपके कुछ है कहने को?
2: मैं राजेंद्र के साथ सहमत हूँ क्योंकि हम जो प्रोग्राम यहाँ दिल से लगा कर बनाते हैं सजा कर सब पेश करते हैं तो सभी अच्छा लगता है।
0: पर शांता जी मुझे तो सभी जरूर अच्छा लगता है पर कोई कोई कार्यक्रम भी काफी मुश्किल कार्यक्रम भी थे।
2: हाँ, पर
0: उसमें से एक पे हम जब ध्यान दिया जाए कि साल का शुरुआत में हम सब एक तेमा किए थे अगस्त ऋषि का।
2: हाँ जी,
0: अगस्त ऋषि। तो उसके बाद में जब ये कार्यक्रम को हमने सुने तो हमने और उस पे जब ध्यान देने लगे ना।
2: हाँ?
0: तो पता चला कि जो आज हमारे बतराई अवतो हो गया ना, आक्यू वाला अवतो हो गया।
2: हाँ?
0: और खास करके अभी गत दिनों मेरा एक कोलेखा जो पहले हमारे साथ काम करते थे।
2: हाँ?
0: पिलोत।
2: अच्छा,
0: जो प्लेन उड़ाने लगे जो क्योंकि कब से ये खोज कर रहे थे यानी कि हवाई जहाज जो हम कहते हैं कि पसाशीर्स फ्लिक्टाइक और कैसे बोलते हैं जो एन परसों फ्लिक्टाइक रहे तो ए परसों वाला छोटे छोटे प्लेन आदि वो सब अब बैटरी से जैसे कि गाड़ी चलने लगा है बैटरी से। तो जब हम लोग कार्यक्रम जो किए थे शुरुआत में ये पिछले साल के बात है तो उस समय पे एक गाड़ी जो लगभग 400 किलोमीटर चल सकता था
2: इलेक्ट्रिस
0: ताकि एक साल में कितना तरक्की किए हैं एक चीज से। तो ऐसे कितना चीज है जो जिसे जिसके हमें ज्ञान था ही नहीं और हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और जब हमें इससे कार्यक्रम से कुछ ना कुछ ये ज्ञान को प्राप्त होता है तो जरूर हम उस पर सोचते हैं तो देखते हैं कि हाँ कहीं तक तरक्की भी होता है और कहीं भी यहाँ कुछ है जो हम सब के भी हानि होते हैं हम उस पर ध्यान नहीं देते थे।
2: हाँ, चढ़ाव उतराव तो
0: ये जीवन है
2: लगते हैं। हाँ।
0: राजेंद्र जी मकर संक्रांति के बारे में और क्या सुनाने वाले आज?
1: मकर संक्रांति के बारे में तो हमने पूरा सुना ही दिया, क्यों ना थोड़ा सा एकादशी की बात की जाए जो कि सफला एकादशी का व्रत किया है। तो सफला एकादशी का व्रत जो होता है वो क्यों होता है और किस लिए किया जाता है? हाँ
2: नहीं, क्योंकि आपने कहा कि आप चलेंगे एकादशी के बारे में तो हाँ। मैं सोच रही हूँ कि मकर संक्रांति के बारे में मैं नीदरलैंड्स में कुछ बता दूँ।
1: हाँ जरूर।
2: हाँ, तो मकर संक्रांति इज अ हिंदू फेस्ट दैट वर्ड फीर्थ इन बैन आल देल फॉर इंडिया एंड नेपाल मार एक से अखान ऑफ ओवरऑल वो नदर मैंस दी देस ऑफ दिट फेस फीर्थ है। सभी जगह पर भारतीय लोग है तो सभी जगह वो सब मना रहे। Het feestveld op 14 januari, er wordt gevierd dat de zon in de sterrenbeeld steenbok komt. Het is een van de weinige hindoefeesten die gerelateerd is aan de zon en daarom jaarlijks op een vaste dag van het westerse kalender valt. Het feest wordt vooral op straat gevierd. Een van de uitingen is het oplaten van kleurrijke vliegers.
0: Patang.
2: Patang, ha.
0: Rajinder ji, patang bhi udana hai.
1: Patang udaya jata hai.
2: Vliegers, ha.
1: पतंग उड़ाने का मतलब यही होता है कि हमने किसी को डोरी से बांध रखा है और उसको जब उड़ जाता है आसमान पे तो छोड़ दिया जाता है कि तुम आजाद हो
0: ऐसा।
1: हाँ तो यही भाव पतंग का है।
0: पतंग का ये भाव
1: है लाइफ यारो।
0: अच्छा
2: एक एक खास चीज भी है कि हिंदूस खलोफन दैट से दी ऑप 14 जनवरी स्टेफन हुन रीइनकार्नेशन साइक्लस डोरब्रेकन एंड एन वर्डन मेट खुद।
0: ऐसा तो बड़ा अच्छा संदेश सांता जी ने हम सबको नई दलांस में भी सुना दिए। राजेंद्र जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर चलते हैं।
1: हाँ जरूर।
0: तो फिर आगे का कार्यक्रम देखा जाएगा।
1: हाँ।

0: जगत पिता सूर्य देव की जय, मकर संक्रांति पर्व की जय। तो आज की जो अभी बातचीत चल रही थी, बहुत ही सब लोगों ने अपने अपने बड़े अच्छे से समझा होगा, और शांता जी ने नीदरलैंड्स में भी इस चीज़ को समझाया।
1: हाँ, ये बात है कि हम सब मकर संक्रांति के अंतर्गत में जो संदेश रखा गया, जो हम सब अपने त्योहारों के अंतर्गत में, ये त्योहार के अंतर्गत में ये संदेश रखा गया। और कुछ संदेश राजेंद्र जी, क्योंकि हमारा घड़ी जो चल रहा है रफ्तार।
0: हाँ, अभी जो सफला एकादशी व्रत है उसके बारे में थोड़ा। सफला एकादशी व्रत भी व्रत पौष कृष्ण एवं एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान की आरती

0: आरती करी तथा भोग लगाई। ब्राह्मण को तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को करने में समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है और यही हमारी भी कामना उनके साथ है। सफला एकादश व्रत की कथा पहले सुन लेंगे और इसके बाद थोड़ा सा समझ लेंगे। तो जल्दी एक बार, एक दिन पूष माघ की कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने चंपावत नगरी में महिष्मान नाम के राजा राज्य करते थे। उनका बड़े बेटा लुम्पुक बड़ा दुराचारी था। वह मांस मदिरा पर स्त्री गमन वैश्यों के संग इत्यादि कुकर्मों से परिपूर्ण था। पिता ने उसने अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था। सब देवताओं की क्रीड़ा स्थली भी वहीं थी। ऐसे पतित पावन वृक्ष के सहारे लुम्बक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी हो रही। पिता के राज्य में चोरी करने से चले जाता तो पुलिस पकड़कर छोड़ देती थी। अतः सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ, पेट को गम लगा। जीवों को मारने में भी आज वह असमर्थ था। वृक्ष पे चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। वह नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप भी क्या भोग लगाएंगे। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन में मौत भली, यह कहकर वह प्रभु का ध्यान में मग्न हो गया। उसे रात भर नींद न आई। वह भजन कीर्तन करते रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों को भोग न लगाया। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण कहने लगा, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जान के या अनजाने में हाथ लगाने से जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी भूल कर रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु आज्ञा से लुम्बक पिता के पास आया। पिता उसे राजगद्दी बैठाकर स्वयं तप करने के लिए वन में चले गए। लुम्बक के राज्य में प्रजा एकादशी व्रत विधि सहित किया करती थी। सफला एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। तो चाहे सब लोगों को सफला एकादशी जरूर करना।
1: इसमें विवान आपको क्या कहना, क्योंकि आप भी कुछ इसके बारे में लेकर आए हैं।
2: एकादशी इज अ संस्कृत वर्ड फॉर साइफर एल्फ। पर मंथ कम द एकादशी डॉग ट्वे केर फॉर इन अ वेरिस मंथ कैलेंडर। द एर्स्ट एकादशी फॉल्ट ऑफ द एने हेल्फ ऑफ द मंथ ऑफ द एल्फ्थ डॉग ना द न्यू मान। द ट्वेडे एकादशी फॉल्ट ऑफ द अंडरे हेल्फ ऑफ द मंथ ऑफ द एल्फ्थ डॉग ना फुले मान।
1: तो राजेंद्र जी, विवान भी, दंकेवल विवान दच दित ओके फह मैं ये फरतेल्त। और दोस्तों, जैसे कि हम सब यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम में कभी ये हो जाता है कि लोग फ़ोन करते हैं हम सभी को और फ़ोन नहीं उठा सकते कार्यक्रम करते समय, और कुछ कुछ फ़ोन ज़रूर उठाया जाता है। तो लोग भी इस पे सोचते हैं कि क्या और कैसे ये जो हमारे तेईवां होते हैं उसमें कभी काल के हम सब कुछ वृतांत अंतर्गत कुछ संदेश सुनाते हैं, पर लोग को ऐसा भी हो जाता है कि ये कथा है, वृतांत है या खसकिदने से या फरहाल है। तो इसमें हम सबको इसका अंतर भी जानना, क्योंकि यहाँ हम सब पंडित कोई नहीं है, हम सब के जो वृतांत यानी कि मिलते हैं वही हम सब आपके लिए रखते हैं। जरूर ये कहना चाहूँगा कि राजेंद्र जी, आप जैसे कि और एकादशी अंतर्गत में सुना ही चुके हैं, और बबली जी आपके इसमें क्या सुनाना, क्योंकि ये आप इतने कार्यक्रमों को सुने हैं तो उसमें से जरूर कुछ ना कुछ तो आप अभी तक जानते होंगे कि क्या और उसमें क्या लाभदायक हुआ ये कार्यक्रम सुन के।
3: एक छोटी सी कहानी याद आ गई। हिरन की रफ्तार लगभग 90 किलोमीटर और शेर की रफ्तार 98 होती है। इसके बावजूद अक्षय हिरन का शिकार हो जाता है, क्योंकि हिरन को लगता है कि वह शेर से कमज़ोर है। यही खौफ उसे बार बार पीछे मुड़ कर देखने को मजबूर करता है और हिरन का हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाते हैं। इसलिए आप खुद पर यकीन रखिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। आप अपने सपने और लक्ष्य पर अड़िग रहिए। कोई आपका साथ दे ना दे, खुद पर यकीन रखिए।
1: राजेंद्र जी, यो गीत का इंतजार है जो हमें सुनने वाले के समय जो रफ्तार अपना चल रहा है, तो उस पे आप वो गीत चला दीजिए। हाँ, फिर हम सब आगे।
0: समय का पता नहीं चलता कि 2 घंटा कब हो गया है, और 2 घंटा तो पता ही नहीं चलता। वैसे ही दो घंटा के बाद जब हम ये गीत चलाते हैं तो लगता है कि हमारा समय एकदम विराम की ओर आ जाता है। लागी छूटे ना अब तो सनम, गाने को सुनते ही सब लोगों को समझ में भी आ जाता है कि अब हमारा पूर्णता की ओर बढ़ता है।

हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल यह है सुख को ताला किसने लगाया है। मेरी ओर से सब सुनने वालों को नमस्कार।

सनम। रिश्ता निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, बस दिलों में प्यार चाहिए। उसको निभाने के लिए आप सभी को हम यहाँ से भी बहुत से धन्यवाद कहती हूँ कि आप जो हम में यानी कि ज्योति का प्रकाश सुनने के इसमें जो सहयोग दी, अपना विश्वास भी दी और हमको भी यहाँ से बहुत आनंद मिली आपकी सेवा करने के लिए। ऐसे भी उम्मीद है कि आप सदा ही ऐसे ही अपना साथ देते रहना और स्वीकार कीजिए शांता की भी।

0: दूर हूँ फिर भी दिल के करीब हूँ।
1: रेडियो के माध्यम से कोई दूरी तो हो नहीं सकती, हर किसी की दूरी नज़दीक ही हो जाती है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि अपनी बात आप जहाँ भी हो, बगैर किसी नेटवर्क हर जगह रहता है। रेडियो का फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो किसी के नेटवर्क की वो, और उसमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, केवल एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, वो भी आजकल मोबाइल में और हर जगह अवेलेबल है। तो इस प्रकार से लोग रेडियो को सुनते हैं, वो सब के लिए जो श्रोता हैं उनको बहुत बहुत हम आभारी हैं कि हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और पसंद करते हैं। फिर मिलते हैं अगली बार, फिर इसी दिन इसी बार अगला कुछ कार्यक्रम लेके। तब तक के लिए सबको नमस्कार।

0: गरीब।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। दोस्तों, यहाँ तक था कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, और यप आज का कार्यक्रम में सहयोग देने वाले शांता खेमाई, बबली आसरा, विवान भगवंत, राजेंद्र सिंह और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा यही है कि कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए जरूर पहुँचा होगा, और सभी को एक शुभ रात्रि कहते हुए नमस्कार, फिर मिलेंगे।

हर एक काम जो रेडियो के सिरे कराना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टेक्ट कीजिए फाह और हिंदुस्तानी रेडियो के डॉक्टर से न्यू सीफ तक 3 से 5 2 8 फी सीफ पर आपको तार करना है।

की महफिल सजाने लगी, दिल के महफिल सजाने लगी के बाद जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूं तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप सुन।

यार है नया एहसास है आप एक हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से। न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल दोनों के आवाज़ों में मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

इंडी लव सॉन्ग्स, बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इसकी इसकी दीवाना होता है और मस्ताना होता है, खुशी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

कर हूं मैं, क्या बात है, हार्ड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव।

सेलेक्टा बीच शो बैंड, सेलेक्टा बीच शो बैंड बॉबलिंग मैशअप। न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

प्रोग्राम में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जब चटनी का नाम लेता हूँ, चटनी सॉन्ग तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। That's dance.

चटनी सोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए क्या बात है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग सर तो तैयारियां कर दिया है उतार के बिग दिया है दोस्तों डांस कर रहा लेट्स डांस

सबसे पहले हमारे सबको के राम राम नमस्कार अदाय बरसो। हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, हमेशा की तरह आज भी होगी कुछ प्यारे प्यारे मीठी मीठी ऐप द्वारे कुछ बातें होगी। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सरजू, जो अब से लेकर 12 बजे तक हम आप लोग के साथ देंगे, जहां तक ये आवाज़ पहुंचे, हमारा प्यार भरा पैगाम पहुंचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुंचे। और जो भी इस वक्त अपना नौकरी पे जा रहे हैं या अपना काम पे जा रहे हैं, बच के जाना, हर एक चीज़ से बचा के जाना, बचा के करना। हर एक घर में जहां पे प्रॉब्लम है, दुख है, मातम है, हमारा पूरा टीम पवन FM रेडियो से, हर टीम, हर एक कलीगा हमारा आप लोग के साथ है। जहाँ पे खुशी है वहाँ भी साथ है, हर एक दुख खुशी में हम हमेशा हम लोग के आ पाएंगे और हमेशा हम आप लोग के साथ है। आज का प्रोग्राम है दोस्तों, जो प्रोग्राम मैंने बना करके लाया है, अभी कुछ भजन चलेगा और भजन के बाद हम हर एक घंटे का प्रोग्राम आपसे बताएंगे आज का प्रोग्राम क्या है क्या नहीं है। हर एक जहाँ जो दुख है, बीमार है, लाचार है, भगवान उसे इतना सहन शक्ति दे कि अपना हर एक सही सके, अपना दुख को सही सके, अपना पीड़ा को बांट सके, हर एक चीज कर सकते हैं। आप सब चुन है द एफ अगेन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से, आप सब चुन है दोस्तों। और आज है देखा जाए 10 सितंबर हो चुका है 2026 में, हम चल चुके हैं, कुछ महीने और है तो हम लोग चलेंगे 2027 में। मंगलवार सुबह का प्रोग्राम है, भजन चलेगा, हर एक जो अपना इस वक्त अपना पूजा पे है या भगवान की याद करता है, उन सबको हम बहुत बहुत उन सब के लिए हम कुछ भजने पेश करेंगे और आप सब हम लोग मिल के सुनेंगे। पूरा टीम के तरफ से, हमारा डायरेक्टर की तरफ से, कुमार घेराव की तरफ से, हमारा जितना मेंबर है, जितना उम्र ऊपर है, हर एक की तरफ से एक शुभ सुबह हो और शुभ दिन हो। हम यहाँ से कुछ भजन चलाएंगे दोस्तों और हर एक घंटे का प्रोग्राम हम आप लोग को बताते रहेंगे कैसे कैसे आज का प्रोग्राम है, क्या है। कुछ फरमाइशें भी चलेंगे 11 से 12 बजे तक, क्योंकि हमारा जो उम्र स्तर है शांता के माई का जन्मदिन था इन अंदर तक और क्रिस्टस का, आज हम उसके लिए एक घंटे का फरमाइशें चलाएंगे। हमारा टीम का एक बहुत बलंगरायक है मेंबर है जो अनुरूप करता है, रेडियो पे है, रेडियो करता है, शांता खेमाई का जो जन्मदिन थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम आप लोग के बताते रहेंगे और प्रोग्राम को हम करते रहेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं भजन

जी दोस्तों, अभी आपने सुना है माता ने बुलाया है, सच बात है। अगर कोई हर मंगलवार के अगर आप पूजा करते ही एक घंटे का पूजा जग के नहा धो के अपना पूजा पे बैठ जाते हैं पूजा करते ही, और एक मंगलवार को आपको लगते हैं कि हम सो जाए थोड़ा से, और उसके बाद लगेगा महसूस करेगा कि कोई मुझे झकझोर रहा है, ए माँ आजा हल्ली से पूजा पे, हम आपको वेद करते हैं हल्ली से पूजा कर ले, इसी को कहता है माता ने बुलाया है। आप महसूस करेंगे जो हर दम अपना पूजा करते ही हर मंगलवार को हर शुक्रवार को जो भी दिन है, अगर एक दिन आपको सोना चाहते हैं कुछ 5 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं तो लगता है कोई मुझे पुकार रहा है, और इसी भजन में गाया है माता जी ने पुकारा है आजा हल्ली से, तुम्हारा पूजा मुझे पसंद है आजा अपना पूजा करिए। ठीक है दोस्तों, मंगलवार सुबह का प्रोग्राम है, घाम निकल चुका है, सन इन थाइस एंड वेल मेच फ्रेश ऑपस एंड हम चलते हैं आगे। देखा जाए तो हम गायत्री मंत्र आपके आप सबके लिए रखा है, उसे कहते हैं सुबह का जो मंत्र है मॉर्निंग मंत्र है, सुबह का मंत्र है गणेश शिवा हनुमान और कृष्ण का, ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र एक मंत्र से, ये मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। अगर ये आप 3 बार कह देते हैं दिन में तो आपका दिन सफल हो जाते हैं, हर एक दुख से आप बच जाएंगे। हम आप लोग को सुनाते हैं, हम भी मिलकर सुनेंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे हम सब चूंदे दोस्तों

जी दोस्तों, ये है गायत्री मंत्र है एक, ये मंत्र से सबसे बड़ा मंत्र जैसे हम जानते हैं तो गायत्री मंत्र है। और सुबह सुबह अगर आप हम इसे सुनते हैं, जी खुल जाते हैं, जी खुश हो जाते हैं, आपका दिन सफल हो जाते हैं, दिन बन जाते हैं, ऐसा ऐसा मंत्र है गायत्री मंत्र है। और इसे 3 बार अगर आप कहते हैं तो आपका दिन बहुत अच्छे से जाएगा। इसे कहते हैं रिस्क खीफंत, आपको बहुत रिस्क देगा, दिल में मन में बहुत ही रिस्क होगा, तिया होगा उसे कहते हैं तिया, कि हर एक चीज़ आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। दोस्तों ये सच बात है, अगर आप और कोई से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सच बात है। हर एक भजन में कौन बात है, कुछ बात है उसमें, कुछ दम है उसमें। चलो हम आप लोग के लिए जाते हैं ओम जय जगदीश, उसमें भी कुछ दम है, कौन बात है, रिस्क खैफंत है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे ओम जय जगदीश हरे। ये भजन सुनने से दिल नहीं मन खुश हो जाते हैं, क्योंकि दिल और मन दो चीज़ है। ये मन को खुश कर देते हैं और हर एक दिन खुशी से बिता सकते हैं। ये भजन ओम जय जगदीश जगदीश हरे, यही भजन है जो हम लोग अभी आपको सुनाना है हम, और यही है, उसी का देन है और उसी का लेन है। एक दिन अर्पण करना पड़ेगा, हर एक चीज को वापस देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको के सुनाते ही एक और बहुत ही खूबसूरत भजन है, शुभा का प्रोग्राम है। फिर से एक बार कहता हूँ, जो इस वक्त भगवान के याद करते ही अपना पूजा पर ही एक फूल को अर्पण करते हैं भगवान को, हर एक पूजा करने वाले के लिए ये भजन हम चलाते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, भी आप सुने थे ये भी एक मंत्र है और मिल के हम लोग सुने हैं जी, खुश हो जाते हैं जी, भराते हैं और दिन भी खुश हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं न्यूज़ और कुछ रिक्लामों की तरफ, उसके बाद हम फिर भजन की तरफ चलेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को हम बताएंगे कैसे प्रोग्राम रहेगा आज का।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: जी दोस्तों, ये था अभी आप सुन रहे थे न्यूज़, फाहोन का न्यूज़ अभी आप सुन रहे थे। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही हम आधे घंटे और भजन को चलाएंगे, उसके बाद हम कुछ गाने चलाएंगे और 11 बजे से 12 बजे तक जैसे मैंने कहा है फरमाइश चलेंगे। हमारा जो फाहोन का उम्र उत्तर है शांता के माई का जन्मदिन था और उसके उसी उपलक्ष पर हम एक घंटे का फरमाइशें चलाएंगे। तब तक के लिए हम चलेंगे फिर से भजन की ओर। मंत्र हम सिर्फ मंत्र आज चलाएंगे, हर एक मंत्र में दम है, ताकत है, बहुत ही ताकत है मंत्र में और इसे हम सब जरूर भूल मत जाना, याद करना तो दिल खुश हो जाते हैं, दिन बन जाते हैं, दिन बड़ा हो जाता है और दिल भी बड़ा हो जाते हैं। हम सब मिल के सुनेंगे और हम सब चुन है द एफएम लव फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सरजू, जो आपसे लेके 12 बजे तक हम आपके साथ देंगे।

परमेश्वर सर्वदा। जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कि हम सब सूर्य देव से जोड़ा है। सूर्य अपना दर्शन दे चुका है, सिर्फ प्रणाम करना है। जय सूर्य देव, घाम निकल चुका, उसी के कहते हैं सूर्य से हम लोग के नाता है और सूर्य ही हम लोग को इनर्जी देते हैं। जो हमारा दिमाग चलते ही ये सूर्य का खेल है, और ये जो मंत्र था ये सूर्य से जोड़ा गया है। सूर्य देव है और अपना दर्शन दे चुका है, घाम निकल चुका है, मौसम बढ़िया हो चुका है, इसी है सूर्य देव के ये मंत्र थे। ठीक है दोस्तों, हमने एक ऐप को पाया है और हम आप लोग के लिए यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हैं, जनता के लिए हम बैठे हैं, और जितना लोग सुनते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूर तलक लोग सुनते हैं इस वक्त इस भजन प्रोग्राम को, और इसमें से एक है जो एक गाने को मांग किया, भजन को मांग किया है, और कहते हैं हर माँ के लिए इस गाने को, इस भजन को सुना दे, ऐसा प्यार बहादे मैया। ये भजन एक ऐसा भजन है, बहुत ही खूबसूरत भजन है, बहुत ही अच्छा भजन है, जो ये भी दिल खुश हो जाते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ हर माँ के लिए, ये इसी अप्रैल का हर माँ के लिए, वो भी एक माँ है, हर माँ के लिए हम इस भजन को सुनाते हैं। जो माँ जो भी है इस वक्त अपना पूजा कर रहे हैं या भगवान को याद करते हैं, उन सब सुनने वाले और याद करने वाले के लिए, हर एक माँ के लिए भी है ऐसा प्यार। बाद मैया हरिओम शरण का आवाज़ हम आप लोग को सुनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, ऐसा प्यार बहा दे मैया हरिओम शरण के आवाज थे। और एक माँ है जो इस गाने को मांग किया था, और एक माँ है जो बना करके सजा करके दूसरी माँ को देते हैं, और जो माँ हम लोग की दुनिया में लाए है, प्यार दिया है, इतना ढेर सारा मोहब्बत दिया है, बड़ा किया है, उन माँओं को हम सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और हर एक माँ के लिए मैंने इस गाने को आप तक सुनाया है, उन माँओं को हम लोग को सलाम करना चाहिए, बहुत बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। हम दिल से इज्जत करते हैं और सलाम भी करते हैं, नमस्कार कहते हैं हर एक माँ को। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं, और चलो हम एक मंत्र आप लोग के फिर सुनाते हैं कुछ नए अंदाज में।

जी हाँ दोस्तों, ये था शिव का मंत्र। जी हाँ दोस्तों, हम भी कहते हैं ओम नमः शिवा, हरिओम, हर एक को हरिओम कहते हैं, ओम नमः शिवा। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही हरिओम शरण की तरफ। एक और बहुत अच्छा देवी माता का भजन है, हर माँ माँ होते ही ये भी माँ का भजन है, दुर्गा माता का लोग कहते देवी माता का भजन है।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले आज मंगलवार है और 1 सितंबर हो चुका है 2026 में हम चल चुके हैं। ये जो भजन का प्रोग्राम है, यहाँ पर से भजन का प्रोग्राम हमारा ख़त्म हुआ है और हम चलाएंगे प्रोग्राम जैसे मैंने प्रोग्राम को सजा करके बना करके लाए हैं। हम आप लोग के बताना चाहते हैं प्रोग्राम हम चलाएंगे, अब कुछ गाने हम चलाएंगे, कुछ नए गाने, कुछ पुराने गाने हम आप लोग के लिए सुनाएंगे। 1 घंटे का प्रोग्राम है। उसके बाद हम कुछ सवाल जवाब का प्रोग्राम चलेंगे। सवाल और जवाब जो हमारा प्रोग्राम है, उस जो सही जवाब को दिया है वो 1 गाने को हकदार बनते ही। तब तक के लिए हम आप लोग के ये सवाल पूछना चाहते हैं जो सवाल मैंने पूछा था, अब वेलकम फ्राख क्यों ये नोट या अंतोर्दन, कब तू ओके या ना अंतोर्द कर पाइए, अब वेलकम फ्राख कंटिन्यूट या अंतोर्दन। अगर आप सही जवाब को देंगे तो आप 1 घंटे का प्रोग्राम रहेगा सवाल जवाब का, गाने को मांग सकते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, 17 सितंबर को हमने कुछ और गाने शेयर किया है, जो सॉन्ग कौन से जो गाना गाना चाहते हैं हमारा तार पे मुझे अनमेल करिए, हमारा स्टेटस पे जाइए, हमारा फ्लायर है उस पे देखिए नंबर है, उस पे मुझे अनमेल कर दीजिए। काफ़ी लोग अनमेल कर चुका है और हम चाहते हैं गाना जो लोग गाएगा कॉन्टेस्ट में वो है मुकेश जी का गाना गाएगा, किशोर कुमार के, रफ़ी के और तलत महमूद, हेमंत कुमार और आशा भोसले लता की गाना उरोक, सिर्फ उरोज होगा और कॉन्टेस्ट है सॉन्ग कॉन्टेस्ट से बहुत बढ़िया रहेगा। अभी इस हफ्ते में आप लोग के मालूम हो जाएंगे कि कौन सा साल है कहाँ पर। तब तक के लिए आप आन मेल कर सकते हैं, हमारा तार का नंबर है 9 0 8 3 3 2। इस तार के नंबर पर मुझे अनमेल कीजिए, अगर आप गाने को चाहते हैं तो मुझे लिए अनमेल कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं जैसे आपको बताया हूँ कि मेरा प्रोग्राम है, इसे 1 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, अभी गाना चलेगा, उसके बाद 1 घंटे का प्रोग्राम हम निकालेंगे, वक्त लेकर हम निकालेंगे सवाल और जवाब का। उसके बाद हम जैसे मैंने कह चुका हूँ फरमाइश चलेगी, हमारा कोलेखा है, हमारा दीदी है शांता खेमाई का, जो सालग्रह था एक नंदा तक ऑक्सिस्टस का, आज हम लोग पूरा टीम उसके साथ है, पूरा टीम मिलके हम लोग 1 घंटे का प्रोग्राम फरमाइश में हम फरमाइश सुनाएंगे उसके। ये

कहानी ऐसे ही कि सुनने में बहुत मज़ा लगते हैं। और क्या लाइरिक्स है जिसने इस गाने को लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। और ये गाने में कुछ दम है सुनने के लिए। नए सिस्टम के गाने हम आप लोग के आज सुनाएंगे। हम आप लोग के लिए चलते हैं कुछ देखा जाए पंजाबी गाना आप लोग के लिए चलते हैं, जो जूफी कमल ने इसे गाया है। हम सुनाते हैं, मिलके सुनेंगे। अंदाज में गाया है, आवाज में गाया है, और बहुत अच्छा मीठा गाने है।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी पंजाबी कवाली था ये। क्या अंदाज में गाया, क्या आवाज में गाया है, और अच्छा ही अच्छा कवाली है। ठीक है दोस्तों, भूल मत जाना कि आप सब चून हैं एफ अगेन लव फाहन हिंदुस्तानी रेडियो से। हम लोग बात करते हैं, हम हैं तो आप हैं और आप हैं तो हम हैं। मैंने कहा था ना, हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से एक रिश्ता बन चुका है। और ऐप आ रहा है मेरा सवाल जो था, वेलकम फ्राह या अंतोर्दन। सही जवाब देगा तो हम सही गाने को आप मांग सकते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं न्यू स्टाइल, अभी पुराना स्टाइल में चलेंगे। एक दो गाने के बाद हम पुराना स्टाइल में चला जाएंगे।

0: Bosco-pool op 00597875793 in Nederland 06574188873. Amalia Autoverhuurbedrijf in Suriname.
1: Jihad is op jou zo red, nieuws of reclame. Mr. Johnny nummer 1 ke nieuws aur reklama bhi aap sun rahe dosto jaise vaada ke mutabik hum vaada karke nibhana jante hain yahan se program chalayenge sawal aur jawab ke pehla jawab jo aaya hai wo aur koi nahi hai Samantha aur Yan Nooit Dorf se sahi jawab ko diya hai mera sawal tha welcome frequent ya nooit ya antwoorden ohe slapie. जब कोई सो रहा है उसे कुछ पूछिए तो वो आंतोर ना दे पाए बंद है स्लापिया या वो आंतोर ना दे पाए स्लापिया. कोई सो गया बगल में और आपने पूछा स्लापिया. ठीक है सही जवाब है समांता जी सही जवाब है यान खुयांतोर स्लापिया. और ठीक है सही जवाब है और मांग क्या है जब हम होंगे 7 साल के कल आज और कल मूवी का नाम है और नहीं तक में इस फिल्म निकला है किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़ है और देखा जाए इसका जो म्यूजिक सजा करके हम लोग के कानों तक लाया वो है शंकर जय किशन और लायरिक्स जो हाथ कलम और स्याही चला गया है वो है शैलिंद्रा. ठीक है दीदी उसे मैं दीदी भी कहता हूँ. नौ द्वारा की समानता आपके घर तक हम इस गाने को पहुँचाते हैं और ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहना.
2: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की बोलो प्रीत आओगी ना तब भी अपने बचपन की
3: क्या क्या क्या

जी हाँ दोस्तों, हम जब होगी 7 साल की और जब तुम होगी 55 की, बोलो साथ निभाओगी या नहीं। मूवी कल आज और कल मेकन सेवन तक का है, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज। दोस्तों ठीक है, ये था समानता नोक दौरफ के अरियान, जो सही जवाब दिया है और गाने को मांग किया है। मैंने कहा था वादा करके हम वादा जरूर निभाएंगे। और आप सब चुन है हिंदुस्तानी रेडियो उसे दोस्तों, जो जनक शहर से हम करते ही, जहाँ पर सरसराहत हवा चल रहा है बाहर, देखो मौसम कितना अच्छी है और सूर्य देव तो दर्शन दे चुका है, हमारा लव बोट यहाँ ठड़ा हो चुका है, खाना उसमें पक रहा है। मैं नहीं जानता हूँ क्या पक रहा है, लेकिन कुछ तो कुछ पक रहा है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। एक बार समानता का था, इसी प्रोग्राम को सुनते रहता, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। हम चलते हैं वातरेगंसफेल्ट से शांतरा दीदी भी इस प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है स्लापिय और बहुत ही अच्छा गाना को मांग किया है। देखा जाए तो वो वही गीत है और या नहीं है। वक्त इच्छा एफ हम थोड़ा से वेट करते हैं, ये गाना मैं, हाँ ये गाना मांग किया है। ठीक है, सही जवाब को दिया है और गाने को मांगा है, दिल तूने दिया दिल मैंने दिया, कहीं दिल दे के बैठ गया का यार चांदरा। मूवी बंजारी नेगन जी सस्त का है, मुकेश और गीता दत्त का आवाज है। सही जवाब पे सही गाना को मांग किया है वतरेगंस फेल से शांतरा।

जी हाँ दोस्तों, दिल तूने दिया दिल मैंने दिया मूवी बन जा रही निकंजन शस्त्र का है मुकेश और गीता दत्त की आवाज। और चला गया था वातावरण स्क्वायर जहाँ से शांता प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया था स्लापियर। ठीक है शांता, इसे प्रोग्राम को सुनते रहना। आप जानते आप चुन हैं फाहौन FM पे और ऐसे ही सुनते रहना। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। ठीक है, हम चलते हैं श्रीनाम की तरफ जहाँ से सुनीता बुधाई प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है बोले सुते हैं। ठीक है, स्लापी और हिंदुस्तानी में बोले सुते हैं वो भी ठीक है। जय हिंदुस्तानी में बोलिए, जय मलाई में बोलिए, खाली स्लापी आई के गिरी तमोई है। ठीक, सही जवाब है और मांग क्या है, तुम हो मेरे दिल की धड़कन मूवी मंजिल नहीं कहती नहीं जीवन तक का जिसमें अमिताभ बच्चन मौसमी चटर्जी काम क्या है आवाज ही किशोर कुमार का युगेश है जिसका जो लाइरिक्स को लिखा है और म्यूजिक को बजाया है एर दे मन चला जाता है तितली फोक कनाल जहां से सुनीता बुधाई प्रोग्राम को सुनते हैं। वो इस वक्त सुरीनाम में घूमने के लिए गया है और वहां से प्रोग्राम को सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, तू हो तो मेरा, तू हो मेरा दिल की धड़कन, मूवी मंजिल तक का अमिताभ बच्चन मौसमी चटर्जी, इसमें काम किया है आवाज था किशोर कुमार की। और देखा जाए सिंगर किशोर कुमार, और ये गोस था जो लाइरिक्स लिखा है और चला गया था एकदम तितली फोकना जुरी नामम यार हाईवे पे, जहाँ से सुनीता बुधाई प्रोग्राम को सुनते हैं पूरा फैमिली के साथ, और इस गाने को मांग किया था और बोले सुते ठीक है, स्लापी सुते एक ही है, ठीक है सुनीता ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहना, सुरीनाम से आप सुनते बहुत बहुत धन्यवाद है, और ऐसे ही हमारा रेडियो को सुनते रहना फाउन एफएम पे, हम लोग सब चून है। ठीक है दोस्तों, हम चलते पस क्रोनेगन सलामाका से, जहाँ से सीता जी प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं उत्तर नेगरे बोले से, ये श्री भी मैं श्री भी या इन दात श्री भी स्लाप इस्लाप हम सुते लो, ठीक है सही बात है, और बोले श्री भी ठीक है सही बात है, और मांग भी क्या बहुत ही अच्छा गाना को मांग क्या है, मैं भौरा तू है फूल मूवी मेला मुकेश, और देखा जाए शमशान बेगम है और नौसाद का म्यूजिक है और शकील बदायूनी का ये जो लाइरिक से जो लिखा गया है वो है शकील बदायूनी। ठीक है मुफरव सीता जी पोस्ट खुरोने का सरमका से जुरी नाम से प्रोग्राम को सुनते हैं, और आपके नाम इस गाने को मैं कहता हूँ क्योंकि सही जवाब दिया है जरीबी, ठीक है

जय दोस्तों, मैं भोरा तुहे फूल ये दिल मत भूल, जवानी लौट के आएगी। ठीक है दोस्तों, पोस्ट क्रोनियम सीता जी सरमक्का से सुरीनाम से वहां से प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद भी करते हैं और सही जवाब को दिया है, बोले श्री भी। ठीक है, स्लापियर ओके। ठीक है सीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। तब हम ले चलते हैं यहाँ पे जहाँ से हमारा भाई अंद्रेई, मिस्टर अंद्रेई प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया और फिर से एक बार बहुत बहुत ही पुराना गाना, बहुत ही अच्छा गाना को मांग किया है। यही अरमान लेके आज अपने फिल्म शहब और नेकतीन फिरन फैफ तक का ये गाना है, भारत भूषण पद्मश्री मोहम्मद रफी का ये आवाज़ है, नौसाद का ये म्यूजिक है। दोस्तों चलो हम आपके सुनाते हैं और मैं इससे सही जवाब को दिया है स्लापिया, वो कबिना अंतो दे चुको लहा कोरजवा और स्लापिया। सवाल था ऑफ वेल्क फ्राख का ये नोइट या अंतोर्दन स्लापिया। ठीक है, अगर कोई सो रहा है उस पर जवाब नहीं दे सकते। मिस्टर अंद्रे बड़ा भाई, आपका प्रोग्राम हमारा कारो को सिंगर है और हमारा टेक चेंज कारो को फार्मेसी में बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। आप जाइए टिकटॉक पे, अनिल सारजू के टिकटॉक पे, तो आप देख सकते हैं हमारा मिस्टर अंद्रे के गाना मैंने रखा है, हर एक के गाना मैं रखूँगा और आप देख सकते हैं कि हमारा भाई के है और कैसे गा रहा है। काफ़ी लोग उसे फॉलो कर रहा है और काफ़ी लोग उसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मिस्टर अंद्रे आपका गाना मैं आपके घर तक पहुँचाता हूँ, आपके नाम।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे देखा जाए यही अरमान लेके आज अपने घर से मैं निकला मूवी साहब है नेक दिन वीरन फैफ तक का है और ये इस गाने को मांग किया है हमारा भाई मिस्टर अंद्री जो काफ़ी अच्छे गाते हैं हमारे साथ तरीके चेंज करो को फरमात सीखे और सही जवाब को दिया था स्लापिया। ठीक है भाई मिस्टर, सही जवाब पे सही गाने को मांगा, बहुत पुराना गाना और बहुत अच्छा गाना, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और क्या गाने आपने मांगा है। ठीक है मिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंद्रे और शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं, सदा सुनते हैं और हमेशा ये पसंद भी करते हैं। ठीक है ये गाना भाई मिस्टर के लिए था। हम आगे चलते हैं, देखा जाए तो ईदन से मफराऊ शकुंतला जी प्रोग्राम को सुनते हैं, हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है स्लापिया और मांग किया है देखा जाए पैगाम मूवी पैगाम नेक तीन नेक ने पैक तक का है जो आशा भोसले पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी ने गाना को गाया और सुमन कल्याणपुर और दिलीप कुमार इसमें काम किया है राजकुमार। देखा जाए और कौन कौन है मैं ये बता सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं देखता है, लेकिन ये गाना जा रहा है ईदन शकुंतला के पास। अल्ट्रा चैनल्स पर

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे पैगाम, मूवी पैगाम, और वो नई कंटीन तक का है, आशा भोसले पद्मा श्री मोहम्मद रफी का, जिसमें सुल्तान कल्याणपुरी और दिलीप कुमार राजकुमार ने काम किया है। ये अच्छा लगाया था ईदन, ईदन से जहां शकुंतला जी प्रोग्राम को सुनते और सही जवाब को दिया था श्री भी। ठीक है, ये स्लापिया। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया ईदन से आप प्रोग्राम को सुनते हैं शकुंतला जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप फहन को सुनते हैं, हमारा रेडियो को सुनते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं ईपम बेरक से, जहाँ से मामू यूसेफ और हमारा मामी है जो यूसेफ के मशूका है, और सही जवाब दिया और गाने को मांग किया, एक पुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा मूवी असली नकली नहीं करती का है। शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, लाइरिक से हसन जयपुरी का, सिंगर है पद्मश्री मोहम्मद रफी, और हम ले चलते हैं ईपम बेरक की तरफ, जहां से हमारे मामू यूसेफ और मामी है, और यूसेफ के माँ शुका है अपने प्यारे प्यारे माँ शुका के लिए

0: करूंगा।
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, एक पुत्र बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। देवानंद साधना इस पे काम किया है, मूवी असली नकली, पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज और एफग्री लव सॉन्ग्स था। और जहाँ पे हमारा मामू यूसुफ इस सवाल पे जवाब दिया था स्लापियर, और प्यारे प्यारे अपने माँ शुका के लिए, मामी के लिए मांग किया है, एक पुत्र बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा इपम बेरक से इस गाने को मांग किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मामू जी, और मामी भी शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम जाते हैं फोर्स कोतन की तरफ, जहाँ से शांता सारजू आप प्रोग्राम को सुनते ही और बहुत पसंद करते ही और सही जवाब को दिया है। मेरा सवाल था ऑफ वेलक फ्राह या नोइट या अंतुर्दन स्लापियर, तो निवेदन बोल सके श्रीबी मिश्रीबी ऑफ, तो बोल सके सूते का एंगल्स, बोल सके जोन ताल में बोलिए खली क्लिंग छिहोवे के सूते है स्लापियर, तब तू जीत गए रहे, सही जवाब को दिया है और मांग किया है। देखा जाए वक्त से दिन और रात, मूवी वक्त नहीं फंसस्त का है, पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज़ है और म्यूजिक है रफी की, लायरिक्स शाहिर लुफानी के ये लायरिक से जो लिखा गया है, हाथ से आई कल और कलम पे जो लिखा गया वो शहरी लुफानी है। चलो हम ले चलते हैं फोर्स कोतन की तरफ, और वक्त का है और बहुत ही अच्छा गाना मांग किया है, वक्त से दिन और रात

0: वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शै गुलाम, वक्त का हर शै फेराज।
1: जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वक्त के दिन और रात। ये गाना सही जवाब से सही गाने को मांग किया, लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूँ। ये गाने को मांग किया है शांता सार्जु को हाबिर, जो फुर्स कोते में रहता है। एक बड़ा सा घटना हो चुका है नेपाल में, और काफ़ी लोग जो गुजर गया है, काफ़ी लोग अभी नहीं मिलता है। अरबी फिंग के आयल बहुत बड़का, अरबी फिंग से काफ़ी लोग दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी परिवार है नेपाल में, और काफ़ी बहुत बड़ा घटना हो चुका है। इसी की याद में ये शांता को हबीर सार्जू जो इस गाने को मांग किया है। दोस्तों बहुत ही बड़ा घटना हो चुका है, ये हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ऊपर वाला कहाँ हाथ में, लेकिन बहुत ज़्यादा दुखी परिवार है। अब कौन कहाँ है अभी कोई नहीं जानता है, काफ़ी लोग गुजर चुका है, काफ़ी लोग अभी ढूंढ रहा है, खोजा रहा है कहाँ पे है लोग कहाँ पे। और शांता को हबीर सार्जू जो फोर्स को उतन से प्रोग्राम को सुनते हैं हमेशा की तरह आज भी सुनते हैं और पसंद करते, सही जवाब दिया, लेकिन ये गाने को मांग किया है उन दुखी परिवारों के लिए। और इसके दुख में हम शामिल है, हम सब शामिल है। हम सोचते हैं जितने लोग इस प्रोग्राम को सुनते ही हमारे साथ है, फाउन के साथ है, हमारा पूरा टीम इस दुख में शामिल है। हर एक दुख में जो है हम सब शामिल है, और दुख को तो हम रोक नहीं पाएंगे। ये ऐसा चीज़ हुआ जो रोक नहीं सकते ही, जो हो चुका है हो चुका, लेकिन काफ़ी बड़ा दुख है इस देश में नेपाल में जो ऐसा घटना हो गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ऊपर वाला से ही यही दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से मांग करते हैं कि हर एक दुखी परिवार को सहन शक्ति दे, अपना दुख को सहने के लिए जो बाकी है बचा है अपना कारोबार आगे ले जाने के लिए। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब ऊपर वाला के हाथ में है। ठीक है, हम लोग मदद ज़रूर कर सकते हैं। कौन सा चीज़ अगर कोई मदद करना चाहते हैं तो खोजिए कैसे हम सब उन सबको मदद कर सकते हैं। मैं भी कुछ मदद करूँगा, इसके बाद हम ढूंढेंगे कहाँ पे हम मदद दे सकते हैं, कौन चीज़ हम कर सकते हैं। अपने तरफ से हम ज़रूर मदद करेंगे, नेपाल में काफ़ी बड़ा दुख हो चुका है घटना। ठीक है दोस्तों, हम प्रोग्राम को आगे ले चलते हैं। दो आखिरी गाना हम चलाएंगे, मैंने कहा था एक घंटे का हमारा टाइम निकालेंगे आज सवाल और जवाब के। अभी 11 बजे से 12 बजे तक हमारा कोलेगा का फरमाइश हम चलाएंगे, शांता दीदी के, शांता खेमाई जो ईनंदोस का जन्मदिन था, आज हम पूरा टीम उसके साथ है और हम पूरा टीम मिलके हम लोग एक उसके लिए फरमाइशें सुनाएंगे। एक घंटे का फरमाइश रहेगा, हम दो गाने और चलाएंगे। एक चलेंगे अभी, हम चलेंगे बरेदा की तरफ से, जहाँ से बिस्ना सोनू प्रोग्राम को सुनते हमेशा की तरह आज भी सही जवाब को दिया है स्लापिय, सही जवाब है दीदी, और सही गानों को मांगा है लग जा गले। फिल्म वो कौन थी, लता मंगेशकर की आवाज है, मदन मोहन की म्यूजिक है और आज मेहंदी अली खान लाइरिक से। चलो हम सुनते हैं, सही जवाब दिया है और ब्रेदा की तरफ चला गया है

जी हाँ दोस्तों, लग जा गले कि फिर वो दिन हंसी रात हो ना हो, ये चला गया था बैदा की तरफ जहाँ से बिस्ना सुनो प्रोग्राम को सुनते ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग प्रोग्राम को सुनते, वक्त तो कम है, एक आखिरी गाना हम चलाएंगे और ये गाना जो अभी था वो बैदा की तरफ चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी और स्वाखर के, आप लोग प्रोग्राम को सुनते पसंद भी करते हैं। ठीक है, एक आखिरी गाना हम चलाएंगे, वो चला जाता है दनहाक शहर से, दनहाक शहर से जस्मीन प्रोग्राम को सुनते हैं पसंद करते हैं, सही जवाब को दिया है और मांग भी किया है 1000 में मेरी प्यारी बहना, अपने प्यारे प्यारे बहना के लिए ये इस गाने को मांग किया है, हक बनता है क्योंकि सही जवाब को दिया है और हक बनता है कि जस्मीन भी इस गाने को मांग किया है। बुबू दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप प्रोग्राम को सुनते हैं हमेशा की तरह, आज भी पसंद भी करते हैं और बहुत ही बढ़िया गाना को मांग किया है, हम सुनाते हैं आपके घर तक पहुंचाते हैं और हम सब मिलकर सुनेंगे 1000 में मेरी बहना।

0: जी हाँ दोस्तों, ये गाना मांग किया है दनाक शहर से जस्मीन, अपने प्यारे प्यारे बहनों के लिए मांग किया है। फूलों का तारों का सबका कहना है, और क्या अंदाज में इस गाने को मांग किया है। और ये बताना मैं चाहता हूँ, ये एक आखिरी गाना था, यहाँ से हम ले चलेंगे आप लोगों की न्यूज़ और रेखनामों की तरफ। और देखा जाए तो हम इसे ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं और न्यूज़ हम आप लोग के लिए रखेंगे, न्यूज़ और व्यायाम चलेंगे अभी। और देखा जाए तो यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है अभी। तब तक के लिए हम कुछ बातें करते हैं और देखा जाए तो यही है। चलो दोस्तों मिलके सुनाते हैं न्यूज और बयान।
1: कातुन का तौर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbescherming, beschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B, Delftmeer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahun.
5: Digitale radio, fahunfm.nl.
6: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Directe aanleiding was een uitzending van eind juli waar Niemuller stelde dat Hitler bepaalde zaken goed zei. Minister Letcher noemde de uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verklaarde vandaag bij aankomst in het Ierse Wicklow dat het tekort aan luchtverdediging het grootste probleem is voor Oekraïne. Ze riep landen op onderscheppingsraketten met een aflopende levensduur te doneren. Juli en augustus waren volgens haar de dodelijkste maanden voor de Oekraïnse burgerbevolking door Russische escalatie. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. Het weer dan tot slot. Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes, waarna het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het kwik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meest matige westenwind. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahun Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: Ja dosto, abhi aap sun rahe the news aur reklamon ki taraf. Hum le chalenge, le गए थे आप लोग के। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरा वादा था, मैंने वादा करके वादा जरूर निभाऊंगा। अब हम चलेंगे, हमारा कोलेखा फाहुन रेडियो का उम्रुस्तर जो है, हमारा दीदी है, हम दीदी कहते सदा उसे, शांता खेमाई, जो इन दत्तक ऑक्सिस्टस का इसका जन्मदिन था। आज हम एक घंटे का प्रोग्राम वक्त निकाल के हम उसका फरमाइश है कुछ अपने तरफ से। हमारा कोलेखा जितना फाहुन के कोलेखा है, हमारा कोलेखा है और उम्र ऊपर है, हम सब बतिया करके एक घंटे का प्रोग्राम निकाला है शांता खेमाई के जन्मदिन के उपलक्ष पर हम सब कुछ फरमाइशें सुनाने वाला है। हम चलेंगे यही कहेंगे कि चलो हम सब मिल के, जितना लोग भी सुनते प्रोग्राम को, हमारा पूरा टीम सब कोई मिल के भगवान से ही प्रार्थना करते ही, ईश्वर से ही मांग करते ही, अल्लाह ताला से ही दुआ करते ही, सदा हंसते रहना, सदा खुशी रहना और मालिक तुमको इतना तंदुरुस्ती दे के सदा हम लोग के साथ रहना। फहून रेडियो पर हरदम अपना आवाज़ को सुनाना और यही दुआ, यही प्रार्थना हम कर सकते हैं। हमारा दीदी शांता खेमाई जो इंडियन देर तक ओक्रिस्टिस के जन्मदिन था, आज हम सब उनके जन्मदिन मनाएंगे यहाँ से लियो पे। लव बोट में खाना पक रहा है और कोई अनहैप्पी मांगे यही तक करे, कोमल लंग्स यहाँ पे बोट लगा है, सर सराहत हवा चल रहा है और फरियारी के गाना हम लोगन चलाएंगे एक घंटा। तो दीदी आप इस प्रोग्राम को सुनते हैं शांता खेमाई, ये गाना जो है आपके नाम हम लोग करते हैं, पूरा टीम जो है हम लोग के, और पूरा टीम की तरफ से हम लोग आप लोग आपके बहुत बहुत बधाई देते हैं। मैंने कहा था भगवान से ही प्रार्थना है, ईश्वर से ही मांग है, अल्लाह ताला से ही दुआ है कि हर खुशी आपके कदमों में रहे, सदा खुशी रहे, हर एक गम भगवान निकाल दे आपके जीवन से, बस सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। और चलो मिलके सुनते हैं फरियारी के गाना। तो

जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, मिस्टर जैक वकीत हुसैन से भी हम सुन रहे थे, तेरा आज जन्मदिन, तुमको मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। शांता खेमाई को बहुत बहुत मुबारक हम सब देते हैं, पूरा टीम फाहुन के, और जितना मना हमें ऐप के सबको खफिलस्तेद बोली सेगा, जितना ऐप पर हमारे टेलीफोन पे हर एक खफिलस्तेद बोली सेगा, और सकोमन हाफिए यही तम बोली हैं नाच वच हो लगल बा लव बोट में, बड़का बड़का झिंगा साथ ही पे रखाई गएगा, जो फेर सिंह पे पकड़ा नेगा, सुनुक बार्स रखल है, सब कुछ बारबेक्यू के ऊपर रख चुकल है, और नाच हो चुका है, इसलिए थोड़ा डांस चुनमुन वाला गाना हम चलाएंगे, क्योंकि डांस जरूरी है। तो लीजिए शांता खेमाई, आपके नाम एक और आए, एक बार फिर से जन्मदिन मुबारक हो, और हम सब मिल के मनाते हैं।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे स्पेशल सॉन्ग्स फॉर शांता खेमाई के लिए, जो इन देता को क्रिसमस का उसका जन्मदिन था, आज हम सब मिल के मनाते हैं और खुशियाँ भरे दिन हम उसे वेंस करते हैं। हेल खुई दाख, हेल खुई, हेल लोई के दाख एंड मोइसे, अपना जन्मदिन को मनाइए। हमारा बहन और फाहुन का एक बहुत बहुत अच्छा उम्र अफसर है और हम लोग के कोलिखा है, बहन है, और ऑर्केस्ट्रा के साथ जन्मदिन था, आज हम लोग मिल के मनाते हैं। स्टूडियो में हम लोगों ने कुछ खाना पीना है दोस्तों, अभी हम लोग मिल के मनाएंगे उसका जन्मदिन, और कुछ अच्छी अच्छी गाने हैं, हम लोगों पूरा टीम की तरफ से उसके लिए गाने को चला रहे हैं, और यही मांग करते हैं हर एक खुशियाँ उसे मिले जो उसे ज़रूरी है, हर एक दुख निकाल दिए ऊपर वाला भगवान, बस सिर्फ खुशियाँ ही दीजिए। किसके जन्मदिन है, साल में एक ही बार आता है, और ओकर व्यर्थ दिन देर तक के उसका जन्मदिन था, आज हम सब मिलकर मनाते हैं। और देखा जाए खुशियाँ का दिन, स्पेशल स्पेशल बर्थडे गाना है, हम सब सुनेंगे, और स्पेशल शांता खेमाई के लिए।

जी हाँ दोस्तों, खुशियों का दिन आया है। भगवान करे हर एक सपना आपका पूरा हो जाए। शांता के माई के जो इन देवताओं क्रिस्टस का जन्मदिन था, आज हम सब मिलकर मनाते हैं और फरमाइशें सुनाते हैं। नामो सैलतिम फाउन हिंदुस्तानी के हिलतिम इंक्लूसिव। हमारा जो डायरेक्टर है कुमार गिराव भी, हर एक मिलके हम लोग उसकी फरमाइशें पूरा करते हैं एक घंटे का प्रोग्राम। और भूल मत जाना, शांता भी एक हमारा फाहुन का हम लोग के कारों को ग्रुप भी है फाहुन में, उसमें वो भी बहुत अच्छे गाने को गाते हैं। हमारा हम सब दीदी है, हमारा दीदी है पूरा कोलेखा है, हम लोग के जितना कोलेखा हम लोग के सब कोई की दीदी बोलते हैं, हम भी दीदी कहते हैं। शांता दीदी का जन्मदिन है, हम लोग इसी खुशी मौके पे अच्छे अच्छे गाने गाए, अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं फिक्की पराग की तरफ।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे स्पेशल बर्थडेस गाना है जो स्पेशल शांता के माई के लिए है। इन दत्ता का उसका जन्मदिन था आज, हम सब उसके फरमाइशें सुनाते हैं। वक्त नहीं लेंगे दोस्तों ज़्यादा, क्योंकि एक घंटे का प्रोग्राम थे। हमने चलते हैं हरीश मुयाल जो सिंगर है गाने का, ये भी जन्मदिन का गाना है, और जो लायरिक्स लिखा है सपना बे का सपना, और रश्मीन पराग इसका जो म्यूजिक बजाया है, और हम सब सुनेंगे स्पेशल फॉर शांता खेमाई के लिए।

जी हाँ दोस्तों, पूरा टीम के तरफ से शांता के माई को मुबारक हो तुमको जन्मदिन पे तुम्हारा। हम यही दिल से कहते हैं, दिल से निकला हुआ दुआ है शांता के माई कि मुबारक हो तुमको, सालगिरह मुबारक हो। चलो हम चलते हैं तेरा आज ये जन्मदिन नदीम खान की आवाज़ में।

हम भी कहते हैं दिल से निकलते हैं हमारा पूरा टीम की तरफ से शांता के माई को जन्मदिन मुबारक हो। और हम चलते हैं फिर से बार बार दिन ये आई जोनू निगम की आवाज है और स्पेशल स्पेशल फरियार के गाने हैं जो स्पेशल शांता खेमाई के नाम करते हैं।

फर्स्ट आज हम सब मिलकर मनाते हैं। काफी लोग अंदर आ चुका है और सब चुनमुन करना चाहते हैं। आपका प्रोग्राम 20 मिनट और बचे 20 मिनट हमसे चुनमुन वाला गाना चलाते हैं। शांता खेमाई अब हम यहाँ पे चुनमुन हो रहा है। चलो हम रखते हैं क्रिस राम खेलावन के फरियाद दाखिल बनना, लेकिन चुनमुन वाला गाना है। हम सब चुनमुन करेंगे स्टूडियो में, क्योंकि अब तो फेस चटकल है शांता खेमाई का जो जन्मदिन है।

जद सबाजल लागे पायलिया। हमारा जो टीम का जो अमृतसर है उसका जन्मदिन था, शांता खेमाई का जन्मदिन था। हम सब एक आखिरी नकबाव चलाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे न्यूज़ और बयान की तरफ, और उसके बाद कुछ गाने, कुछ लाइव भी गाने होंगे। देखा जाए तो हम शांता को बहुत बहुत बधाई देते ही खेमाई को कि आपका जन्मदिन था, एक आखिरी गाना हम सब चलाएंगे पूरा टीम की तरफ से। और आपके नाम जो एक घंटे का प्रोग्राम था शांता दीदी, शांता हमारे आपके ग्रुप का एक बहुत बढ़िया अमृतसर है, रेडियो फाउन का एक बहुत बहुत बहुत ही बहुत अच्छा अमृतसर है, बहुत विशाल जो गाना गाते हैं हम लोग के साथ फाउन कारों का टीम में, वो भी गाना को यूज़ करते गाना गाते हैं। और यहाँ तक था आपका ये फरमाइश, भगवान आपको इतना सब चीज़ दे, तंदुरुस्ती दे, हर एक चीज़ आपको दे जो आपको ज़रूरी है आपका जन्मदिन। साल में एक बार आते हैं हम सब मिल के, एक बार फिर से मांगते हैं भगवान से ही, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, मांग करते हैं अल्लाह ताला से, दुआ करते हैं कि हर एक चीज़ आपको मिले जो आपको चाहिए। एक आखिरी गाना हम चलाएंगे, चुनमुन वाला गाना, उसके बाद हम चलेंगे न्यूज़ और रेखलाम की तरफ। यहाँ तक था हमारा फरमाइश शांता के माइक के लिए।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सुरसु चिमाता दीजे हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भी, अदाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है, हमारा काम यही है, हमारे मोहब्बत भरी पैगाम। अभी आप लोग हमारा कोलेखा साथी और वो है अनिल, अनिल, अनिल सरजू के प्रोग्राम को सुबह से लेकर अभी तक 12 बजे तक सुना है। साथ ही साथ हमारा कोलेखा साथी सांता, सांता, सांता के मई के जन्मदिन जो कल थे, बहुत बहुत बधाइयां है, उसका फरमाइश भी अभी आप लोग एक घंटे के सुने हैं। यहां से हम 12 से लेकर 1 बजे तक देश और विदेश के समाचार को सुनाएंगे। आज है मंगलवार, 1 तारीख सितंबर हो चुका है। हमारे यारो, जितने लोग इस महीना में यानी कि सालगिरह है, आम सभी को हम बधाई देते हैं, और खास करके मारई को, छोटू सूरज बली को, जो 18 तारीख सितंबर को अपना जन्मदिन को मना रहा है, बहुत बहुत बधाइयां हैं। और लोग जो सितंबर में यानी कि सालगिरह है, सबको बहुत बहुत बधाइयां हैं। यहां से हम लेकर चलते हैं देश और विदेश का समाचार।

और इसी ट्यून से आपको तो पता चल चुका होगा कि प्रोग्राम को हम चलाते हैं यहाँ से। तो हम तुरंत चलते हैं हमारे दोस्तों सूरीनाम में। भैया एक जबरदस्त फराख वाहन में आग लग गया है और सब जर के भस्म हो गया है। तो सब जर के भस्म हो गया है, ये बातचीत हो रहा है एक रास्ता के नाम है अफुबाकावेख में। हाँ, तो ब्रंथवीर जबरदस्त वहां पर जाकर पहुंच गया भैया और बोले है आग लगल रहा त्रिक फ्राक वाहन में और बोले है दिको नीट मेर वर्दन खरद मन से और जर के भस्म हो गया फ्राक वाहन। अब पताना है कि कैसे त्रिकुआ में फ्राक वाहन में आगी लगल है दोस्तों। आजकल आगी बहुत जबर हो। देखो एगो भैया खास फॉरनेस के मानचित है, एक मिला चढ़ाए रहा खास फॉरनेस पे भैया भात बनावत रहा, खाई बनावत रहा पोत राइस ऑफ खास फॉरनेस और भुलाई गे रहा बुलवोनिंग इन बस्टेल वाहन फॉर लीडर एट ब्राउन और घर के साथ साथ हुआ पे को बस्टेल भेज भी रहा। सब जर के भस्म हो गया। बीते हुए हफ्ता में एक मेला भी भैया हाँ हड़िया में कि करहिया में तेल लाड़ के भुलाई सूत गे रहा भाई और आग लग गए घर भर जर गे रहा। और यहाँ फिर बातचीत हो रहा है स्टेन लाखवेख के सोमवार के एनन दर तक ऑगस्टस के पूरा घर जर के भस्म हुआ और वहां खराश में एक विष भी रहा एगो बस्तल वाहन भी रहा वो भी जर के भस्म हो गया। और यानी कि परनाम की सिपाही जाकर वहां पर पहुंचा और एक बजे दिन को आगी लगा है। बोलेगा फॉर ट्रोकन इन द रिक्टिंग फन सन रई एड फॉर क्रीकन इंफॉर्मेशन ब्लैक दैट द हाउस बोनस ओमस्ट्रिक इन यूना सन रई इज फॉर ट्रोकन द 20 jarige MP haar voordat ze vertrok een pot rijst met op een gar voor neus gezet. Tijdens haar aanwezigheid werd zij door een buurvrouw gebeld met de mededeling dat de rook uit haar woning kwam. Aur yeh me khai bhat chadhai ke chal gaya richting Sandrei. Buurman ke bel kar it bole tor ghar mein se dhuan nikre hai aur bole ab weg terug naar huis. Ria realiseerde de vrouw ki ki ghar mein wo bhat chadhai raha. Bole hai ke brand de gras voor neus had laten staan. Toen zij bij de woning aankwam stond het pand al volledig in brand भैया, आग लग गया है और बताई गई है का ब्रांतवीर aan zijn rechterarm en toen hij probeerde hond uit de garage in veiligheid te brengen. Volgens eerder verklaringen liep de partner van de vrouw brandwonding Jerge Raja van Kutta garage met zijn karadra bole ugeil hai academisch ziekenhuis mee aangesloten op het elektriciteitsnet brandschade verzekerd en niet tegen brandschade verzekerd घर brand verzekerd naar तो बड़ी दुख के बात है हमारे जनता। देखो क्या हुआ है ओदे फीत टीनर्स एंडक इन डोट 16 यार का मुंग मुंगो में पुराना झगड़ा रहा भैया देर तक या ऑगस्टस के और छोड़ी भगवान भैले मुंगो में एगो 15 बरिस के फरदख्त एरदी के समन पकड़ी से बताए गए हैगा जबर कॉन्फ्लिक्ट रहा ही दोनों के द पुलिस सी हैड द स्टेज बमिरल एंड बेड पार्टी इन आर एनस्ट खवास गिविंग नर हाउस कस्टूड बताए गए ट्वी यंगर्स डू लंदन अतवार के यूलिया ना फेल पे अब न्यू टेकन क्वामी से फिन भेड़ भइल है। तो एगो एक्वा के बॉस कास में छुड़ी भोग दे से भैया गेल एरखीबी पोल के पोली क्लिनिक में और बोले फरतोंद बे आनकम्स हिन टेकन फॉर लीफन और लंडवा मर गए भैया। तो ई पुराना झगड़ा में अब देख एक मिला के जान चल गए है। बड़ी बड़ी दुख के बात है। हम चलते हैं भैया गया दिन के ओर। ई कौन गया दिन है देना देना फ्रक्सी पे यहाँ पे एक आशीष कुमार गया दिन के बोले हैगा सूरीनाम में बोले जो अल्खमीन वेट फन ब्लास्टिंग हैगा बोले हैगा नेशनल असेंबली बर बना द्रुक करी से किस तरह का ब्लास्टिंग चीज नो साकलक इस मार दत दारबे द ook duidelijk grenzen en voldoende rechtsbescherming moeten worden garandeerd. बोले चाहेंगे स्ट्रेंगर ब्लास्टिंग है बोले बाकी भी चाहें खरेंस रहे के कि कैसे हम ब्लास्टिंग ने कहा बोले इन कर बे गया दिन बोली से फिस्काल आर्किटेक्टर बोले है ऑन द स्केट मार्क्स इन हैफिंग
और बताया गया है दोस्तों रेख बस्कैरमिंग भी चाहिए रहे कि जनता का रेख भी चाहिए को बस्कैरम करे के और मोबाइल ब्लास्टिंग फ्लिक तक भी चाहिए रहे के है नूम द ओंडर मेयर हेड मोमेंट वार ऑफ इंफॉर्मेशन वर्क फ्रा अन बुकन ऑन द सु प्लाट्स फिन तो ये बात है स्टर्क ब्लास्टिंग दिन गया दिन बना देकर दाते फोर्थ स्टैंडर्ड इज फ्रॉम स्टर्क ब्लास्टिंग दिन है फिन ईर्डर Echter dat duidelijk moet zijn wat onder een sterke dienst wordt verstaan. तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता हम जाए तेरी मथुरा भैया बोले लोन्स फॉर हुकिंग 15% अमतनार हुआ पैसे ओमदाज यानी कि सब मांग की से बोन मांग करी से कि हम लोग के फॉर हुकिंग 15% चाहिए लेकिन लांटी उसे के 15% दे से तो एमा कृष्णा मथुरा पार्लियामेंटारियस रखेरिंग से पूछी से कि लोन्स फॉर हुकिंग जो 15% आमतनार के देले हैं बोले ये पैसवा तो लोग कहाँ चलाई के भरिए बोले द फॉर हुके मुत एन सितंबर टू इडिशन सेशन टू इन तक इन खांग बोले सितंबर में चाहे भराई लगे कि मां बोले पैसवा तो लोग कहाँ पाइए तक राई का तैर बोली सेगा कि जो आदमी पेंशन पावे आओ फे पावे है बोले उस सबके खरख तक दन बोले दी नीत रेक्स्ट्रीज ऑन द लो फॉरहुकिंग फॉल बोले ओकर बारे में कैसे है जो पेंशन पावे है वट डू द रखेरिंग जो कोप क्राफ्ट रहेगा फॉर मेंशन जो पेंशनर बा आओ फे पावे ऑन फंग द फर्स्टर्कन ओके कैसे फर्स्टर्क करिए मथुरा बोले है पार्लियामेंटारी वेल दानास ऑन ओवरसेक फॉर फाइनेंशियल गफोल्गन फॉर फॉरहुकिंग पर मंथ एंड पर ईयर हैवन बोले है मथुरा वेल फॉरऑल दैलक है ओवर फाइनेंशियलिंग से फ्राग welke concrete begrotingspost de loonverhoging wordt betaald. कहां से भराएगा बोले सेंट्रल बैंक पार्लियामेंटारी स्टेल दारान फ्रागन के सेंट्रल बैंक जो सुरीनाम के है से विल ओपहेल्डरिंग ओवर द बरिक्टिंग दैट मोमेंटेल ट्वी राडन फॉर कमिसारन फंक्शनेरन एंड दैरफॉर वर्डन बताल मथुरा फ्राग द रेगिंग बफेस्टिंग ऑफ दैट इन द लास्ट केफाल इज वेल हु फील एंड इन मिडल ऑन राडन इज आउट बताल तो ये बात है मथुरा पूछे है कि 15% तुम बोले दिए मैं पैसा कहां से दिए और हमारा बुढ़िया पुरानियन है बोले ओके कहां से तू भरी है जो पेंशनर थे तो जो दोस्तों पार्लियामेंटारियन विल इन वेतन हु रखे ने लोड फॉर हुकिंग अमतरान खाद फिनाशेरन ते एक बारे में असेंबली एक बारे में पूछी से और ना खाली मथुरा पूछी से बोले द फक मोर देन 25% बोले एक बारे में मांगे हैं हमारे यारो हमारे प्यारे प्यारे जनता सुरीनाम के और हॉलैंड के हमारे दोस्तों है हमारे जनता है तो हम और आगे को चलते हैं देखो दौदन ताल भैया हम जाएला नेपाल में 1000 आदमी से ज्यादा मर गए नेपाल एंड तिब्बत में बहु फंड दैसन मेन जिन थोट मेन इन दूर द ओवर स्ट्रोमिंग इन नेपाल afgelopen tot boven de 1000 hoe je hebt. Nepal met je rampen diensten. Mangerwaan ke betawe 987 ram. Maar op 1000 hoe je hebt. In Geneka bole he. China bole he. Eerder werd bekend aan de Chinese kant van de grens. In Tibet met zeker 16 mensen om het leven waren gekomen. Uit China ke gedeelte met baan. तो ये सब बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता तो नेपाल में बहुत दुख है हम सब तो हमारे दुख में साथ है नेपाल के जितने नामस्तान है अब देखो भैया 43 लाख ऑफर स्पिन भैले रेस्टान जबर अनफाल करी से उक्रेन में जहां दसन आदमी मर गए हैं ये बात हो रहा है उक्रेन से दो रूसी अनफालन ड्रोन से रॉकेट करी से इन उक्रेन से और बोले हैगा दसन आदमी कीव में मर गए हैं ओमलेखन द रेखियों में हेट इज द सेस्ट दाग ऑपरे वार ऑप रूसलान अनफालन ऑपरे उक्रेन से होफ स्टार्ट आउट फोर्थ
इकर बारे में सेलेंस्की बोले हैं, टोटल 12 आदमी फिलन अंदर भी ईमान ऐत इंडिया के भी मर गए बैर आनफाल ऑफ स्पोर वेक डिपो इस की फिलन 7 डोनन 10 टालन मेंस राखते गवोन ook elders in het land viel Rusland aan. In Ryuka Udesame kwamen duizenden huishoudens zonder stroom te zitten. De dekobayaise Jan Muske admi marehe. Aar udher de overstroming se Suriname yaniki Nepal me bhail. Uto haye satisan bhaiya. Tanker 3 daiche 3 maal kharak bij een straat Hormuz me tu jane jo ban kare se Amerika se Iran se bhin juddh hoi gaye bhaiya phir shuru hoi gaye hain. एगो टैंकर के संबंध आगे से गा जो ब्रिजेस के पास मोनिटर रहा वो मेल्ड करी से कि प्रोजेक्टाइल तेजी से उत्पादन फॉर द स्ट्रेट फ्रॉम होर्मुज अ महत्वपूर्ण डोरगांग है जो ट्रांसपोर्ट करे खास तेल और मेस के बारे में 30 किलोमीटर तेन ओस्टर फ्रॉम उमान स्टान कासाब में बोले कि सैन स्लाखोफर्स तो ना भले मैं बोट में 3 को गई है लगल है एक बार में अमेरिका और ईरान बोले हैं फॉर ए सेंस जूली में ओवर एंड वेर आनफालन ऐदरी में भले अमेरिकांस लीकर बोले ईरान से रिफ्यूजनर खार्द के आनफाल करी से opgemaakt om zeemijnen te leggen in de straat van Hormuz. Vervolgens vuurde Iran raketten op de Amerikaanse basis door Jordanië. Maar Iran belemmer kreeg al maanden met een scheepvaart verkeer door de straat van Hormuz met dreigementen en aanvallen op schepen. Tegelijkertijd handhaaft de Amerikaanse marine aan actieve zeeblokken van de ईरानी हाफ़ंस के बारे में हमारे जनता और हम जाई है और आगे को सुरीनाम में भैया जो हम लोग के एसेट एडवोकेट है ही को एसेट जो रहेगा जो दिसंबर मोर्द के बारे में लड़त रहा अब यहाँ पे वास्क्यू करे कोवालिची के फॉर ख्रुयन फर्सेट देखन इन पैर का फंदर रख लकमाख बोले हैगा वास्क्यू करे हैगा ख्रुयन द फर्सेट जो उसे फर्सेट करे है रख लकमाख हम लोग के रेखतस लोग के बारे में तो एक बारे में ही को एसेट बोले हैगा बोले मस्खपलक फर्सेट देखन मात्रेगल दी फॉलोअर्स हिम onafhankelijkheid van de rechterlijke macht kunnen aantasten. Dat zei Asset in het programma van Wel Ingelichte Kringen mee. Die hemelijke regering die uitvoerende macht heeft. Hemelijke rechterlijke macht die willen beperken. Die ze onafhankelijk een goede nakkerpouwen hebben. Ik erbij mee willen coalitie ervan verzekerd zijn. Dat de maatschappelijke middenveld de democratische rechtsstaat zal blijven verdedigen. Hij zegt dat de verschillende ontwikkeling wijzen op toenemende zorgen over de positieve onafhankelijke van de een rechtelijke macht. To ye baat hai hamare pyare pyare sunne walo hamare janta. To aur aage ko apna samachar ko lekar hum chalte hai. हमारे प्यारे प्यारे जनता एक भैया पार्टनर अपन आदमी से झगड़ा करी से और अकर आदमी रहा सिपाही भैया पार्टनर फन पुलिसमैन और वो का करी से आदमिया से झगड़ा भइले बस ओकर पिस्तौल लेके पेल भागल भैया मोर्द विस्लिंग भइले सिपाही से कर औरत से देर तक ऑफिसर्स के और वो लेके पेल भागल है और खले तो न आनहोनिंग फन 35 यार के एन हांड vrouw zou tijdens een ruzie vernieling in de woning hebben aangericht met een scherp voorwerp in de richting van haar partner hebben gezwaaid op een Adamiake. कुछ छोड़ी उड़ी लेके स्वाई करी सोकर पुलिसी के जो सिपाही के ओकर आदमी रहा ओकर पिस्तौल लेके भाग गए हैं और सिपाही जाए को के पकड़ी से और बोले घर फर्नील करी से औरतिया है सौ से इन मोमेंट फन स्कर फोर बैर हेवन खपाक तो ये बात है हमारी जनता कि औरत लोन देखो का करे भैया बोले द पुलिसी मान वेंद से खीर ना तो बीरू मिंदर एंड डीट आनखिफ्त अपन ऊपर अपन औरत के ऊपर De verdachte werd vervolgens overgebracht naar de politiebureau. Kijk een enemieke toe. Chori kalele he pistool ke baare me. Hamare pyare pyare janta. आप लोगों ने जानो है एक रोदनी लाइसनर देशवा में लाश हुई गई सूरीनाम में भैया
फिल्म के अजमीरा, ऊपर से डायरेक्टर में काम करता है, डायरेक्सी में, रिजिदा में, और ये लास्ट शो ये 15 तारीख अगस्त में रोडनी लाइसनर 25 तक या रखे। एक बारे में कितना आदमी पकड़ान है, एको की सिपाही पकड़े रहा हो के छोड़ दे रहा हुआ तक ना मिलल है भैया, पता ना है मैं पैसा की चुकू रोल खेली से। अब नीदरलैंड से एगो स्पेशलाइजेड नीदरलैंड से सुक टीम गई ले कुत्ता उत्ता ले के और संदरई पे उतर के भैया जाए के स्पोरक खोजे के कि नीदरलैंडर जो बा ई कहाँ बा। और ये काम करता श्री नाम में भैया फर्मिस्ट ओनर नीमर एंड फिल्म प्रोड्यूसर के गए ले इसे खोजे, वो तो मिलल ना भैया सनमा का कहाँ जंगल कनाल में सब आगे आगे लगल ना है। टीम इस ऑफ कोर्स फ्रॉम स्टेक्टिंग रेडर्स होंडन uit Nederland। Volgens eerder bevestigde informatie bestaat de groep uit 8 hondenbegeleiders, 8 speurhonden en 7 ondersteunende specialisten. Op het aanwege sub kutanjon hega, sub getraind hega op spoorkeren ke bare mein rond water en tussen puin en kunnen worden ingezet voor het zoeken naar zoveel levende mensen of overledene mensen. Ke kutta speciaal geil hai, लेके खोजे। एक बारे में सुरीनामे को ओएम जो नहींगा हेव इन मेडल टू स्टेमिंग देसेगा कि नीदरलैंड्स के टीम के कितने जाए के खोज सके है। और बोले है स्ट्राफ लेखलक अंडरसुक ब्लाइव ऑन द लेडिंग फन सुपरफिसी फन कोर्स पॉलिसी सुरीनामे। और एक बारे में भैया बताए गए बैतलांसे सुख अक्सी वोट गफिनाशेट door Rudisa Internationale NV, het bedrijf waarvoor Leisner werkzaam is. De kosten zijn begroot ongeveer 50.000 euro. Willen daaronder vallen onder meer het vliegvervoer van de mensen en honden, verblijf lokaal vervoer, materiaal en verzekering. De financiering kwam volgens Rudisa in overleg met de familie van Leisner tot stand. To op ik erbaan in betalingen heen, kies ik een swampu het district मक्का में टेक्निशन अंडरसुकर बतावे कि ओतो एगो वित क्या जुरिंतो वहां पे मिलल है भैया जो जर के रहा 15 तारीख अगस्त से इलाज भइल है। फोक्स एक्चुअल बरेख के इवेंट सिट इन द सा 3 verdachten फ्रांस एंड इस 4th verdachten नो फॉर फ्लुक्ट तो अब सिपाही लोन पकड़ी से verdachte के और छोड़ दे इसे अब फिर से गल खोजे तो ऊपर फ्लुक्ट हो गए भैया उपेल भांगल है। एक आदमी भैया काम करता खराब मशीन जले पोकलाइन ओकलाइन से नाम में बोले है और पोकलाइन चलाते में इन्हें दर्तक ऑफिस के वांछित है इरीन फलन में। और भैया एगो पेड़ गिरल है तो रेक्ट वारे ने अब मोमेंट आने वेरक वाज एरस्टक आरबेस ऑन खफान भइल है सवेरे 9:30 बजे। आई ऑपरेटर जो रहा में द खराब मशीन तुन ओप बपाल मोमेंट एगो पेड़ एक मशीनिए पे गिरल है और बताई गई है और न बताई से डेंसिटी से लिफ्टेड के बारे में ये नमिया के मैं पॉलिसी ब्यूरो ब्रांच वेक के गई है इरेन फालन में। और वहाँ पे पता मिलल है कि पेड़ गिरल है मशीन के ऊपर। और यहाँ पे बताए ईस्ट पॉलिसी और क्वाम नार फोरन कि स्लाखतोफर से है ऑनगफाल इन द ग्राफ मशीन बफोंड एंड दार में वर्कसाम ही इन उत्फोर्दन वारम द बो प्रसीज ऑफ फील ऑफ द मशीन में से maandagmiddag dat de operator bij de incident dodelijk werd getroffen. De doekje baat hij kam kerte mijn bichara. Marge bhaiya, bahut bahut bahut bahut. Afsos ki baat hai. Hamare janta ab dekha jaye bhaiya automobiles are riding kari se Melbourne fields aur mar ke bhagye bhaiya. ब्रह्मुआ के मार के भग गए भैया सनिचर के रात के बात है रिंग वेक के बातचीत है। और बताए गए द खवन द ब्रोफिसर वेर ना है ऑन खफेल एम्बुलेंस ओके ले गए है नीघंत नियार के गलौंडा के
op het eigen verwachtingenverzekering zal worden gesteld. Het gaat om een 19-jarige AZ die volgens de verkregen informatie naar verwachting in verzekering zal worden gesteld. Oh, de pakkerisjongen is Bariskelondake. En vooralsnog niet bekend over geldige rijbewijs ook in de Hakina. Aureke pakkalese bija. Toen kon ik een malle, een marke voor een fietser. Ik hoorde dat het dubbel feit kalib haai. Want op de oké, maar jij. Tap toe kaker yo. Want ab betu hua per rehte te sait ek tu bachai sakte ab dekho bhaiya leguana suriname mein ban hui ge hai 1 september se leguana ab ban hui ge hai suriname desh mein leguana namak pakde ke to tet met 31 december Het jagen, verhandelen, hebben, houden, kopen en verkopen van boomkip is verboden. Ze hebben leguana ke bole peerwala murgi. De abhaya jato ke pakadi sipahi te barakas ke pakadke ban kariga. Karen ki leguana ban hoige hai Suriname mein jaise kukuhi ban hoja hai. Harna ban hoja hai. Aise leguana namake pakde ke Suriname des mein. Aur leguana ye pakal le te to ke leguana ne sipahi pakad ke ban kar di bhaiya ye baat cheet ho raha hai hamara Suriname ke legu maharaj ke je ke sab bole hai पेड़ के मुर्गी हाँ पेड़ के मुर्गी बोले हैं हम आप लोग को एक गीत सुनाते हैं तो अभी हम वापस आ जाएंगे और ये गीत क्या है हमारी जनता सुनने लायक

मेरा तन डोले और मेरा मन भी डोले, और कैसे डोले, कहाँ डोले, कहाँ डोले, कैसे डोले, ये आपको फाहुन में तार करके बताना पड़ेगा कि दुपट्टा कैसे डोलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे जनता। तो हम और आगे को चलते हैं अपना न्यूज प्रोग्राम को लेकर। अब देखो भैया, दरवाजर जितना बा ना डरियो, दरवाजर के नाम सुन ले आदमी तक कितना डराइया है। हाँ, तो कितना डराइया है दरवाजर के नाम सुने। Vereniging van Doorwaarders in Suriname maakt een zwaarwegend bezwaar tegen onderdelen van een ontwerpswet tot wijziging van de wetgeving. Wijziging van de burgerlijke. Volgens de vereniging bestaat het risico dat burgers en onderneming die na een rechtszaak gelijk hebben gekregen, hun toegewezen geld moeilijk of zelf niet meer kunnen innen. Maar ja, wow, baantje, hoor aan Suriname, ke, hamare janta, dekho kya hua hai. Bole de zorgende richting, zeg maar de naam wil voorstellen, waarbij de bestanden beslagen om de staatsmiddelen collectief kunnen worden opgeheven. Te doorwaarder ke, naam het me sune, te bhaiya, bole bapre, दरवाजा आज बोले कटलीस लेके दरवावे, बोले लाठी ले पहले रा भैया, अब दरवाजा अपन सिपाही के लेके चले हैं आज बस कर्मिंग। दरवाजा से खराब ना करियो। अब देखो भैया, मियां बतावे लीसिंग, लीसन इज ओकन कुंस। हां बोले बताएंगे 4,7 मिलियर्ड अमेरिकाanse डॉलर schuld even als 8,7 मिलियर्ड वर्थ। एकर बारे में बतावे गई बीते हुए हफ्ता में कि 8,7 मिलियार्ड खिंग रोन, बेना है डबल फन वाद दख्तन, वाद वो दख्तन तो वेतन, तुन कॉमन ब्यूरो फन साथ स्कूल में कोरेक्सी फन 4,65 मिलियार्ड। भैया तब देखो कितना बड़का फर स्केल है। वी अलेन द कोपन लास सख तो फेतन दी एलकार तेगन स्प्रेकन, वी खुद लास सख इस अंदर्स, तो ही बदरखवन मोई से पढ़े के नलवन ताक लियो भैया, कोमा ताक लियो, तो तब पता मिलेगा कि कहां कितना बदरखवा है। और घड़ी भी देखियो भैया, तो एनन ट्वेंट हंड्रेड ईयर जो है 9 बजे है रात, ढेर आदमी लेके नहीं का ईयर, तो सोचे 9 बजे सवेरे है, दोस्त रात मु तो ओग मेन से एफ खुद कह के सोम्स राग दी देंगे इन फरमात लिखा ले सेफ ईयर, तो ना लिखे कि सेफ ईयर, जब लिखियो भैया तो सात बजल ले रात भी, तो वांत ओ सात बजल ले सवेरे भी, लेकिन सात बजे रात इस निखंत इन हंड्रेड ईयर में से सेफ ईयर इस ओख्तन, दस ना 12 ईयर वर्ड तक खालेग, ना 12 ईयर वर्ड तक इन एन ईयर 1300 ईयर 1400 सो इस इट में से एक ही लेसे, मां हील फील में से रात इन इन फरवार में द टाइट क्लॉक ओग नेट अस में द कोमा एन नल बे द bij de bedragen. Op de kop, hij hoe kan hij ego auto jij ke marise ABS ke paal me afubaka me pata chalel he admi bole bole auto hua bole ki rasta me raha palwa pale palwa rasta me raha me jana bichwa damua pe ABS gaade raha ka, lekin bhaiya aise batia na he, एक आदमी जा है अफुबा का वेख पे और बोले अकेले जा बिना एक को प्रॉब्लम के, और जाए के मारी पाल में, पाल में मारी भैया तियो त मारक एक से उन बकेंड ओर साग द कंट्रोल ओवर द सूट ना गेलो भैया, नहीं तो इधर चियो ई बांची दो ओमस्ट्रिक 2.36 ईयर ते मतलब ओ रात के भैया, त रात के तू जरूर सु जइए, रात के 2 बजे 2:30 बजे रात के ओतो चलिए, त मस नहीं घनन ट्विन तक में जाए के, और ये काट दे से भैया, दिस कैन नॉट अंडरसे, दी मान साल जेकर इन स्लैब के वालन से।

1. ये बातचीत है भैया, एगो हिंदुस्तानी औरत है, दे नाम है और औरतिया का नाम बा जरबंधन, बड़ी स्कर्पा औरत है, फिर पेयर है भैया, दे ना लेते और जो जो फ्राक्स तेल करे भैया, न मुझे सो से हंद हार खान सहते कि का बतिया है अतुलन जाने हैं, एवो जो बड़ा जोड़ छटके और परमेश्वर भी बड़ा जोड़ छटके साथ ते साथ एगो सालार बाग से निकरमान है सब एनी पेयर्स के दे आना लीडर है, तो इस बड़ा जोर जोर चिल्ला है, तो एक बारे में पार्लियामेंटारियर ए बी जोंस जोन है, रबिन परमेश्वर है और फ्रक्सी खनोट असिस सलार बक्स है जो तेखन कस प्रोकन सलार बक्स टेल द एंकल वीकन खलीदेन कि बोले फ्रेश मा मटेरियल जो है ओएम के मतलब के ओबंबार वर्क के बोले उसे बस्तन है शांत वीक के ओपन प्रीफेट रेन वास खबर बोले जाए कि सब इनको प्रीफी ट्रेन पे खबर करे जो लांटी के चीजू तो सदा से हम जाने भैया, हम जो समय पे सूरीनाम देश में रही तो स्कोतू के ओतो में घास काट के ला दल रहा और जहलीवों से घास कटवाई के स्कोतू ने इंस्पेक्टर अपन गाय के खवावत रहा भाई, ये सब चीज सूरीनाम में होत रहा, कभी कभी देखे ईटा सुमंती ओतो के ओतो पे जा है और आदमी बोली हमें सिपाही के काम है, तो बोले मीनो अभी ओली बांती बोरो, तो एक बारे में सालार बक्स हेफ वीकन ऑथोरिटेटन गेन टूस्टेमे गेगेवन फॉर द गेब्रुक फॉन प्रिवे डोलेंडे, ओक स्टेलडे हेय द बर्मन फॉन पेटेनपोल्डर डोर देसेल्फडे स्वागर फॉन द डिस्ट्रिक्ट कमिसारिस सेन अफगेग्राफन एंड फर्नील, हियरडोर इज द वेग आन हेट अफकपलन अफकल्वन, सॉरी मेंसे हिया बतावे बिफे के जोंस ऑफ मेरक करी से हियर ओवर फन फे हपेर अमीरानी जरबंधन दैट इज गेल फॉर द बलासिंग बलाते नीर खबरेत मुत वर्डन ओम ओनगे uitspraak in de slansvormende vergaderzaal te doen. Gerbanden vroeg Jozef Parmesel als er wat heeft gelogen. Bolozeb, jude bolise dosto. To jayse jayse reete Gerbanden. Baya barak. Bara moeilijk moeilijk vraag perehe. Stel kerehe. Geleerde mevrouw. En dat vind ik zelf ook. Je moet dat soort dingen zeker doen. In een parlementaar. In de DNA bedoel ik. देखो भैया यहाँ बा एगो रेक्रियासी और थे सूरीनाम जेकर नाम बा बिगी कुरुतू, हाँ रेक्रियासी और बिगी कुरुतू, कभी एकर नाम हम ना सुन ली है कि छोटा कुरुतू बिगी कुरुतू, हाँ कुरुतू तो हम जाने ला सब कुरुतू करे घरवा में तो बड़े का कुरुतू करे तू मौसी मौसा से, हाँ बाकी यहाँ एगो रेक्रियासी और के नाम बा बिगी कुरुतू, ई है डिस्ट्रिक्ट पारा में भैया और हुआ का भले दगवल भइल है, तब बोलिए चोर दाग विषय ना भैया जोन बहेर दरवारा जेकर रहा जेकर रिक्रियासी ओल बीगी करू तू है 5 बजे संझा के एगो बेरखर के दागी से स्लाख्त ओफर लीप स्कोट वोंडिंग, तो आदमी गैला भैया बीगी करू तू वे और हुआ पे बहेर दरवे ओके दाग दे भैया मा पता ना है जिंदा है कि मर गए है, दोस्तों आप लोग को हम अपना समाचार सुनाते हैं। सूरीनाम देश में भैया सब को यो गोरे तेलवा कब निकली और यहाँ तेल आवे है भैया, का बोले है ईरान और ईरान और का बोले अमेरिका में दगाउल हुए लगल, फिर भैया ओली प्राइस चढ़ गए नई खन तक डॉलर भैया, ना न्यूवा अनफालन ना न्यूवा अनफालन, और ये सब बात है हमारी जनता। ये बात है हमारे जनता, नई खन तक अमेरिकन डॉलर हो गए हैं, स्ट्रांड फॉर हॉर्मुज क्रुशियल फॉर ओली मार्क, स्ट्रांड फॉर हॉर्मुज बहुत तो बलंगरेक से सी रूट फॉर ओली टेर वेरल ऑनगेवर एन फेव्ड फॉर द मुंडियल ओली हंडल पसेर दिसे ज्वाले ज्वाले दोरखंग। तो और बात हम बताते हैं भैया सूरीनाम के लेकर और आगे,
इंगी के और हम जाए भैया जेके सबन बहुत प्यार से बोले इंगी के एन हिंस दरो प्रोफदन और बोले श्री राम से फरीनखिंग द फरीनखिंग फन एन हिंस दरो प्रोफदन बोले है रखेरिंग से मांगी इसके 5 किलोमीटर सो गना 5 किलोमीटर वेट नीट आफ द कुंडगन बोले 5 km वेट नीट आफ द कुंडन द ऑर्गेनाइजेशन हि द बेसलिसिंगन besluiten aanbevelen van haar mini-conferentie vastgelegd in de resolutie die formeel aan de Kiruna lid een presidentiële werkgroep grondrechten dat toen jij een kind kebaren met ingelen behoud dinsdag hoge he bakke usap ke ketwaan na afronde kere he bhaiya ganga na afronde kere wingi kutte re ja he ab jab feest re bauta ke tab sab laike apan dhaman dhaman baja bajawe he तो ये बात है हमारे जनता हमारे दोस्तों एगो बेबी खबर भैले सरनाम तो बोली जोनी यहाँ पर बड़ा ढेर हो है लेकिन एगो एक्सक्लूसिव बेबी खबर भैले सरनाम में और तुल जाने हैं ये सब एक्सक्लूसिव चीज हरदम ना मिले सुने के देखिए जोनिक लगे सब सुने के पहियो भैया तो ई मिलल है बेबी खबर भैल है और भैले धीरन तैन पर हमारी बहु सौ में एगो जगवार के भैया मतलब भगवा के बच्चा भइल है आखोंदत एंडेशन खराम में ऑनफेर सो ख्रोत आलसन अर्जनास जितना बड़का एगो अनानास है उतना बड़का एगो बेबी खबोर भइल है द वेलप ही सख्त प्लेसक फख्त में डोंकर फ्लेकन दी कैनमेरिकन सो सेन फॉर जगवर्स और सुरिनाम में भैया हुआ हरना एगो रमन मार के खाली भाई हरना खाली बचाई करे ये बच्चों चोरी कर ले जाए भैया विश्वास ना है श्री नाम में कैमा भी संबंधी रंता इनके मार के खा ले रहा और जाए के मूड़ी जंगल में पिरल रहा तो ये जगवार भैया कुमोई से घर में बंद करके के पुसियो तो ये बात है हमारे जनता हमारे श्री नाम के जनता तो हम सोची ला कि तो लोग के और हम का सुनाई गीत तो हम में भरल है तो एक गीत के ओर हम बढ़ते हैं तो आपको हम सुना देते हैं हुस्न वाले और तेरा जवाब नहीं है एक हम जरूर सुनाएंगे कारण कि हुस्न वाले बहुत ज्यादा है लेकिन तारीफ करना भी बहुत बड़ी बात है तारीफ करने में चुकना नहीं आओ सुना जाए

और आ पूछने वालों तो तेरा जवाब नहीं है। तो अब दोस्तों एक दो समाचार और हम पढ़ेंगे तो हमारा समय आ गया है रोकने को, जाने को नहीं रोकने को। अब देखो भैया निकोलास मदुरा के ओर हम चलते हैं, जोन फीनी स्वेला के फोरमालक भैया हुआ के राजा रहा, हाँ प्रेसिडेंट रहा और अमेरिका के खूब गरियावत रहा भैया। अमेरिका के बस एक रोज का भैल है जाई के ट्रंप ओके घर हुए मसे उठा लाए भैया मुर्गी ना सूं पाए से बोलिए जॉनी मुर्गी ना सूंगे अच्छा बोल दे कुत्ता ना सूंग पाई कैसे होके लेके चल गए और ले जाए के मदुरा के जहल में बंद कर दे इसे। अब मदुरा अपन जाने के अब लड़े है कि कैसे निकली तो लोग जाने भैया कभी कभी ऐसा गढ़ाम आदमी गिर जा है क्योंकि निकले बड़ा मुश्किल है। तो मदुरा की ही बात है तो नवा फोटो ही अब आए तोरन मदुरा फॉर एयर सिर से खफांग नीमन इन फेयर मदुरा दुबराई के भैया अरे जहल में कैसे मोटियो भाई। और बोले अमेरिका के फोरमाल प्रेसिडेंट निकोलास मदुरा बोले हैगा अब जाए के कर फोटो आइल खफांगन नहीं मंद और अमेरिकन से त्रुपन फोटो फनाई द डिटेंशन लात पब्लिशेरन ऑफ द बिल फर्स्ट मदुरा खलिम लाखन इन अ ग्रेस ट्रेनिंग स्पार्क इन अ बोस काम आन से फैमिली आनहांगर सेगत हे सामे मेट से फ्रो सिसिलिया स्टंट टू होल्डन द फोटो फर्स्कीनन संडग ऑफ सोशल मीडिया कनालन फन मदुरा हेज दार ऑफ सिखबार टेकन इन फॉर द मुर गक्लेड इन अ ग्रेस ट्रेनिंग स्पार्क द मदुरा मंग यू देख भैया ने देख पियो अन ट्रेनिंग स्पार्क पे और बताए गए कैमरा गेगिवन बाय द बिल्डन वेसन एरोप दैट फोटो 25 जून से gemaakt और बताए मदुरा लिट ऑफ द फोटोस वेदन दैट हे ze beschouwt als een klein gebaar voor zijn kleinkinderen en anderen die hem en zijn vrouw steunen. Want oude Tio Bane Bahia Donu Parani Ban Hele Jaike, oude Trump Ban Kardese, Madura is Venezuela werd even weggevoerd, staat Rodriguez aan het hoofd van het land. Haar regering heeft de betrekkingen met Washington verder aangehaald en kiest nadrukkelijk voor diplomatieke economische samenwerking met de regering van president Donald Trump. Waarom? और अगर जो वेनेजुएला अमेरिका से जब बढ़ रहे मान लिया ये कोई डोनाल्ड ट्रंप के ले जात तब तो आग लग जात दुनिया में भैया ऐसे बतिया है। लेकिन अमेरिका से के जाई लड़े भैया लेकिन ईरान आज लड़े है। अब देखो भैया स्वीडन टेकन करी से मिलियार्डन कॉन्ट्रैक्ट फॉर आन को फंड फ्रांस फ्री खातन यहां बताए गए हैगा 4.3 मिलियार्ड के कॉन्ट्रैक्ट टेकन कर इसेगा स्वीडन को फिर फ्री खतन फन फ्रांस नेपाल ग्रुप और बताल सेरेमोनी फन हेड कोप कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन भाई लेगा फ्रांक स्वीडन से बीच हुन बंधन ऑफ इट खबीर फन डिफेंसी फन द हालन द ट्वी लैंड ड्रिंगन ऑन द ग्रोटे यूरोपीसे मिलिटेयर सेल्टरेट साम हिडन आंगया फॉर द रशियन ड्रेकिंग फन ट्वी फन द अमेरिकनस वेलिगेट गारंटी फन यूरोपा। तो ये बात है नीदरलैंड में बोले घर बने भैया तुलन जानो ऑलटाइम वोडिंग कोर कैबिनेट हेल्प वोडिंग बो ऑफ फाइव प्लेकन गेन गेल्ड एक्स्ट्रा गेल्ड फॉर वीकन तो बताए गए हैगा डिफेंटर हार्लेम लेवार द मास्ट्रिक एंड वीर्थ में सब बनावे हैं बाजार करे 2035 में सब रन कर दे 30,000 वोडिंगन दारदोर स्नेलर ऑफ सेन द वोडिंग मिनिस्टर जोनबा और वो बतावे हैगा ट्वेड कामर में कि extra geld om de woning bereikbaar te maken komt niet. De vijf gebieden komen bij de 21ste andere grootschalige woningbouwlocaties die eerder kabinetten al aanwijzigen. To je baat hebben ja op te doen aan in Suriname dus mee. जय भैया मट्टी जो है लेक से लेक वाहन चलावे डाम पे तो यहाँ पर सुरीनाम बैग से ओवर रीगल रोन फरफूर फन ओवर लीडन ओवर ओपनबार वेख तो यहाँ बताए गए हैगा अंडरवेरप है सेंट्रल एंड प्रेजेंटेशन के बारे में लेक फरफूर के बारे में जो ओपनबार वेरिक पे समन चलावे है एकर बारे में बता रेक्स कादर और बोले हैगा मिस्टर दनियाला खीफ अक्रमत आली प्रेजेंटेशन वर्ड मांडक इन 31 अगस्त को होते नेशनल आर्काइव इन परमारिबो और बोले द क्वेश्चन इज दैट में ब्रीडर दन अलीन द प्रैक्टिस फ्रा हु अ लेखाम फन इन ना द अंडर लोकेशन वर्ड फॉर फूड ओकर बारे में Riegels money ook moet duidelijk zijn welke instantie op welke moment de verantwoordelijkheid draagt en welke wettelijke en operationele regels tijdens het transport in een acht
moeten worden genomen in de presentatie en moet meer gezicht geven in de verschillende aspecten. Toen we lijken, we hebben regels benieuwd, welke aspect kan je hebben. Gaya din bole, bhaiya, gaya din bole, bole, regering heeft zijn kluts kwijt, bhaiya, patana kapu kluts ooker, laatst bole, patana ko richting, hamloke regering, ja he, bole, het lijkt alsof de regering kluts kwijt is, Ivan bole, Asis Kumar gaya din bole, hega, aur DNA me, ob regering se poochhe he, parasastale bestrijven, hun planning verbeteren, nu hebben we het voor EBS en laat hegging daarover willen we zeker meer duidelijkheid, maar het gaat over de prestale bedrijven ke bare mein hamare janta to ye tha hamara desh aur videsh ke samachar ek aadmi bhaiya chhuri bhuk ke hame bata rahe mongo mein mar gaye hai to yahan tak tha hamara aaj ka samachar jo aap loon suna hai सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज के प्रोग्राम आप लोग को एक घंटा हमने सुनाए हैं और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया शाम को 6 बजे इस प्रोग्राम को हम हर हाल करेंगे दोस्तों मत भूल जाना और आज बीबी साहिबा रहीम बख्श नहीं रहेगा फकांसी से आने वाला हफ्ता में वो फुई से अपना प्रोग्राम को शुरुआत करेगा हमारे दोस्तों

रोशन के साथ पर रवि साहब और लता जी मिल के आपको ये गीत सुनाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। तो अगर जो आपका हृदय से स्वागत है तो लीजिए आपको ये गीत से हम आप स्वागत करते हैं इस तरह से लता जी।

पिया बोले होले होले। आपने तीन आवाज़ सुने, सैफ अली खान की, सोनू निगम और लता जी की। ये तीनों मिलके आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए। ओपिन नैयर के साथ पर कश्मीर की कली रफी साहब।

किसी न किसी से कहीं ना कहीं कभी न कभी ओपन एयर के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

0: महेंद्र कपूर जी,
1: ये शानदार दिवस में आपको सुनाए लता जी के साथ लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। आकाश पे दो तारे सदियों से चमकते हैं। चलिए, ये गीत के बाद हम आपको सुना रहे हैं, ये गीत इस तरह से आ रहा है।

ये दिल है मोहब्बत का प्यासा, मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत फिल्म दिल ने फिर याद किया 1900 देखूँ तो नहीं 1966 का ये गीत, और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

0: Thank you, brother. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज वो नहीं लेना है।
0: अरे
2: क्यों? तुझसे नाराज जिंदगी अनूप खुशहाल आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

अगर दिल किसी से लगाया ना होता, रवि साहब की आवाज में हम आपको सुनाए चित्रगुप्त के साज पर नेकंतीन एन शस्त्र का ये फिल्म है। और हमने पेश की फिल्म बड़ा आदमी से निकाल कर। चलो देखते हैं अगला गीत क्या ख्याल है, अगर जो मैं आपको सुनाऊं, सोनू निगम, साजिद और सुनिधि चौहान, ये तीनों मिलकर क्या कमाल करते हैं।

मारिया मारिया साजिद सोनू निगम और सुनिधि चौहान मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत इस तरह से हमने पेश की।

0: फिल्म लव स्टोरी में से निकाले, हमने ये गीत और पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आपको एक शुभ, सभी शुभ हम पेश किया जा रहा है। चलो हमको सुनाते हैं ये गीत इस तरह से।
1: एक

न झटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएगी। ये शानदार गीत चला हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। इस गीत के पीछे एक राज है, एक कहानी है, लेकिन कभी फिर बता देंगे, इसे हम याद रखेंगे, शायद आप भूल जाएं, लेकिन कभी भी अगर ये गीत मैं चलाऊंगा तो इसकी कहानी आपको अवश्य बता दूंगा। चलिए अगला गीत, क्या ख्याल है हम आपको ये गीत सुनाते हैं।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम।
1: ये वाकई आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने, जी हाँ ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं, इस तरह से देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

खान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो ये है

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है। तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है, याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश कर रहे हैं इस तरह से रफी साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और माई तू मुकेश द हाथ रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, नेखन तीन सस्तक 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। किशोर कुमार

0: एवरग्रीन किशोर कुमार जी, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।
1: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Fahon Hindustani Radio.

सुरेश वाधिकर जी और लता जी ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं, जबकि आप सुन रहे हैं आओ मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहा शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से

अरे दुनिया के वीरां पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है, ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम में रोना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रोना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है, फिल्म फिल्म फिल्म निका में से निकाले हैं।

वाह क्या बात है, फंसा भी है जमा जमा। सलमा आगा की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

डाकू पे डका डाले तो बड़ा मजा हो, इस शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफी साहब की आवाज।

गले।

0: तो हम भी करते हैं प्यार समझने आया।
1: फिल्म कॉलेज गर्ल निगेती 51 रफी साहब की आवाज में आपको सुनाएगा यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं। हाँ, निगेती द्रीन तख्त 51 से सीधे चलते हैं द्रीन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी निगत इंद्रियन तख्त का ये फिल्म है, हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म तो टाइटल सॉन्ग है ये है अगर तुम ना होते निगत इंद्रियन तख्त का। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर था, और आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर हम आपको ये सुनाते हैं। जी हाँ सुनिए, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन फिर भी है।

क्या बात है, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी भी नहीं है। आपको सुनाया गया फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की ये शानदार गीत। चलो यहाँ से हम पेश करते हैं, जी हाँ, चलिए आपका स्वागत करते हुए फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, कहाँ गया मेरा गीत, और वो ये है इस तरह से।

0: तौबा।
1: हाँ वाह क्या बात है, आपने शायद शब्द सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर ये शब्द आप नहीं सुने होंगे तो। मुकेश जी जो है वो प्यार करता है, लेकिन रफ़ी साहब प्यार के ख़िलाफ़ है, बस यही सवाल और जवाब इन लोगों में था। मुकेश जी प्यार कर रहा था और रफ़ी साहब उसका ख़िलाफ़ था। ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, ये जी हाँ ये भी एक जानी पहचानी गीत, लंबा चौड़ा गीत है, 6.5 मिनट का, तो सुनिए ये गीत कैसा है।

तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आया है, आप तो ऐसे ना थे, फिल्म का नाम है और हमने पेश की ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत है मैती मुकेश, मैती मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।

यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए, हम यार है तुम्हारा की यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं यकीन के साथ दोस्तों, हम यार है तुम्हारे।

यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे। याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों, उन दिनों के बाद है जब बप्पी लहड़ी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में, तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था, लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों का बीबी जो गीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलेला जहाँ देखिए उसे फंसे है ओके मिथुन भगा ले गए रहा। तो इसी कारण ना मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

आ रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। पप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था फिल्म हिम्मत वाला, हम सब मिलकर सुनेंगे। नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी सभी के आवाज में आप सॉन्ग सुनेंगे।

संजना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं 1987 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने तक तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना एक पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज़ में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

मेरे नसीब में कोई नहीं। ये गीत दोस्तों जो मैं पेश करता हूँ, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फा हॉन हिंदुस्तानी रेडियो, आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, मैं सोचता हूँ दुनिया में हर एक इंसान को धोखा जो एक बार होगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंसान धोखा दुनिया में जरूर एक बार खाया होगा। तो अर्जी बर्मन का सॉन्ग है, रजेश खन्ना मुमताज फिल्म में काम किया और आप जानते हैं सुपरस्टार रजेश खन्ना, उन दोनों में एक रजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़क्का से अपन फिल्म पेश करते थे। अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में, तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था, सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं एक दूसरे अलहदा तरह के फिल्म है। फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज

दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायकी है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाज़ों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, यह पागल रखा, पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया, लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है। फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर के आवाज़ में ये सॉन्ग।

लग जा गले के बाद दोस्तों फिल्म दीदारी यार, फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया और ऋषि कपूर किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया, फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो 4000 फिर दर्शन के बातचीत था एक इस फिल्म में गीत गाना गाने के या गाना पेश करने को। तो राफी साहब को 4000 मिलता, किशोरदा को भी 4000। फिर भी ये गीत ये फिल्म बनते बनते कई साल बीत गया। जब फिल्म तैयार हो गया तो जितेंद्रा ने अपन मैनेजर से कहा जाओ किशोरदा से बातचीत करो कितना पैसा चाहिए उन्हें देने के। तो किशोर कुमार ने कहा मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो जाकर जितेंद्रा से कहा, जितेंद्रा 20,000 रुपये दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया और फिर 20,000 दिया जाओ इन्हें राफी साहब के दो दे। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्रा और राफी दोनों दोस्त थे और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब जीवित था तब तलुक जितेंद्रा और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ दो बार हुआ, लेकिन किशोर तुई माल तो चाहता है एंगल तुई माल फिर दर्शन आँख दर्शन ले के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है किशोर कुमार एंड लता, दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे।

का हैप्पी स्टेशन फॉर हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होठों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होठ है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होठ तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर। कोई बात नहीं, होठ तो होठ होते हैं, तेरे होठों के फूल जो है प्यारे प्यारे।

तेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे जोन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

हो तुम्हें ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठों के फूल आप सुने हैं, आप ही का हैप्पी सीजन फा होने निस्ताई दे दियो राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्प का क्नोप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

प्यार में तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले, एक गीत सुना। तेरे होठों के फूल

तेरे होठों के फूल आप सुन रहे हैं। अगर आप, अगर आपका ख्वाहिश है, अगर आपका ख्वाहिश है हो चुमने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

क्या ख्वाहिश है हर पल मेरे होठों पर, हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

ये होठों को तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

प्रश्न करो तो आईना कहीं खुद का नजर न लग जाए, वो भी हो सकता है। सरा संभाल के ये प्यार मोहब्बत की कहानी आप अभी सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भी अदाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे

और इसी ट्यून से आपको तो पता चल चुका होगा कि प्रोग्राम को हम चलाते हैं यहां से। तो हम तुरंत चलते हैं हमारे दोस्तों सुरीनाम में। भैया एक जबरदस्त फराख वाहन में आग लग गया है और सब जर के भस्म हो गया है। तो सब जर के भस्म हो गया है, ये बातचीत हो रहा है एक रास्ता के नाम है अफुबाकवेख में। हाँ, तो ब्रांतवीर जबरदस्त वहां पर जाकर पहुंच गया भैया और बोले है आग लगल रहा तुरक फ्राक वाहन में और बोले है दी को नीट मेर वार्डन खरद मन से और जर के भस्म हो गया फ्राक वाहन। अबे पता ना है कि कैसे तुरक वहां में फ्राक वाहन में आगी लगल है। दोस्तों आजकल आगी बहुत जबर हो। देखो एगो भैया खास फॉर नाइस के मानचित है, एक मिला चढ़ाए रहा खास फॉर नाइस पे भैया भात बनावत रहा, खाई बनावत रहा पोत राइस ऑफ खास फॉर नाइस और भुलाई गए रहा मोर्निंग इन बस्टेल वाहन फॉर लीडर एट ख ब्राउन और घर के साथ साथ हुआ पे को बस्टेल फिज भी रहा, सब जर के भस्म हो गया। बीते हुए हफ्ता में एक मेरा भी भैया हड़िया में कि करहिया में तेल लाड़ के भुला एक सूत गए रहा भाई और आग लग गए घर भर जर गए रहा और यहाँ फिर बातचीत हो रहा है स्टेनस्लाख वेख के सोमवार के एनन डर तक अगस्तस के पूरा घर जर के भस्म हुआ और वहाँ कराचे में एक विषय भी रहा एगो बस्तल वाहन भी रहा वो भी जर के भस्म हो गया और यानी कि परनाम की सिपाही जाकर वहां पर पहुंचा और एक बजे दिन को आगी लगा है। बोलेगा फॉर ट्रोकन इन द रिक्टिंग फन सन रई एड फॉर क्रीकन इंफॉर्मेशन ब्लैक दैट द हाउस बोनस ऑमस्ट्रिक इन यूना सन रई इज फॉर ट्रोकन द 20 jarige एमपी हर फॉर द से फॉर ट्रोकन पोट रेस मेट ऑफ ए हार फॉरनेस गजेट टेजस हर अनवेजिकेट वेयर से डोर अ ब्यूरोफ्रॉक बेल मेन मीडिया डीलिंग दैट द रोग एट हर वोनिंग क्वम और ये मी खाई भात चढ़ाई के चल गया रिक्टिंग सन रई बिरमान के बेल करित बोले तो घर में से धुआं निकले है और बोले अब व्यक्त रखना है रियलाइजेट द फ्रॉ कि ओ कि घर में वो भात चढ़ाए रहा। बोले है ब्रांड द क्रास फॉर नाइस हाथ लातन स्टान तू से ही बाय द वोनिंग आन कॉम स्टोन थे पंत अल्फा लीडर इन ब्रांड भैया आग लग गया है और बताए गए है का ब्रांड तुर आन से रेक्टर आन एंड तू है प्रोबेर होंत आई द क्रास इन वेलिगेट टू ब्रिंगन फॉल्स ईदर फॉरकिंग लीव द पार्टनर van de vrouw brandwonding jergeraad je op een kutakraadje met zijn ikarad raam bolle hoe geil hij academische kan huis mee aangesloten op het elektriciteitsnet brandskade verzekerd en niet tegen brandskade verzekerd ghar brand verzekerd naar het bari dukke baant hè hamare janta dekho kya hua hai oude feite tieners eindig in dood 16-jarige mungo mee purana jagdala bhaiya 30 अगस्तस के और छोड़ी भगवान भैले मुंगो में एगो 15 बरिस के फरदख्त एरदेई के समन पकड़ी से बताए गए हैगा जबर कॉन्फ्लिक्ट रहा दोनों के द पुलिस हाद द स्टेज बमिरल एंड बेड परते नार एनस्ट खवास गिविंग नार हाइस कस्टूड बताए गए है टू यंगस दुई लंदन अतवार के यूलियाना फेल पे अब न्यू टेकन क्वामी से फिन भेड़ भइल है तो एगो एक्वा के बॉस कास में छोड़ी भोग दे भैया गले एरखीबी पॉली क्लिनिक में और बोले फरतोंद में आनकम्स हिंती कन फॉर लीफन और लंडवा मर गए भैया। तो ये पुराना झगड़ा में अब देख एक मिला के जान चल गए है बड़ी बड़ी दुख के बांध थे। हम चलते हैं भैया गया दिन के ओर। ये कौन गया दिन है देना देना फ्रक्सी पे यहाँ पे आशीष कुमार गया दिन के बोले हैगा सूरीनाम में बोले जो अल्खमीन वेट फन ब्लास्टिंग हैगा बोले हैगा नेशनल असेंबली बर बला ड्रग करी से किस तरह ब्लास्टिंग चीज नो साकलिक इज मार दैट दार बाय द ook duidelijk grenzen en voldoende rechtbescherming moeten worden garandeerd.
बोले चाहे स्ट्रंगर ब्लास्टिंग है बोले बाकी भी चाहे खरेंस रहे के कि कैसे हम ब्लास्टिंग का बोले इन कर बे गया दिन बोली से फिस्काल आर्किटेक्चर बोले है का ऑन द स्केट मार्केटेशन हैफिंग और बताए गए है दोस्तों रेक बस्कैरमिंग भी चाहे रहे कि जनता का रेक भी चाहे को बस्कैरम करे के और मो बोले ब्लास्टिंग फ्लिक तक भी चाहे रहे के है नूम द ऑनदर मेयर हेड मोमेंट वार ऑफ इंफॉर्मेशन वर्क फ्रा अन बुकन ऑन द सुक प्लाट्स फिन तो ये बात है स्टर्क ब्लास्टिंग दीज गया दिन बना देखते दैट है फोर स्टैंडर्ड इज फ्रॉम स्टर्क ब्लास्टिंग दीज है फिन ईर्दर echter dat duidelijk moet zijn wat onder een sterke dienst wordt verstaan. तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता हम जाए तरी मथुरा भैया बोले लोन्स फॉर हुकिंग 15% अमतनार हुआ पाई से ओमदास यानी कि सब मांग की से बोन मांग करी से कि हम लोग के फॉर हुकिंग 15% चाहे लेकिन लांटी उस के 15% दी से तो एमा कृष्णा पथुरा कृष्णा मथुरा पार्लियामेंटेरियंस रखेरिंग से पूछी से कि लोन्स फॉर हुकिंग जो 15% आमतनार के देले है बोले ये पैसवा तो लोग कहां चलाई के भरिए बोले द फॉर हुकिंग मुत एन सितंबर 2026 इनगांग बोले सितंबर में चाहे भराई लगे कि मां बोले पैसवा तो लोग कहां पइए तक राय के तैर बोली सेगा कि जो आदमी पेंशन पावे आओ फी पावे है बोले उस सब के खरख तक दन बोले die niet rechtstreeks onder loonverhoging valt, willen ook erbaren mee kijzen, die een pensioen vallen hebben. Wat doet de regering? Die een koopkracht heeft van mensen die een pensioneerd bij AOV vallen, ontvangen te versterken. Ook kijzen versterken je. Mathura willen hebben. Parlementariër wil daarnaast een overzicht van financiële gevolgen van verhoging per maand en per jaar hebben. Willen Mathura wil vooral duidelijkheid over financiering. Zij vraagt en wel welke concrete begrotingspost de loonverhoging wordt betaald. कहां से भराएगा बोले सेंट्रल बैंक पार्लियामेंटेरियन स्टेल दरान फ्रागन के सेंट्रल बैंक जो सुरिनाम के है से विल ऑपहेल्डरिंग ओवर द ब्रिक्टिंग दैट मोमेंटल ट्वी रादन फ्रॉम कमिसारन फंक्शनेरन एंड दैरफॉर वर्डन बताल मथुरा फ्राग द रेगिंग बफेस्टिंग ऑफ दैट इन द लास्ट केफाल इज वेल हुफील एंड इनमिडल्स आर रादन इज आउट बताल तो ये बात है मथुरा पूछे है कि 15% तुम बोले दिए मैं पैसा कहां से दिए और हमारा बुढ़िया पुरानियन है बोले ओके कहां से तो भरी है जो पेंशनियर थे तो जो दोस्तों पार्लियामेंटेरियन विल इन वेतन हो रखे ने लोड फॉर हुकिंग अंतरान खाद फिनाशेरन ते एकर बारे में असेंबली एकर बारे में पूछी से और ना खाली मथुरा पूछी से बोले द फक बॉन्डेड 25% बोले एकर बारे में मांगे हैं हमारे यारो हमारे प्यारे प्यारे जनता सुरिनाम के और हॉलैंड के हमारे दोस्तों है हमारे जनता है तो हम और आगे को चलते हैं देखो दौदन ताल भैया हम जाएगा नेपाल में 1000 आदमी से ज्यादा मर गए नेपाल एंड तिब्बत में बहुफन दैसन मैन जिनजैन दौद मैन से इन दुर्दर ओवरस्ट्रोमिंग इन नेपाल afgelopen tot boven de 1000 hoe je Nepal met je rampen dien ze mengerwaan ke betawe 987 raam maar op 1000 hoe je he en ka bole he China bole he eerder werk bekend aan Chinese kant van de grens in Tibet me zeker 16 mensen om het leven waren gekomen uit Chinoa ke gedeelte me baan

दुख है हम सब तुम्हारे दुख में साथ है, नेपाल की जितनी नमस्तांद है। अब रेको भैया तीन काल सलाख तो फर्स्ट भैले रेस्टोरेंट जबर अनफाल करी से उक्रेन में जहां दसन आदमी मर गए हैं। ये बात हो रहा है उक्रेन से दो अनफाल ड्रोन से रकेट करी से इन उक्रेन से और बोले हैगा दसन आदमी कीव में मर गए हैं ओमलिखंद रेखियों में। Het is de zesde dag op rij waarop Rusland aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad uitvoert. Ik er waren met Zelensky bole he, totaal 12 admi vielen, onder wie iemand uit India kevimerge bij een aanval op het spoorwegdepot is Kiev vielen. 7 doden, tientallen mensen raakten gewoon. Ook elders in het land viel Rusland aan. Erioke Udesame kwamen duizenden huishoudens zonder stroom te zitten. De Dekobaya is op Jan Moeske admi mare he, en onder de overstroming is Suriyaniki. नेपाल में भैल उतो है ये सातेसान भैया टैंकर तीन दाई सब द्री माल खराग बे स्ट्राड हॉर्मुज में तू जाने जोन बन करे से अमेरिका से ईरान से भिन्न युद्ध हो गए भैया फिर शुरू हो गए है। एगो टैंकर के संबंध आगे से गा जो ब्रिटिश के फास मोनिटर कहा उमेल ने करी से कि प्रोजेक्टिल तेजस अल्फा फॉर द स्ट्राड फॉर हॉर्मुज अ बलंगरेक दोरखांग है जो ट्रांसपोर्ट करे खास तेल और मैस के बारे में 30 kilometer ten oosten van de Oemanstaat, Kassab me, bolleke, er zijn slachtoffers toen afheil, maar boord meteen go geil he, lagal he, ik erbaar me Amerika en Iran bolle he, voor het eerst sinds juli me, over en weer aanvallen uit de regio me, bijle Amerikaanse leger, bolle Iranse revolutionaire garde ke, aanval karise, opgemaakt om zeemijnen te leggen in de straat van Hormuz. Vervolgens vuurde Iran raketten op de Amerikaanse basis door Jordanië. Iran belemmer kreeg al maanden met een scheepvaart verkeerd door de straat van Hormuz met dreigementen en aanvallen op schepen. Tegelijkertijd handhaafde de Amerikaanse marine aan actieve zeeblokken van de ईरानी हाफंस के बारे में हमारी जनता और हम जाई है और आगे को सूरीनाम में भैया जो हम लोग के एसेट एडवोकेट है ही को एसेट जो रहेगा जो दिसंबर मोर्द के बारे में लड़त रहा अब यहाँ पे वर्ष क्यू करे कोवालिची के फॉर ग्रुइन फर्सेट देखन इन पैर का फंदा रख लकमाख बोले हैगा वर्ष क्यू करे हैगा ग्रुइन द फर्सेट जो उसे फर्सेट करे है रख लकमाख हम लोग के रेक्टर्स लोग के बारे में तो एक बारे में ही को एसेट बोले हैगा बोले मस्कापलक फर्सेट देखन मात्रीगल दी फॉलोस हिम onafhankelijkheid van de rechterlijke macht kunnen aantasten. Dat zei Asset in het programma van Wel Ingelichte Kringen mee. Die hemelijke regering die uitvoerende macht heeft. Hemelijke rechterlijke macht die moet beperken. Die ze onafhankelijk een goede tijdje nakkerpouwen hebben. Ik erbaar mee moet coalitie ervan verzekerd zijn. Dat de maatschappelijke middenveld de democratische rechtsstaat zal blijven verdedigen. Hij zegt dat de verschillende ontwikkeling wij op toenemende zorgen over de positieve onafhankelijke van de een rechtelijke macht.

और आगे को अपना समाचार को लेकर हम चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे जनता, एक भैया पातनर अपन आदमी से झगड़ा करी से, और अकर आदमी रहा सिपाही भैया पातनर फन पुलिसमैन, और वो का करी से आदमिया से झगड़ा भइले, बस ओकर पिस्तौल लेके पेल भागल भैया, मोर द विस्लिंग भइले सिपाही से और औरत से देर तक ओकिस्टस के, और ले के पेल भागल है, और खले तो न आनहोनिक फन 35 यार के एनहा द vrouw zou tijdens de ruzie vernieling in de woning hebben aangereikt met een scherp voorwerp in de richting van haar partner hebben gezwaaid. Op een Adamiake, kuchuri uri leke zwaaikar is ook een politie ke jo sipahi ke ook een admira ook een pistool leke bhagge he, en sipahi jai ke ook een pakhdi se, en bole ghar verniel kar is auratia, het zou zijn enige moment van een scherp voorwerp hebben gepakt. तो ये बात है हमारी जनता की, औरत लोन देखो का करे भैया, बोले द पुलिसी मान वेंद से खीर ना तो बीरो मिंदर एंड दी आंखिफ्त अपन ऊपर अपन औरत के ऊपर द फरदाख्त वेर फॉर फॉल्गेंस ओवर खबरा ना द पुलिसी बीरो के अपन आदमी के तू चोरी कर ले है पिस्तौल के बारे में। हमारे प्यारे प्यारे जनता, आप लोगों ने जानो है एक रोदनी लाइसनर देसुआ में लाश हुई है सूरीनाम में भैया, फिल्म के आदमी रहा ऊपर से डायरेक्टर में काम करता डायरेक्सी में रिशिदा में, और ये लाश हुई है 15 तारीख अगस्त में रोदनी लाइसनर 25 यार के, एक बारे में कितना आदमी पकड़ान है, एक सिपाही पकड़े रहा उके छोड़ दे रहा हुआ तक ना मिलल है भैया, पता ना है मैं पैसा की चुकू रोल खेली से। अब नीदरलैंड से एगो स्पेशलाइजेड नीदरलैंड से सुख टीम गए कुत्ता उत्ता लेके, और संदरई पे उतर के भैया जाए के स्पोर खोजे के कि नीदरलैंडर जोन बा ई कहाँ बा, और ये काम करता सूरीनाम में भैया फर्मिस्ट ओनर नेमर एंड फिल्म प्रोड्यूसर के गए ले ई सब खोजे, ओ तो मिलल ना भैया सनमाका कहाँ जंगल कनाल में सब आगे आगे लगल न है। टीम इस ऑफ कोर्स फॉर स्टेकिंग रेडर्स होंडन uit Nederland, volgens eerder bevestigde informatie bestaat de groep uit 8 honden begeleiders, 8 speurhonden en 7 ondersteunende specialisten. Op het aanwege sub kuttan jon hega sub getraind hega opspoor kare ke bare mein rond water en tussen puin en kunnen worden ingezet voor het zoeken naar zoveel levende mensen of overledene mensen. Ke kutta speciaal geil hai leke khoje ikar bare mein Suriname ko OM jon hega heeft inmiddels toestemming deisega ki Nederlandse ke team ke kitulon jai ke khod sake hai, और बोले है strafrechtelijk onderzoek blijft onder leiding van supervisie van het korps politie Suriname. और एक बारे में भैया बताए गए buitenlandse zoekactie wordt gefinancierd door Rudisa Internationale NV, het bedrijf waarvoor Leisner werkzaam is. De kosten zijn begroot ongeveer 50.000 euro. Willen daaronder vallen onder meer het vliegvervoer van de mensen en honden, verblijf lokaal vervoer, materiaal en verzekering. De financiering kwam volgens Rudisa in overleg met de familie van Leisner tot stand. तो आप एक बारे में बतावे गए हैं कि एक स्वामपू है जिससे अक्सर मक्का में टेक्निक ऑन द सुकर बतावे कि ओकर ओ तो एक वित्त क्या सुरिंतो वहां पे मिलल है भैया जो जर के रहा 15 तारीख अगस्त अगस्त से इलाज भइल है। फॉल्स एक्चुअल बरेख के इवेंट सिट इन द सा 3 verdachten फांस एंड इज 4 verdachten नो फॉर फ्लुक्ट। तो अब सिपाही लोन पकड़ी से दख्त के और छोड़ दे इसे अब फिर से गैल खोजे तो ऊपर फ्लिक्त कोई के भैया उपेल भांगल है। एक आदमी भैया काम करता रहा खराब मशीन जले पोकलाइन ओकलाइन से नाम में बोले है, और पोकलाइन चलाते में इन्हें देर तक ऑफिस के वांछित है इरीन फलन में, और भैया एगो पेड़ गिरल है तरेक्ट वारे ने अब मोमेंट आने वेरक वाज एरस्टिक आरबेस ऑन भइल है। सवेरे 9:30 आई ऑपरेटर जो रहा मैं दखराफ मची तुन ओप बपाल मोमेंट एगो पेड़ एकर मशीनिये पे गिरल है, और बताई गई है
और न बताई से दिन स्टेज लिफ्ट के बारे में ये रमिया के मपोलिसी ब्यूरो ब्रॉन्स व्यक्त के गई है इरेन फालन में और वहाँ पे पता मिलल है कि पेड़ गिरल है मशीन के ऊपर और यहाँ पे बताए ईस्ट पुलिस और क्वाम नार फोरन कि स्लाखतोफर से है ongeval in de graafmachine bevond en daarmee werkzaamheden uitvoerden waarom de boom precies opviel op de machine mensen maandagmiddag dat de operator bij de incident dodelijk werd getroffen de doekje baat hij kan kerten mijn bichara marge bhaiya bahut bahut bahut bahut afsoos ke baat hai हमारे जनता अब देखा जाए भैया ऑटोमोबिलेस राइडिंग करी से मेर ब्रोफिस और मार के भाग्य भैया ब्रह्मुआ के मार के भाग्य भैया शनिचर के रात के बात है रिंग वेख के बातचीत है और बताए गए दखवंद ब्रोफिसर वेर ना है ऑन खफेल एम्बुलेंस ओके ली गए है निहंतन यार के गलौंडा के और बताए गए फरवाख्तिंग फरसीकरिंग साल वार्डन खस्तेल het gaat om een 19-jarige AC die volgens de verkregen informatie naar verwachting in verzekering zal worden gesteld. Oh, de pakkelisjongen is Bariskelundake. En vooralsnog niet bekend over geldige rijbeurs ook in de Hakina. Oh, ik heb pakkelisje van ja. Toen kon ik een malle, een marke voor een fietser, een chorde letter, doe dubbel feit kalibai. Want op de oké, maar jij, tap to kaker yo. Want अब भी तू वहाँ पर रहते तो शायद एक तू बचा ही सकते अब देखो भैया लेगुआना सूरीनाम में बंद हो गए हैं 8 सितंबर से लेगवाना अब बंद हो गए है सूरीनाम देश में लेगवाना नमक के पकड़े के तो तेत में 31 दिसंबर Het jagen, verhandelen, hebben, houden, kopen en verkopen van boomkip is verboden. Ze hebben leguana ke bole peerwala murgi. Ta ab bhaiya je to ke pakadi sipahi te barakas ke pakad ke ban kariga. Karen ki leguana ban hui ge hai Surinam mein jaise kukuhi ban hui ja hai. Harna ban hui ja hai. Aise leguana namake pakad ke Surinam. नाम देश में और लेगवाना ये पकड़ ले ले तो के लेगवाना ने सिपाही पकड़ के बंद कर दे भैया ये बात चीत हो रहा है हमारा सूरीनाम के लेगु महाराज के जेके सब बोले है पेड़ के मुर्

मेरा तन डोले और मेरा मन भी डोले, और कैसे डोले, कहाँ डोले, कहाँ डोले, कैसे डोले, ये आपको फाहुन में तार करके बताना पड़ेगा कि दुपट्टा कैसे डोलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे जनता। तो हम और आगे को चलते हैं अपना न्यूज प्रोग्राम को लेकर। अब देखो भैया, दरवाजर जितना बा ना डरियो, दरवाजर के नाम सुन ले आदमी तक कितना डराइया है। हाँ तो कितना डराइया है दरवाजर के नाम सुने फरीने किंग फॉर दरवाजर इन सुरीनाम मार्कन ज्वार वीगन बसवार तीगन अंडर डीलन फन एन ऑनट्वेरस वेट तोट वेजिंग फॉर द वेटकीपिंग Weging van de burgerlijke. Volgens de vereniging bestaat het risico dat burgers en onderneming die na een rechtszaak gelijk hebben gekregen, hun toegewezen geld moeilijk of zelf niet meer kunnen innen. Maar ja, wohoo baantje, het hoor aan Suriname, ke hamare janta, dekho kya hua hai. Bole de zorgende richting, zeg maar de naam wil voorstellen, waarbij de bestanden beslagen om de staatsmiddelen collectief kunnen worden opgeheven. Te doorwaarder ke naam het mis zoenet, maar ja, bole bapre दरवाजा राज बोले कटलीस लेके दरवावे, बोले लाठी ले पहले रा भैया, अब दरवाजा अपन सिपाही के लेके चले है आज बस कर्मिंग। दरवाजा से खराब ना करियो, देखो भैया मियां बतावे लीसिंग, लीसन इज ओकन कुंस। हां बोले बताएंगे 4,7 मिलियार्ड अमेरिकाanse डॉलर schuld even als 8,7 मिलियार्ड वर्थ। एकर बारे में बतावेंगे बीते हुए हफ्ता में कि 8,7 मिलियार्ड खिंग रोन बहना है दुबल फन वाद दख्तन वाद वो दख्तन त्वेतन तुन कॉमन ब्यूरो फन साथ स्कूल में कोरेक्सी फन 4,65 मिलियार्ड। भैया तब देखो कितना बड़का फर्स केल है, वी अलेन द कॉपन लास सख तुए फेतन दी एलकार तेगन स्प्रेकन वी खुद लास सख इस अंदर्स तो का ही बदरखवन मोई से पढ़े के नलवन ताक लियो भैया कोमा ताक लियो तो तब पता मिलेगा कि कहां कितना बदरखवा है। और घड़ी भी देखियो भैया तो एनन ट्वेंट हंड्रेड ईयर जो है 9 बजे है रात ढेर आदमी लेके नहीं का ईयर तो सोचे 9 बजे सवेरे है दोस्त रात मु तो ओग मेन से एफ खुद कहके सोम्स राग दी दिंग इज इन फरवांट लिखा ले सेफ ईयर तो ना लिखे कि सेफ ईयर जब लिखियो भैया तो सात बजल ले रात भी तो वांट और सात बजल ले सवेरे भी लेकिन सात बजे रात इस नहीं घंटी होंडत ईयर में से सेफ ईयर इस ओख्तन दस ना 12 ईयर वर्ड तक खा

Gelijk na 12 uur wordt het in 1 uur, 1300 uur, 1400, zo is het. Mensen, ik geef geen lessen, maar heel veel mensen raakt het in verwaar met de tijdklok ook, net als met de komma en nullen bij de bedragen. Op de kop, hi, huaka, hey, ego, auto, jaike, marise, ABS, ke palme, afuba, kape, patatje, lelhe, admi, bole, otowa, bole, rastamer ha palwa pale palwa rastamer ha mejana bichwa damwa pe bhs gaade raha ka lekin bhaiya aise batiya na hai ek admi ja hai afuba ka weg pe aur bole akele ja bina ek ko problem ke aur jaye ke mari palme mari bhaiya tiu ta mar ek se unbekende oorzaak dat de control over de soet na gele bhaiya nahi tu ida chiyo I baanchi tu omstreek 36 uur te मतलब ओ रात के भैया तो रात के तुझे रुसु जइए रात के 2 बजे 2:30 बजे रात के ओ तो चलिए तो मस नहीं इन 20 में जाएंगे और ये काट दे से भैया दिस इज कैन नॉट अंडर से दी मान सा जेकर इन स्लाप ग वालन जैन ये बातचीत है भैया एक ओ हिंदुस्तानी औरत है देना में और औरतिया का नाम बा जरबंधन बड़ी शर्पा औरत है फिर पेयर है भैया देना लेते और जो जो फ्रॉक स्टाइल करे भैया ने मुझे सों से हंद निहार खान से कि का बतिया है अतुलन जाने हैं ए वो जो बड़ा जोड़ छटके और परमेश्वर भी बड़ा जोड़ छटके साथ थे साथ एगो सालार बक्स निकरमान है सब एनी पेयर्स के देना लीड है तो इसे बड़ा जोर जोर चिल्ला है तो एक बारे में पार्लियामेंटारियन ए बी जोन्स जोन है रबिन परमेश्वर है और फ्रक्सी खनोट असीस सलार बक्स है जो तेखल कस प्रोकन सलार बक्स टेल एंकल वीकन खलीदें कि बोले फ्रेश मटेरियल जो है ओएम के मतलब के ओबंबार वर्क के बोले उसे बस्तन है शांत वीक के अपन प्रीफे ट्रेन वास को बोले जाए कि सब उनको प्रीफे ट्रेन पे खबर करे जो लांटी के चीज तो सदा से जानल भैया हम जो समय पे सुरीनाम देश में रही तो स्कोतु के ओतो में घास काट के ला दल रहा और जहलीवों से घास कटवाई के स्कोतु इंस्पेक्टर अपन गाय के खवावत रहा भाई ये सब चीज सुरीनाम में होत रहा कभी कभी देखे ईटा सुमंती ओतो के ओतो पे जा है और आदमी बोली हमें सिपाही के काम है तो बोले मीनो अभी ओली बांती बोरो तो एक बारे में सालार बक्स हैव वीकन अथॉरिटीज geen toestemming gegeven voor de gebruik van privédoeleinden ook stelde hij de Berman van Pettenpolder door dezelfde zwager van het districtcommissaris zijn afgegraven en vernield hierdoor is de weg aan het afkappelen afkalven sorry mensen यहाँ बतावे बिफे के जोंस उपमेरक करी से हीर ओवर फन फे या पेर अमीरानी जरबंधन दत एर खेल फन बलासिंग बलाते निर गबरेक मुद वर्दन ओम ओनगे uitspraak in de slans voor een vergaderzaal te doen. Gerbanden vroeg Jozef Permissel als er wacht heeft gelogen beloosheb. Jude bolise dosto. To jayse reete Gerbanden. Baya barak. Bara moeilijk vraag pere he. Stel kere he. Geleerde mevrouw. En dat vind ik zelf ook. Je moet dat soort dingen zeker doen in een parlementaar. In de DNA bedoel ik. देखो भैया यहाँ बाई को रेक्रियासी और थे सुरनाम जेकर नाम बा बीगी कुरुतु हाँ रेक्रियासी और बीगी कुरुतु कभी एकर नाम हम ना सुन ली है कि छोटा कुरुतु बीगी कुरुतु हाँ कुरुतु तो हम जाने ला सब कुरुतु करे घरवा में तो बड़े का कुरुतु करे तू मौसी मौसा से हाँ बाकी यहाँ एगो रेक्रियासी और के नाम बा बीगी कुरुतु ये है डिस्ट्रिक्ट पारा में भैया और हुआ का भले दगवल भैल है तो बोलिए चोर दाग विषय ना भैया जोन बहेर दरवारा जेकर रहा जेकर रिक्रिया से और बीगी करु तू है 5 बजे संझा के एगो बिरखर के दागी से स्लाखतोफर लिप स्कॉट वोनिंग तो आदमी गैला भैया बीगी करु तू वे और हुआ पे बहेर दरवे ओके दाग दे भैया मां पता ना है जिंदा है कि मर गए है तो दोस्तों आप लोग को हम
अपना समाचार सुनाते हैं। सूरीनाम देश में भैया सब को यो गोरे तेलवा कब निकरी और यहाँ तेल आवे है भैया का बोले है अने ईरान और ईरान और का बोले अमेरिका में दगावल हुए लगल फिर भैया ओली प्राइस चढ़ गए नहीं तक डॉलर भैया ना न्यूवा अनफालन ना न्यूवा अनफालन और ये सब बात है हमारी जनता। ये बात है हमारे जनता नई खन तक अमेरिकन डॉलर हो गए हैं स्ट्रान फॉर हॉर्मुज क्रुशियल फॉर ओली मार्क स्ट्रान फॉर हॉर्मुज बहुत तो बलंगरेक से सी रूट फॉर ओली टर वेरल ऑनगेवर अन फेव्ड फन द मुंडियल ओली हंडल पासेड दिस ज्वाले ज्वाले दोरखांग। तो और बात हम बताते हैं भैया सूरीनाम के लेकर और आगे इंगी के और हम जाएला भैया जेके सबन बहुत प्यार से बोले इंगी के एन हिम्स दोरो प्रोफ्दन और बोले सूरीनाम से फरेनिंग द फरेनिंग फन एन हिम्स दोरो प्रोफ्दन बोले है रखेरिंग से मांगिस के 5 किलोमीटर सोगना 5 किलोमीटर वेट नीट ऑफ द कंडगन बोले 5 km वेट नीट ऑफ द कंडन द ऑर्गेनाइजेशन हिट द बेसलिसिंगन बेसलाइटन अनबेवेलन फन द हार mini-convocatie vastgelegd in de resolutie die formeel aan de Kiruna-lid een presidentiële werkgroep grondrechten dat toen jij een kind kebare met ingelon behoud dienst ik hoorde he bakke usap ke ketwaan na afronde kere he bhaiya ganga na afronde kere wingi kutte rei ja he ab jab feest re bauta ke tab sabar lai ke apan dhaman dhaman baja bajawe he to ye baat he hamare janta hamare dosto ego baby khabor bhaile sarnaam mein to boli jo यहाँ पर बड़ा ढेर हुए है लेकिन एगो एक्सक्लूसिव बेबी खबर भैले सूरीनाम में और तुलन जाने हैं ये सब एक्सक्लूसिव चीज हरदम ना मिले सुने के देखे जो निक लगे सब सुने के पियो भैया तो ई मिलल है बेबी खबर भैल है और भैले धीरन तैन पर हमारी बहु सौ में एगो जैगवार के भैया मतलब भगवा के बच्चा भैल है आखोंदत एंडरसन खराम में उनको फिर सौ आलसन अर्जनास जितना बड़का एगो अनानास है उतना बड़का एगो बेबी खबोर भैल है द वेलप ही फ सख्त प्लेसिक फख्त में डोंकर फ्लेकन दी कैन अमेरिकन सो सेन फॉर जैगवर्स और सूरीनाम में भैया हुआ हरना एगो रमन मार के खाली भाई हरना खाली बचाई करे ये बच्चों ना चोरी कर ले जाए भैया विश्वास ना है सूरीनाम में कैमा भी संबंधी रंत इनके मार के खा ले रहा और जाए के मुड़ी जंगल में पिरल हाँ तो ये जागवार भैया कुमोई से घर में बन करके के पुसियो। तो ये बात है हमारे जनता हमारे सूरीनाम के जनता तो हम सोचिला कि तो लोग के और हम का सुनाई गीत तो हम में भरल है तो एक गीत के ओर हम बढ़ते हैं तो आपको हम सुना देते हैं हुस्न वाले और तेरा जवाब नहीं है एक के हम जरूर सुनाएंगे कारण कि हुस्न वाले बहुत ज्यादा है लेकिन तारीफ करना भी बहुत बड़ी बात है तारीफ करने में चुकना नहीं आओ सुना जाए।

0: और पूछने वालों तो तेरा जवाब नहीं है। तो अब दोस्तों एक दो समाचार और हम पढ़ेंगे तो हमारा समय आ गया है रोकने को, जाने को नहीं रोकने को। अब देखो भैया निकोलास मदुरा के ओर हम चलते हैं, जोन फीनी स्वेला के फुरमालक भैया हुआ के राजा रहा, हाँ प्रेसिडेंट रहा और अमेरिका के खूब गरियावत रहा भैया। अमेरिका के बस एक रोज का भैल है जाए के तुरंत ओके घर हुए मचे उठा लाए भैया मुर्गी ना सूंघ पाए से बोलिए जॉनी मुर्गी ना सूंघे अच्छा बोल दे कुत्ता ना सूंघ पाए कैसे ओके लेके चल गए और ले जाए के मदुरा के जहल में बंद कर दे इसे। अब मदुरा अपन यानी कि अब लड़े है कि कैसे निकली तो लोग जाने भैया कभी कभी ऐसा गढ़ा आदमी गिर जा है क्योंकि निकले बड़ा मुश्किल है। तो मदुरा की ही बात है तो नवा फोटो ही अब आए ले तोरन मदुरा फॉर इयर्स से खफांग नीमन इन फेयर मदुरा दुबराई के भैया अरे जहल में कैसे मोटियो भाई। और बोले अमेरिका के फुरमालक प्रेसिडेंट निकोलास मदुरा बोले हैगा अब जाए के कर फोटो आए ले खफांग नीमन दोर अमेरिका से त्रुपन फोटो फॉर द डिटेंशन लाते पब्लिशेरन ऑफ द बिल फर्स्ट मदुरा ग्लिमलाखन इन अ ग्रीस ट्रेनिंगस्पाक इन अ बोस्काम आन सेट फैमिली आनहांगर सेगट हे सामन मेट से फ्राउ सिसिलिया स्टंट टू होल्डन द फोटो फर्स्किनन सोंडाग ऑफ सोशल मीडिया कनालन फन मदुरा हे इज दार ऑफ सिखबार टेकन इन फॉर द मुर गक्लेड इन अ ग्रीस ट्रेनिंगस्पाक द मदुरा मन यो देखे भैया द देख पयो एंड द ट्रेनिंगस्पाक पे ऑफ बताए गए कैमरा गेगिवन बाय द बिल्डन मेंशन एरोप दैट फोटोस 25 जूनी सेन गेमाक्ट और बताए मदुरा लिट ऑफ द फोटोस वेदन दैट हे ze beschouwt als een klein gebaar voor zijn kleinkinderen en anderen die hem en zijn vrouw steunen. Want oude tio banen we ja doen nu prani ban hele jijke. Oude turum ban kerde ze. Madura is Venezuela werd even weggevoerd. Staat Rodriguez aan het hoofd van het land. Haar regering heeft de betrekkingen met Washington verder aangehaald. En kiest nadrukkelijk voor diplomatieke economische samenwerking met de regering van president. Oude Donald Trump waren mee. और अगर जो वेनेजुएला अमेरिका से जब बढ़े तब मान लिया ये कोई डोनाल्ड ट्रंप के ले जात तब तो आग लग जात दुनिया में भैया ऐसे बतिया है। लेकिन अमेरिका से के जाई लड़े भैया लेकिन ईरान आज लड़े है। अब देखो भैया स्वीडन टेकन करी से का मिलियार्डन कॉन्ट्रैक्ट फॉर आन को फंड फ्रांस फ्रीगेटन यहां बताए गए हैगा 4.3 मिलियार्ड के कॉन्ट्रैक्ट टेकन कर इसेगा स्वीडन को फिर फ्रीगेटन फंड फ्रांस नेपाल ग्रुप और बताल सेरेमोनी फंड हेड कोप कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकन भाई लेगा फ्रांक स्वीडन एंड बीस हुन बंदन ऑफ इट खबीर फंड डिफेंसिव आन द हालन द ट्वी लंदन ड्रिंगन आन द ग्रोटे यूरोपीसे मिलिटेरे सेल्टरेटसाम हीडन आनगेया फॉर द रूसीसे ड्रेगिंग विन ट्वी फंड अमेरिकानसे वेलिगेट गारंटी फंड एरोपा। तो ये बात है नीदरलैंड में बोले घर बने भैया तुलन जानो ऑलटाइम वोडिंग कोर कैबिनेट हेल्प वोडिंग बाउ ऑफ 5 प्लेकन गेन गेल्ड एक्स्ट्रा गेल्ड फॉर वीकन। तो बताए गए है का डिफेंडर हार्लेम लेवार द मस्ट्रेक एंड वीर्त में से बनावे है बाजार करे 2035 में से रन कर दे 30,000 वोडिंगन दारदोर स्नेलर ऑफ सेन द वोडिंग मिनिस्टर जोनबा और वो बतावे है का ट्वेद कामर में कि एक्स्ट्रा geld om de woning bereikbaar te maken komt niet. De 5 gebieden komen bij de 21ste andere grootschalige woningbouwlocaties die eerder kabinetten al aanwijzigen. Toe, je baart bijna op Toulonjaan in Suriname dus mee. जो भैया मट्टी जो है लेक से लेके वाहन चलावे डाम पे तो यहाँ पर सुरीनाम बैग से ओवर रीगल रोन फरफूर फन ओवर लीडन ओवर ओपनबार वेख। तो यहाँ बताए गए हैगा अंडरवेरप है सेंट्रल एंड प्रेजेंटेशन के बारे में लेक फरफूर के बारे में जो ओपनबार वेरिक पे समन चलावे है एकर बारे में बता रेक्स कादर और वो बोले हैगा मिस्टर दनियाला खीफ अक्रमत आली प्रेजेंटेशन वर्ड मंडक इन 30 अगस्त को द नेशनल आर्काइव इन परमारिबो और बोले द क्वेश्चन इज दैट मी ब्रीडर दन अली द प्रैक्टिस ऑफ रा हु अ लेखान फन इन ना द अंडर लोकेशन वर फॉर फूड्स ओकर बारे में रिकल्स मनी ook moet duidelijk zijn welke instantie op welke moment de verantwoordelijkheid draagt en welke wettelijke en operationele regels tijdens het transport in een acht moeten worden genomen in de presentatie. En moet meer gezicht geven in de verschillende aspecten. Kebare mee. Toen John Hamara leek, hoe ze regels wanneer ik kon aspect kaisje hoi. Gaya din bole, bhaiya. Gaya din bole, bole regering heeft zijn kluts kwijt. Bhaiya patana kapu kluts ooker. Laat ze bole patana ko richting hamelijke regering. Ja, he. Bole, het leek alsof de regering kluts kwijt is. Iban bole, Asis Kumar gaya din bole, hega. Aur DNA mee. Over regering ze poetje, he. Parasastale bestrijven. Hun planning verbeteren. Nu hebben we het voor EBS. En laat hegging daarover. Willen we zeker meer duidelijkheid, maar het gaat over de prestale bedrijven. Kebare mee, hamare janta. Toen je tha, hamara des, abhi des kismachar. Ek aadmi bhaiya, chhodi bhukke, ab mein bata rahi. Mongo mein mar gaye hai. To yahan tak tha, hamara aaj ka समाचार जो आप लोग सुना है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज की प्रोग्राम आप लोग को एक घंटा हमने सुनाए हैं और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Directe aanleiding was een uitzending van eind juli waar Niemuller stelde dat Hitler bepaalde zaken goed zei. Minister Letcher noemde de uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. EU-buitenlandschef Kaja Kallas verklaarde vandaag bij aankomst in het Ierse Wicklow dat het tekort aan luchtverdediging het grootste probleem is voor Oekraïne. Ze riep landen op onderscheppingsraketten met een aflopende levensduur te doneren. Juli en augustus waren volgens haar de dodelijkste maanden voor de Oekraïnse burgerbevolking door Russische escalatie. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. Het weer dan tot slot. Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes. Waarna het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het kwik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meest matige westenwind. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. तो जैसे हमने बताए हैं कि आज कुछ हम आप लोग को सरनाम के गीत सुनाएंगे, तो बोलिए बैठक गाना जॉनी अतीश आलस ऑल इन वन। आप जानते हैं प्रोग्राम हमारा कुछ अलहदा होता है, तो कभी काशी को हो जाता है, तो कभी फिजी का सॉन्ग हो जाता है, तो कभी मॉरिशियस का हो जाता है, तो कभी भारत इंडिया का भोजपुरी हो जाते हैं, और कभी तो हो जाते गयाना का, त्रिनिदाद का, तो कभी सोका हो जाता है, तो कभी चटनी हो जाता है, और कभी बैठक गाना हो जाता है, और कभी कभी तो बॉलीवुड तो चलते ही रहते हैं। तो आज आप लोग को कुछ अलहदा सॉन्ग हम सुनाएंगे, और ये सब हैगा हमारा सुरिनामी गीत है इमिग्रेशन के, या इमिग्रेशन नहीं, जितने लोग आए हैं, और ये गीत को आपको हम सुनाते, आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों हम सब चाहे हॉलैंड में हैं, चाहे जोन आई संदेश में हैं, लेकिन आप चाहे जहाँ जाइयो, जब अगर कोई और आपको देखेगा तो वो जान जाएगा, नहीं वो पूछेगा भाई आप कहाँ कहो, तो आप कहेंगे हम हॉलैंड की, तो बोले नहीं तो ये मैं अपन आंध्र क्लर्च, तब बोलियो ना ना ना हम सरेनामी हैं, तो हमारे क्लर्च से पता चल जाता है कि हम kan kan dosten ondanks dat u gaat zeggen ik ben geboren in Nederland, u gaat zeggen ja ik ben van hier, ik ben van daar, maar oorspronkelijk heel veel mensen zeggen je bent van India. Nee, ja, nou mijn voorouders wel, en daar mag je zeker trots op zijn, mensen, zo gaat het toch, u mag het zeker trots op zijn. To Suriname zo aanchamapluku zunaenge aur iske baad hum kya sunayenge dosto, aao ek aur zuna jaye met ya गार ऑर्केस्ट्रा इन हॉलैंड टूर की, ये जोंग है एंड इट्स एन हील फील फॉर ओंस कलाकार, सुरनाम के कलाकार कितने इसमें मिल के ये गीत को गाए हैं, और इस गीत इस लाइफ स्टेज सॉन्ग मेंजे, en laten we even gaan luisteren. Het is heel mooi met voice of een Vires Uditram, Nisha Madaren, Auro Amadali, Surinder Sutal, Faris Barsati en Yadgar Orchestra gestaan. Je giet ko je sab gaiet he met alles drop en dran. Chutney masala lagaak raus na jij.

और एक बार फिर हम कहते हैं जय जय जय नोहकीर, जय जय जय हमारा सूरीनाम। तो दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ सूरीनामी की गीत सुनाएंगे, यानी कि हमारा काम है नए नए नए नए कुछ प्रोग्राम बनाने को। जब अगर सूरीनाम के गीत जो होता है तो हम क्यों नहीं क्रिस राम खेलावन को लाते हैं, कारण कि क्रिस राम खेलावन इज ऑन्स टॉपर, एन फॉर द टॉपर्स नेचुरली दी हेल मो यूनिवर्स फॉर ऑन्स सरनामी हैव गेसोन। एंड लेट्स वे फॉर गाना लिस्टर फ्रॉम क्रिस राम खेलावन।

Oh, wie kan het anders zijn naar onze echte originele Mohammed Sharif Zaak. Yo, is dunia mein hi hai dosto, lekin phir bhi apni awaaz hum sab ke liye chhod gaya hai. Aur jo chhod gaya hai to usko jarur jarur aapko hum sunayenge hamare yaro. Aur main se ab aap log ko aur hum kuch sunayenge. Wij hebben ook een Den Haag imam die over Surinaamse lied hamara sarnami ke bhasa wala geet ko gaya hai. Aur wo कौन है दोस्तों? दैट इज ऑनसे रबिन बलदेव सिंह. रबिन बलदेव सिंह भी कुछ गीत एक गीत को गाया है हमार सरनामी भाषा. तो आज आओ मिलकर सुना जाए हमारा रबिन बलदेव सिंह जो Den Haag का है वो आपको क्या सुनाते हैं. आओ जरा सुना जाए.

अरे बोलो सतनामी, तो ये तो जरूर हमारा सुरिनामी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महान है और उसको जकड़ कर कस के पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? हमारे देनहाख के रबीन बलदेव सिंह हैं। मैं से वहां नार ओन से फॉलोस्लीट या दैट मुट ओक कीर चकत राइट वर्ड मार इन हिंदुस्तान, वही तो बतिया है। बोलिए जॉनी ये क्या है? आओ सुना जाए हमारा सुरिनाम से फॉलोस्लीट इन सरनामी हिंदी में ये कैसे गाया है या गाया गया है। फॉइस धुरे ननकू एंड मीरा ननकू ने इस यानी सुरिनाम से फॉलोस्लीट को गाया है।

और दोस्तों आपको हम कुछ सरनामी जोंग तो सुनाते ही रहेंगे। जैसे आपको पता है आज हम उस मूड में हैं, हम पूरा दुनिया को गीत सुनाते हैं, कुछ कभी भोजपुरी तो कभी यानी कि और यानी कि इंडिया का भोजपुरी, लेकिन आज आप लोग को हम सुरनामी गीत सुनाएंगे।

और बेन से ये है हमारा सुरीनाम। Als je dit soort liedjes heel aandachtig gaat luisteren, mensen, krijg je gewoon kippenvel ervan. Ha, अगर ये कुछ अपना खून में है, अपना शरीर में है, तो ये सब गीत जो है तो आपको झकझोर देते हैं कि हमारा देश सुरीनाम तो अपना ही देश है जहाँ पे हमारा जन्मभूमि हुआ है। लेकिन सब लोग को वो फीलिंग नहीं है, लेकिन जितने लोग के आपको फीलिंग है, तो हम चलते हैं एक मोहम्मद शरीफ इसाक की ओर और रीति बलदेव सिंह। कैसे हमारे बाप दादा जो है हमारे इंडिया भारत से सुरीनाम देश में आए हैं, वो भी एक हम रख देते हैं।

0: Blue Wonder. 100% krachtig reinigen, 100% geur. Wonderbaarlijk krachtig.
1: Yaniki Guru Dutt Kala Singh bhi ek Surinam ka aur bahut bada kalakar the. तो इसके बारे में कितने लोग को तो पता है कि ये गुरुदत्त कला सिंह क्या है, कौन था. तो ये भी एक गीत को गाया है, हम हैं सरनाम के लड़के.

पुराना कलाकार है गुरुदत्त कल्ला जीम का, ये सोम है हम है सरनामी, और आज के नौजवान जो है हमारे हॉलैंड देश में वो भी है, वो सबके भी फीलिंग है सूरीनाम के, जैसे भैया संदीप बदलू है वो भी कुछ सुनाए है आज के यौर क्या गाते हैं सूरीनाम के बारे में।

भाइयों को जो भारत से आए थे, आज उनके दुआएं से सुख की हवा चलत है। तो

ये एक नौजवान है जो जो भी सरनाम के गीत अपन स्टाइल में गाया है, यानी कि पुराने लोग भी है और नया लोग भी है जो हमारे सूरीनाम के गीत को और गाया है हमारे यारो। तो हम कहते हैं एक और हो जाए आखिरी वाला अन लास्ट में से, दैट इज निमत अंदर दन ओन से एक सूरीनामी हमारा दिए सत्यनारा सत्यनंद रेखा। और दोस्तों ये सत्यनारायण रेखा जो है ये भी एक बहुत मशहूर कलाकार है, अपने देश की कलाकारों है ये सब, जो जरूर हमको सुनना चाहिए।

और दोस्तों इसी चून से आज हमारा सुरिनामी का प्रोग्राम जो है खत्म आने को हुआ है और कोरोनी शर्मक्का सत्यानंद रेखा बैकग्राउंड पे हमारा है। तो हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको ये सत्यानंद रेखा का गीत भी अच्छा लगा होगा और इन ईर्चिस अलमा सरनामी ही अपना सरना।

प्राण में आखिरी प्राण बस आखिरी एक लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी जीव जरन का है हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों ये एक यानी लोकल सॉन्ग थे आपके हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही देनहाक का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल्सों आप लोग को मार्च सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और ये है अपना

लो मोर कहनिया, हम आए सूरीनाम तो इस गीत को और ये चलाए हैं, गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झाक ने, हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोन हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोन है।

और तेरी दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

सॉन्ग है दोस्तों। तो हम चलते हैं यानी कि एक बार फिर जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम यहां से हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते ही साथ ही साथ हमारे यारो आपको आज हम कुछ रिमिक्स मिलीजुली गीत जो है आपको हम सुनाएंगे हमारे दोस्तों। और यानी कि और क्या क्या करेंगे आपको हम यहां से शुरुआत करते हैं। और कुछ रामदेव चैतू का रिमिक्स है, कुछ और चटनी मसाला इसमें हमने डाल दिया है हमारे यारो।

ओहो जब तू मेरा नाम ना हमारा नाम ना जाने। एक बार फिर कहते हैं जॉनी है हमारा नाम और सॉन्ग है रामदेव चैतू का। आते हॉट सॉन्ग मोख जल्दी ओके मेचे खा डांस मेंस।

हो जा राम नाम का पकालो भी और क्या मनाए मायामी और रखा रामदेव चैत्य के कुछ रीमेक सॉन्ग आपको हम और सुनाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं पारी करो रेवती राम रूप का गाया हुआ ये और सॉन्ग है आओ मिलकर लातवे में चखान घूमे घूमे।

पारी करो और पारी करो ना वोट के पारी करो, ये गाना के नाम है रेवती राम रूप का और ये गाना है पारी करो चटनी रीमेक सॉन्ग है। तो हम फिर चलते हैं रेवती राम रूप की एक और हो जाए और वो भी एक चटनी जो का शो का।

और रेवती राम रूप के आवाज में आप लोग सुने हैं हमारे यारो। उसके बाद में हम भी चलते हैं अपना देश की रामदेव जय दू रे में इस बैठक गाना।

0: और मैं रमता जोगी राम के बाद में। दोस्तों हम चलते हैं और फिर एक बार कहाँ चलते हैं, और वो है राधिका की ओर। राधिका दिन हॉट चटनी जोंग मोहो कमेजी का दम जमीन से अमेजी खान स्विंग और वार ये ओक बैंड मख वेल अलमाल अलीन बे रेडियो फाहोन।
1: दिनवा कहाँ गवायो ना,
0: ओहो कहाँ दिनवा गवाईले है,
1: दिनवा कहाँ गवा
0: फुसूर फुसूर फुसूर
1: रतिया।

वो है रसिक रसिक रसिका दीनदयाल होट चटनी हमारे यारो, जो आपको हम आज सुनाते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं लोकल रामदेव चैतू।

आज हमें जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यारो। और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर, और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

En daar gaan we weer. Dance and party time!

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: नौ एन टी मारे बे रेडियो फन हैप्पी ऑल टेट एन थ्री सेंसेशन
1: एक नशा से चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फन।

फाहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

हम हैं जॉनी नंबर वन, और जॉनी नंबर वन जो है तो वो जरूर कुछ शायर के गीत आप लोग को सुनाएंगे, तो आओ सुना जाए। मैं शायर नहीं तो और क्या हूँ, फिल्म के नाम है बॉबी का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं भी शायर नहीं हूं, लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों, और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

तेरी भी दोस्ती पसंद आए हमारे दोस्तों। तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं और प्यार के मूड में आए हैं, तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए। और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

बोल सुरपी मनी, इनके बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के ओर, वो भी आज प्यार के मूड में है। कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए, कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे। ये तो एक और हो जाए बाला सुब्रमण्यम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार,
0: और मैं भी तुमको बहुत प्यार करते हैं हम,
1: बहुत

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमान श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत आतिश वेलन हील अवलीचे फन 1957 और फिल्म के नाम बा भाभी और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

छुपा कर मेरी आंखों को तो पूछे कौन है और बता दीजिए नाना जी गिल लता जी और प्रणाम श्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। और हम चलते हैं कभी कभी जब प्यार हो जाता है तो लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं, लोग खोजते हैं कि हम कहाँ अपना प्यार को ढूंढूं और प्यार में लोग क्या क्या देखते हैं। और ये गीत है रब को भी लोग देख देते हैं प्यार भी हमारे

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रही हूँ जिसका नाम है स्वप्न। सपने, सपने हमें क्यों आते हैं, सपने हम क्यों देखते हैं और उन सपनों का मतलब क्या है, इस सब विषय के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी।

स्वप्न विश्लेषण, स्वप्न की परिभाषाएं, यानी सपने कितने प्रकार के होते हैं और उसकी क्या परिभाषा है। भारतीय मत, जागृत अवस्था में हुए संस्कारों से उत्पन्न ज्ञान अवस्था का नाम ही स्वप्न है। जब हम जाग रहे होते हैं तो जो चीज़ें हम देखते हैं, और जब सो जाते हैं और जो चीज़ें हमें दिखाई देती है उसी को हम सपना या स्वप्न कहते हैं। आरसत्तु, स्वप्न नींद के समय का मस्तिष्क का जीवन है। जो आरसत्तु एक बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उनका मत है कि स्वप्न नींद के समय हमारे मस्तिष्क का जीवन है। ब्रिज, अवस्था शारीरिक परिणाम ही स्वप्न है। जब हमारा शरीर काम नहीं करता और हम नींद में होते हैं उसी को स्वप्न कहा जाता है। फ्राइट, नींद में मन पर क्रिया करने वाले उद्दीपकों को उनके ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया ही स्वप्न है। कि जब नींद में होते हैं और हमारे अंदर सारी चीज़ें मस्तिष्क में चल रही होती हैं और उसी को स्वप्न का नाम दे दिया जाता है। डायलॉग आलिस, जागृत अवस्था में जिन लक्षणों के कारण सर्वाधिक प्रबल रूप में कर्ता प्रभावित होता है उस अवस्था की पूर्ण प्रवृत्ति ही स्वप्न है। स्वप्न हमारे नरक और स्वर्ग की ओर प्रवृत्त होने का बैरोमीटर है। स्वप्न दर्पण है चित्त की दशा का। ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, वासना का प्रतिबिंब ही स्वप्न है। सर्वप्रथम स्वप्न ब्रह्मा जी ने देखा था। 33 देवों ने स्वप्न को शक्ति प्रदान की। स्वप्न तत्व, जिन व्यक्तियों की देह में पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक होती है उनका बाह्य आवरण थोड़ा कठोर, हड्डियां मजबूत और देह पर बालों की भरमार होती है। पृथ्वी तत्व तपोगुण प्रधान होता है, इसलिए ये जातक अधिक आलसी, अधिक सोने वाले, शीघ्र डर जाने वाले, देह से निर्णय लेने वाले, दीन स्वभाव वाले, अधिक मीठा खाने वाले तथा अधिक स्वप्न देखने वाले होते हैं।

सुनने वालों, अभी तक आपने सुना कि स्वप्न की परिभाषा क्या है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। मन तथा स्वप्न, यह मन कभी निष्क्रिय नहीं बैठता, कुछ ना कुछ चिंतन करता ही रहता है। स्वप्नों के विश्लेषण का कोई वैज्ञानिक नियम भी नहीं होता। लिंग, स्वभाव, वातावरण की प्रतिकूलता के अनुसार एक ही प्रकार के स्वप्न विभिन्न व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। सुनने वालों देखो ना, जैसे हम सपने लेते हैं तो जैसे जिसका स्वभाव होता है उनके सपने भी अलग अलग होते हैं, व्यक्तियों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं। विभिन्न जातियों और देशों के लोग एक ही प्रकार के स्वप्नों की व्याख्या अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार अलग अलग प्रकार से करते हैं। स्वप्न का कोई ठीक और निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता। अंतःकरण में संस्कारों का जो समूह एकत्र रहता है उसी में से किसी एक या अनेक का चित्र शुद्ध अथवा विकृत रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है। संस्कार अथवा चिंतन निकट वर्तमान कालीन अथवा दूर भूतकालीन भी हो सकता है। कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में घटित होते देखे गए हैं। काम स्वप्नों का अंतिम फल वही होता है जो जागृत अवस्था में किए जाने वाले विषय भोग का होता है, और इसको स्वप्न दोष कहते हैं, जो एक रोग होता है।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना स्वप्न की परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फल समय, स्वप्नों के फल पर विचार करते समय सर्वप्रथम यह बात देखी जाती है कि स्वप्न रात्रि के या दिन के सोते समय किस भाग में देखा गया है। दिन में देखे गए स्वप्न सर्वथा अविश्वसनीय माने जाते हैं। रात्रि के समय उत्तरार्ध में देखे जाने वाले स्वप्न अधिक विश्वसनीय होते हैं और चौथे पहर में ब्रह्म मुहूर्त के निकट काल में देखे गए स्वप्न सच्चे होते हैं। रात्रि के चार पहर में देखे गए स्वप्न इस प्रकार फल देते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हो सुनने वालों कि जब हम दिन में सपने देखते हैं वो ज़्यादातर सच नहीं माने जाते, और जब हम रात को सपने देखते हैं उनको ही हम लोग सच मानते हैं या सोचते हैं कि वो सपने ही ठीक हैं। और उसके चार पहर बताए गए हैं जो हैं, पहला पहर के सपने एक वर्ष में, दूसरे पहर के सपने छः मास में यानी छः महीने में, तीसरे पहर के सपने तीन मास में तीन महीने में, चौथे पहर के एक मास में यानी एक महीने में, और प्रभात के सपने तत्काल यानी प्रभात सुबह के जो सपने हम देखते हैं वो हमें तत्काल उसी समय दिखाई देते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी कार्य की सिद्धि असिद्धि स्वप्न में देखना, कि जैसे हम में सपने जो आते हैं उनमें सिद्धि क्या है और सिद्धि क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। शैया पर बैठकर ओम हील हील शूर पाणे स्वाहा मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे देवे दवेश, हे शूलधारी, हे वृषध्वज, मैं सोता हूँ या सोती हूँ, मेरे कार्य में सिद्धि असिद्धि में कुछ भी फल हो उसे कृपा करके स्वप्न में कहिए। मैं आपकी शरण में हूँ, आप अजम्मा त्रिनेत्र ऐसे वाम विश्व रूप आप स्वप्न के अधिपति को मेरा नमस्कार है। इस मंत्र को एक बार जाप कर और पूर्व की ओर सिर करके दाहिनी करवट के बल शयन करें और स्वप्न की प्रतीक्षा करें।

दादा। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सोने पर फल नाश। जो व्यक्ति स्वप्न देखकर फिर सो जाता है, वह मनुष्य स्वप्न से मिलने वाले शुभ अथवा अशुभ फल का भोगता नहीं होता। इसलिए शुभ स्वप्न दिखने पर बुद्धिमान पुरुष को पूर्ण नहीं सोना चाहिए और शेष रात्रि जागकर ईश्वर आराधना करते रहना चाहिए। यदि कोई पहले अशुभ स्वप्न देखे तो बाद के शुभ स्वप्न के फल को ही पाता है। बुरे स्वप्न को देखकर यदि व्यक्ति सो जाए अथवा रात्रि में ही किसी से कह दे तो बुरे स्वप्न का फल नष्ट हो जाता है। अथवा प्रातःकाल उठकर भगवान शंकर को नमस्कार कर स्वप्न फल निवृत्त के लिए प्रार्थना कर तुलसी के पौधे को जल देकर उसके सम्मुख स्वप्न को कहें अथवा अपने गुरु को स्मरण करें, तब भी बुरा स्वप्न का नाश होता है। आप तो जानते हैं कि जब हमें बुरे सपने आते हैं तो हम एक दूसरे से सुबह उठ के बातचीत करते हैं कि रात को हमने ये सपना देखा। सुनने वालों, जब हम अपना बुरा सपना किसी को बता देंगे, किसी से बातचीत कर लेंगे तो मन को एक तसल्ली मिलती है।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं कि स्वप्न तथा माया। स्वप्नों के गीत सदा अधूरे नहीं रहते, पूरे भी हुआ करते हैं। यानी कि जो हम सपने देखते हैं वो कभी अधूरे नहीं रहते, कभी कभी सच भी होते हैं सपने। ऐसी बात नहीं है सुनने वालों,

जो अपना होता है वह कभी सपना हो जाता है और जो सपना होता है वह कभी अपना हो जाता है। एक प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक फरियाड के अनुसार स्वप्न हमारी दबी हुई इच्छाओं का प्रकाशन मात्र है, विशेषता हमारी वह इच्छाएं जो समाज के भय से जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं हो पाती स्वप्न में साकार हो जाती हैं। ये तो आप सब जानते हैं सुनने वालों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए वो काम हो जाए लेकिन नहीं हो पाता, और वही चीज़ें कई बार हमारे दिमाग में घूमती हैं और वही सपना बन के हमें दिखाई देने लग जाती हैं।

हृदय में दबी हुई प्रत्येक वासना स्वप्न में पूर्तिमान होकर अनेक कर्तव्य दिखाती है, किंतु उनके यह विचार एकांगी तथा अश्मातक ही ठीक है। स्वप्न की अपनी एक सांकेतिक भाषा होती है, जिसे समझने के लिए विशेष प्रकार की शब्दावली होती है। कोई दिव्य शक्ति मनुष्यों को स्वप्न के माध्यम से उनके शुभ या अशुभ भविष्य के विषय में सूचना दिया करती है। कुछ उन्हें अपनी चैतन्य आत्मा की शक्ति से प्राप्त सूचना बतलाते हैं। व्यक्ति को जब निद्रा आती है, यानी जब हम सो जाते हैं, तो उनका मन सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है। हमारे जन्म जन्मांतरों का इतिहास लिखा रहता है। हमारे शरीर में एक ऐसी नाड़ी होती है जिसमें हमारे जन्म जन्म का इतिहास लिखा रहता है। ऐसा केवल आत्मा की शक्ति के कारण ही संभव है, जो अजर अमर है। सभी जानते हैं सुनने वालों की हमारी जो आत्मा है वो तो अजर और अमर है। ये शरीर ही हम लोगों का अरे मर जाता है तो, और इसीलिए किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। मानव देह में उपस्थित जीव आत्मा विश्वव्यापी परमात्मा की शक्ति का ही एक अंश है। उसका कभी नाश नहीं होता और वह पुराने जन्मों के संस्कारों को लेकर नए नए शरीरों में प्रकट होती रहती है। पूर्व जन्म के जो संस्कार बहुत बलवान हो और जिनकी जड़ें बहुत गहरी हो, वह इस पर जन्म में अनुकूल परिस्थितियां पाने पर पुनः याद आ जाते हैं और क्रियाशाली हो जाते हैं। जैसे हम जन्म जन्म से जन्म लेते रहते हैं और हमारी आत्मा तो अजर अमर है और उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि जब हम दोबारा जन्म लेते हैं कई बार वो हमारे साथ ही रहती हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। डॉक्टर कलिटन का कहना है कि नींद में जितनी गहरी होगी स्वप्न उतने ही जीवन से जुड़े होंगे। एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं कलिटन मन, उनका कहना है कि स्वप्न हम जितनी गहरी नींद लेंगे सपने उतने ही जीवन से जुड़े होंगे। स्वप्न देखना भी सांस लेने जैसी स्वाभाविक क्रिया है। नींद की गहराई पूरी रात सार्थक स्वप्न ना देखकर 2 घंटे के लिए ही आती है, और सारी रात सार्थक स्वप्न ना देखकर यह अनुभूतियां बहुत थोड़े समय के लिए होती हैं। अस्त व्यस्त स्वप्न अधिकतर खाने की गड़बड़ी या मादक पदार्थों के सेवन के कारण आते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम जिक्र करेंगे तुल्य व्यवस्था। इसका मतलब है कि जो साधक, जो आदमी जागृत, स्वप्न और सुषुम्नित इन तीनों अज्ञान अंधकार की अवस्थाओं को पृथक रूप से जान लेता है, वह ज्ञान और प्रकाश की तुल्यावस्था में प्रवेश पाता है। भगवान कृष्ण का गीता में योगी का रात्रि में भी जागते रहते रहने का संकेत इस अवस्था की ओर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो योगी रात को जागते हैं, ये संकेत उन्हीं की ओर है। उसमें चेतना का पूर्ण जागरण होता है, सारा अंत जगत प्रकाशित हो उठता है, अंत ज्योति से जगमगा उठता है। ऐसी महाज्योति जलने लगती है जो बिना बाती और बिना तेल के युगों युगों तक जलने की समर्था रखती है। यदि पूर्ण ज्ञान की अवस्था है तो और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। यही चमत्कारों का चमत्कार है। आप परमात्मा ही हो जाते हो, क्योंकि परमात्मा चेतना का सागर है, पूर्ण जागृति का प्रतीक है। इस पूर्ण जागृति की अवस्था को ही बुद्ध तत्व और शिव तत्व कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के सभी दुख विसर्जित हो जाते हैं। जीवन की प्रत्येक क्रिया उसकी साधना का अंग बन जाती है। वह चलते फिरते, उठते बैठते, पढ़ते लिखते, नहाते धोते साधनातर रहता है और सारी क्रियाएं उसके लिए जप, तप और ध्यान सिद्धि होती है, क्योंकि इन तपस्याओं की अनुभूतियां उसे सहज में अपने आप होती रहती हैं।

सुनने वालों, यह है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और इसमें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्वप्न विज्ञान। ये इसका विषय है स्वप्न विज्ञान, कि हमें सपने क्यों आते हैं और सपने हम क्यों देखते हैं और उनका मतलब क्या है। और आज मैं आपको स्वप्न की परिभाषा बता रही हूँ। हम आगे चलते हैं सुनने वालों। निष्फल स्वप्न, निष्फल स्वप्न की जिन सपनों का कोई मतलब नहीं होता, शारीरिक एवं मानसिक कारणों के बिना जो स्वप्न दिखेगा उसका ही फल प्राप्त होगा। निरोगी एवं प्रसन्न मन स्थिति में देखा गया स्वप्न भावी घटना का संदेश देता है। विकार रहित मन में दिखाई देने वाला स्वप्न ही उसके लिए उपयोगी होता है। विकार ग्रस्त मन में आया स्वप्न निष्क्रिय होता है। स्वयं स्वप्न देखने की इच्छा मन में ना हो उसके लिए कोई विशेष प्रयास ना किया गया हो एवं ना सार्गिक रूप में स्वप्न दिखे, तत्प्राय यह है कि स्वप्न पर किसी का वश नहीं चलता, वह निद्रा अवस्था में अवश्य ही दिखाई देता है।

सुनने वालों, अब हम आगे चलते हैं। फल संपन्न स्वपन, कि जिन सपनों का फल हमें मिलता है या मिलने वाला है तो उसकी ओर हम बढ़ते हैं। इस उक्ति के अनुसार बिना प्रयास के मनुष्य को स्वप्न दिखाई देता है, ऐसे स्वप्नों का कारण अवश्य ढूंढना चाहिए। स्वप्न देवी सत्ता के अधीन होने से उसमें गलतियों का परिणाम भी कम होगा। ऐसे कारणों के लिए भी सपनों का सहारा निसंचोक रूप में ली, जिसकी जैसी भावना हो वैसा ही फल उसे प्राप्त होगा, यह सिद्धांत समेक्षी होता है। सुनने वालों, आप सबको पता है कि हम हमेशा सपने में जो चीज़ें देखते हैं वो कभी सच होती हैं, कभी सच नहीं होती, ये तो बात है। आज मैंने आपके लिए थोड़ी सी सपने की परिभाषा बताई है कि जो 10 परिभाषा है

सुनने वालों, आज मैंने आपके सामने स्वप्न की परिभाषा रखी और आपको कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें तो जरूर प्राप्त हुई होंगी। अगली बार हम फिर मिलेंगे, आगे अपना प्रोग्राम बढ़ाऊंगी अगली बार और सपनों के बारे में कुछ और जानकारी आपको प्राप्त होगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

नहीं मिल पा रहा है, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि आज हम सब फिर कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर आपके लिए और उपस्थित हुए हैं।

0: ईश्वर है।
1: अति सुंदर और जो अर्थ भरी नगमा आपने चलाए भाई राजेंद्र जी, आज का जो हमारे विषय क्या है, विषय क्या है राजेंद्र जी, ये विषय के बारे में बातचीत होगा, तो विषय है पूर्णिमा। आज उसके बारे में बातचीत किया जाएगा, जबकि हमारे हिंदू कैलेंडर के 30 दिन होता है और उसमें 15-15 दिन का बांटा गया है। पहला भाग जो कृष्ण पक्ष होता है उसका 15वें यानी कि अमावस्या होते हैं, और जो दूसरा भाग कृष्ण पक्ष जो अंधेरिया को कहा जाता है, और दूसरा भाग जो अंजोरिया के कहा जाता है शुक्ल पक्ष कहलाते हैं, तो उसका यानी कि 15वां दिवस 15वां तिथि पे, खास करके तिथि पे ध्यान देना, क्योंकि एक तिथि ये जरूरत नहीं है कि वो 24 घंटा का होता है, कभी वो छोटा ही होता है और कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है ना। कहने के तात्पर्य यह है कि उसका 15वें पे हो जाता है पूर्णिमा। तो हमारे संतों ने इसके बारे में बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर और संदेश को दिए हैं, उसके बारे में अभी बातचीत किया जाएगा। हमारे साथ जो स्टूडियो में उपस्थित है शांता जी, शांता जी भी कुछ रचे के और लेकर आए हैं पूर्णिमा के बारे में। तो शांता जी, हो सके आप कुछ नई तलांस में उसके बारे में कह सकते हो?
2: जी संजय जी, वैसे पूर्णिमा को नीदरलैंड्स में कहते हैं फोलमान। द मान गिव सेल्फ geen licht. द verlichte मान इज द weerkaatste licht van de zon. Het weerkaatste zonlicht daarvan komt een deel op aarde, namelijk de maan licht.
1: तो यानी कि वो weerkaatsing से और जा करके, और वो ऐसे लगता है कि खुद के जैसे सूर्य के समान, पर वेर काटसिंग
2: जी।
1: अति सुंदर भाई राजेंद्र जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कुछ?
3: हाँ, हमारा ख्याल पूर्णिमा का दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा, ये उस ओर अभी नहीं बढ़ो, क्योंकि राजेंद्र जी उस ओर बढ़ जाएंगे तो हमारा जो सुंदर सा गीत हम लोग खोज के रखे हैं, पहले चला देते हैं वो गीत, क्योंकि हाँ। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम में हमारे भाई राजेंद्र सिंह जी, जो हमारे टीम का कैप्टन है, पनेल के पीछे वही बैठा रहता है और गाना जो हम लोग के लिए चला देते हैं, तैयार रहता है। राजेंद्र जी, क्यों ना हम सुनते हैं कि कभी प्यासे को
3: पानी पिलाया करो।

तो अमृत पिलाने से फिर क्या फायदा। इसलिए व्यक्ति को जब किसी चीज का जरूरत होता है तो उस समय वो चीज उसको उपलब्ध हो जाए, तो प्यासे को पानी के समान ही होता है। ऐसा आप किया करें।

0: कभी प्यासे का पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा। जो इस अर्थ भरी गीत हम सबको सुनाए राजेंद्र जी। भाई राजेंद्र जी, ये तो बस बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपका संदेश तो हमें ये प्रश्न रख देता है कि भाई आप तो बिल्कुल पंडित के तरह ये संदेश को सुनाए हैं। क्या हमें आप ये शब्द जो पंडित है उसके बारे में कुछ सुना सकते हैं, उसका मतलब क्या है?
1: जरूर जरूर, पंडित शब्द के बारे में, पंडित कौन है, कैसा है, पंडित की क्या विशेषता होनी चाहिए और पंडित कैसा हो सकता है, कैसा बनना है, कैसा क्या करना है, सब रकम इसमें हम बताएगा। भगवान ने ये देह दिया है, इसको कोई पंडित प्राप्त कर ले उसको कहते हैं पंडिता। पंडित यानी विवेकी पुरुष, जिस पुरुष पे विवेक हो उसको पंडित कहा जाता है। पंडा शब्द से पंडित शब्द बनता है, जो जैसे आपने सुना होगा कि जगन्नाथपुरी के पंडा, बद्रीनाथ के पंडा, केदारनाथ के पंडा, काशी के पंडा, अलग अलग पंडा, उन्हीं पंडित पंडा शब्द से पंडित शब्द बना है। और पंडा किसे कहते हैं? पंडा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पंडा एक विशेष प्रकार की बुद्धि का नाम है। कोई व्यक्ति का नाम पंडा नहीं हो सकता है, एक विशेष प्रकार की जो बुद्धि है उसका नाम पंडा है। जिस बुद्धि में सत और असत का निर्णय हो चुका हो,
0: यानी कि सच और, यानी जो निर्णय ले पाए कि सच और ना सच,
1: सच और झूठ,
0: तो हाँ सही बात, अब
1: सत और असत का निर्णय हो चुका हो, उस बुद्धि का नाम पंडा है। और ऐसी पंडा नाम की बुद्धि जिसको प्राप्त हो चुकी हो वह है पंडित।
0: चलो हम सब आज के जो हमारे विषय है, विषय का नाम जो रखा गया है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के ओर बढ़ रहे हैं और आप भी तैयार हो गए होंगे कि पूर्णिमा के बारे में कुछ सुनाने के लिए। अभी हम सब ये पूर्णिमा के बारे में जरूर उस ओर बढ़ेंगे।
1: हाँ,
0: तो पहले उस ओर बढ़ने से पहले थोड़ा से हम सब पहला यानी कि पूर्णिमा के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते तो ठीक होता, क्योंकि ये ज्योति का प्रकाश है। कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, ये हमारे लक्ष्य है कि हमारे जीवन के ज्योति जो जल रहे हैं इसमें कोई ना कोई प्रकार से कुछ ना कुछ प्रकाश आ सके
1: जी।
0: खास करके ये बात है कि ये जो जीवन हम जीते हैं, जीवन जीने को कितना खूबसूरत है, बस जीवन जीने का हम तरीका सीख ले, यही हमारा लक्ष्य है कि कुछ ना कुछ हमारे संतों द्वारा जो हमारे लिए बनाए गए हैं वो आप सबके लिए यहाँ रेडियो फाहोन हिंदुस्तानी द्वारा आपके लिए और हम सब प्रस्तुत कर सके। ये कार्यक्रम ना कि हॉलैंड देश में सुना जाता है, भारत में और सूरीनाम देश और यहाँ तक अमेरिका तक भी सुना जाता है। पूर्णिमा ये जो आज का विषय रखा गया है उस ओर बढ़ेंगे भाई राजेंद्र जी।
1: जी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा का क्या विधान है, कैसा है, उसके उपलक्ष में हम कुछ बताने जा रहे हैं। पूर्णिमा का दिन चावल का दान शुभ होता है, चावल का दान करना चाहिए पूर्णिमा का दिन। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है, पूर्णिमा का दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत हो जाती है।
0: ये तो बड़ा सुंदर बात आपने कहे कि चावल एक इतना और महत्वपूर्ण बात आपने कहा है कि चावल का दान और करना चाहिए शुभ होता है। ऐसा हम सब तो ये बात, ये सूरीनाम देश में हम सब तो ऐसे नहीं करते, पर ऐसे भारत में किया जाता है।
1: हाँ, भारत में ऐसा किया जाता है कि पूर्णिमा का दिन चावल का दान करते हैं और पूर्णिमा का दिन स्नान करने के लिए गंगा जल मिलाकर कुश हाथ में लेकर स्नान भी करते हैं। भारत तो बड़ी पवित्र जगह है, वहाँ गंगा बह रही है और पूरा नॉर्थ ईस्ट पूरब से लेकर और पश्चिम तक आती है, तो बहुत सारे लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तकरीबन मुझे लगता है कि सब लोग इसमें स्नान करते होंगे।
0: यानी कि महीना में एक बार ऐसा होता है पूर्णिमा, लोग स्नान यानी कि गंगा स्नान करने को जाते हैं। तो जैसे हम तो यहाँ हॉलैंड में रहते, क्या हम ऐसे यहाँ पर कुछ कर सकते हैं इसके बारे में?
1: हाँ, जब आप भारत जाते हैं, और मैंने देखा यहाँ पे जो भारत के स्टोर हैं, इंडियन स्टोर में गंगा जल मिलता है, तो उस गंगा जल को थोड़ा सा जिस बाल्टी में आप नहाते हैं उसमें आधा गिलास डाल दीजिए और उसमें एक बाल्टी पानी भर के फिर उस जल से स्नान कर लीजिए, तो वो भी गंगा स्नान के थोड़ा सा माना जाएगा।
0: यानी कि आप पूर्णिमा को घर पे बैठ करके हम अपने घरे में जा करके और जल से स्नान कर सकते हैं और गंगा स्नान हो गया।
1: हाँ, गंगा जल मिला के उस जल में, जो सादा जल है उसमें थोड़ा गंगा जल मिला के उस जल से स्नान कर सकते हैं। तो गंगा जल की सुविधा नहीं है, गंगा की सुविधा नहीं है, हम लोग कुछ तो कर ही सकते हैं
0: भाई राजेंद्र जी, क्योंकि इसके बारे में हम भी कुछ सोचे। कितने जगह पे लिखा हुआ है भी कि मन जब चंगा तो कटौती में भी गंगा।
1: मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती किसको कहते हैं
0: बता दो आप।
1: हाँ, जो चमार लोग होते हैं और वो जूता बनाते हैं, उनके एक बहुत अच्छा उनका एक जो
0: मूजी कहते हैं उसे, जो चमड़े से काम करते हैं,
1: चमड़े का काम करने के वाले लोग हैं उनको मोची कहते हैं। मोची के आगे एक पानी रखने वाला एक वो लकड़ी का बना होता है, उसको कठौती कहते हैं।
0: ओ चलो, हम उसके बारे में थोड़ा से और ध्यान देते हैं राजेंद्र जी। ये बड़ा सुंदर आप हमें ख्याल दिवा दिए कि ऐसा हुआ। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और आज के जो विषय है पूर्णिमा, और जैसे कि भाई राजेंद्र जी ने कह रहे हैं कि मूजी के दुकान के आगे कटौती जो अभी बताया गया, तो वहाँ हमें एक वृतांत याद आ गया राजेंद्र जी। पहले क्यों ना हम उस वृतांत के ओर बढ़ने से पहले, मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी, उसे सुन लेते हैं।
1: जी जरूर,

0: मानो तो मैं गंगा हूँ, न मानो तो बहता पानी। बताइए संजय जी, अब आप क्या बताएंगे कि गंगा के विषय में कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो आप बताइए, थोड़ा गंगा के विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए।
1: जरूर जरूर राजेंद्र जी, जरूर। पर हमारे पास टेलीफोन भी आ रहा है, और टेलीफोन आ रहा है भाई किशुन जी, कहते कि भाई पूर्णिमा के बारे में तो आप बात कर रहे हैं, पर अमावस्या के बारे में तो कुछ तो बोलो। तो भाई क्षमा चाहता हूँ, अभी तो समय देखो कितना जल्दी जल्दी भाग रहा है, अभी हम लोग को कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और हम सब अमावस्या की ओर बढ़ेंगे तो आज ये वाला हम सब नहीं कर पाएंगे। तो बस इंतज़ार का फल में मेवा होता है भाई, थोड़ा से इंतज़ार करो। जरूर कोई आज हमारे कार्यक्रम के सुनने वाला श्रीमती और जो हम सबको तेईमा देते हैं और तैयार करते हैं, तो वो भी सुन रहे हैं कार्यक्रम और इसके इस बात के बारे में भी चिंतन करेंगे। पर भाई गंगा माँ के ओर बढ़ने से पहले शांता जी, आप जब गंगा जल आपके पास नहीं है और आप पूर्णिमा हैं और गंगा स्नान करना है, तो आप क्या कर सकते हैं?
2: वही मैं भी कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास गंगा जल नहीं है उस समय पे, तो आप नॉर्मल पानी जैसे कान में है ओके लेकर, अंजलि में लेकर, जस हाथ से लेकर तीन बार हर हर गंगे बोल कर वो बाल्टी में डाल, और तो वो भी गंगा के समान हो जाता है।
1: कि मानो तो माँ गंगा है, ना मानो तो बहता पानी।
2: और गंगा जल ना है खाली सिर्फ स्नान करने के लिए, अगर आप पीना भी चाहते हो तो अपना गिलास जो ना उसमें पानी भी भर के उसको भी तीन बार गंगा हर हर गंगे कह कर भी उसको भी धारण कर सके, पी सके।
1: शांता जी भी हम सबको यहाँ पर अपना संदेश दे रहे हैं। भाई राजेंद्र जी, जैसे कि अभी हमने कहा था कि मानो तो माँ गंगा, ना मानो तो बहता पानी, ऐसा हुआ कि पूर्णिमा के एक दिन एक वृतांत है, जबकि एक पंडित जी और गंगा स्नान करने को जा रहा था
0: जी।
1: धीरे धीरे चल रहा था गंगा के तट के ओर, और गर्मी का समय था
2: जी।
1: और अगर आप जब भारत के बारे में सुनो और गर्मी का समय सुनो, तो बहुत गर्म होता है, वहाँ का पत्थर आदि बहुत गर्म होते हैं। वो पंडित जी चल रहा है उस ओर गंगा के तट के ओर, और चलते चलते पंडित जी का हुआ चप्पल टूट, चप्पल टूट गया। पर कहावत है कि जो मन शुद्ध है तो रास्ता अपने आप निकल आते हैं। जैसे कि चप्पल टूट गए तो सामने किसका दुकान देखते हैं? मूची का, मूची जो चमड़े से काम करते हैं जो, और जाकर के वो जूता का दुकान देखे, और पंडित जी जो जा करके और दुरिये से चप्पल निकाल करके फेंकते हैं मूजी के पास। यानी कि थोड़ा अभिमान तो है दोस्तों, चप्पल निकाल करके फेंकते हैं मूजी के पास, और मूजी क्या करते हैं, दौड़ करके चप्पल पकड़ लेते हैं, पकड़ करके और चूमने लगते हैं, और चूमते चूमते कहते हैं कि प्रभु मैं धन्य हूं कि आप हमारे दुकान से आए। जब इस बात को कहते हैं तो पंडित जी भी धीरे धीरे जो अभिमान था गलने लगा। मूची ने बड़ा प्रेम और से चप्पल को बना करके और खुद पंडित जी को पांव में पहनाते हैं, पंडित जी को पहनाते हैं, तो पंडित जी उससे पूछते हैं कि भाई कितना हुआ ना, कोई काम करे तो उसे और उनका दक्षिणा देना चाहिए। तो मूची कहते हैं कि पंडित जी मैं तो धन्य हूं कि आप हमारे दुकान से आए हो, आज इतना खुशी की बात है, और मुझे इसके लिए कोई प्रकार के और दक्षिणा नहीं चाहिए।
0: यानी कि पंडित की इतनी बड़ी अच्छी उन्होंने इज्जत करी है वहां पे,
1: बहुत मान सम्मान हो गया ना,
0: मान करेला।
1: तो आगे चलते है, पंडित अब आशीर्वाद दे करके निकलने वाला था, तो मूची क्या करते हैं, कहते कि पंडित जी आप मैया के पास जा रहे हो? तो पंडित जी कहते हाँ, स्नान करने को पूर्णिमा है, स्नान करने को जाना है। जो व्यक्ति अपने जेब में हाथ डालते हैं और जो भी यानी कि पैसा उसके जेब में था निकाल करके पंडित जी से प्रार्थना करता है कि पंडित जी मेरा एक प्रार्थना है आपसे, ये आप मैया को दे देंगे? और मैया को तभी देना जब वो लेने चाहते तो। पंडित जी वहां से लेकर के और चल जाते हैं गंगा तट पे, खूब स्नान करते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं, अपना कार्य को करते हैं। अपना कार्य करके तब वो ख्याल आया कि ओ हो, आते समय मुझे कोई मिला था ना, और उन्होंने कुछ दिया था करने को। पंडित जी वो द्रव्य जो पैसा मिला था वो लेकर के माँ के ओर देख करके और कहते, माँ आते समय मुझे एक व्यक्ति ने कुछ द्रव्य दिए हैं आपको देने के। और जैसे ही इस बात को कहते हैं तैसे जल से एक हाथ निकल आता है और आकाशवाणी होता है कि दीजिए मेरा भक्त का। हाथ जब ऊपर जल से आता है तो पंडित भी गए घबराई। उसी समय दूसरा हाथ भी निकल आता है जल से, और दूसरा हाथ में एक इतना सुंदर कंगन जिसमें हीरे से और यानी कि खूब सजाए हुए है, और आकाशवाणी होते हैं कि ये मेरे भक्त के लिए। ऐसा हुआ कि पंडित जी तो घबरा गए और वो कंगन को लेकर, जबकि रास्ता 2 घंटा का था, राजेंद्र जी कितना देर में पंडित जी घर पे पहुंचे? बहुत जल्दी पहुंच गए,
0: आधे घंटा में पहुंच सके।
1: वो अपने घर से पहुंच करके और जल्दी अब कुछ खुशखबरी सुनाना है तो अपने पंडिताइन को बुलाते हैं और उन्हें कहते कि देखो क्या मिला, जबकि माँ क्या कहे थे, मेरे भक्त के लिए। पंडित के पत्नी देखते हैं और देख करके ये सोचते कि ये तो हमारे बस का चीज नहीं है, ये राजघराने के लिए है, क्यों ना हम इसे लेकर के राजा जी के पास चलते हैं और राजा को दे देते हैं, वहां हमारा सम्मान होंगे। पति पत्नी दोनों पंडित और जाकर के राजघराना में राजा के पास ये वृतांत को सुनाते हैं और उन्हें ये सुंदर सा कंगन को दे देते हैं। जब सुंदर सा कंगन को राजा को दे करके राजा उनको बड़ा आदर सत्कार किए, विदा किए, तो राजा अपने रानी को बुलाते हैं। रानी को बुला करके और कहते देव हाथ, और रानी हाथ उठाते तो रानी को पहनाते हैं कंगन। रानी देखकर आश्चर्य हो गए और अति खुश हुआ, और रानी क्या करते दूसरा हाथ उठाते हैं। दूसरा हाथ उठाते तो राजा बोले कंगन तो सिर्फ एक है, तो रानी को लगा गुस्सा कि हाथ में कंगन। ये बात होता है राजेंद्र जी कि हमारे पुरखों ने हम सबको बड़ा सुंदर सुंदर पुराने समय से चीज सिखाए हैं
0: जी,
1: कि जो महिलाएं होते सुबह और जाकर के नहा स्नान आदि करके और जल आदि अर्पित करते, कोई माता के, कोई सूर्य देवता के, कोई शंकर भगवान के, तो अपने हाथों में, ये पहले के हम लोग को सिखाया गया है कि कम से कम दोनों हाथों में

0: अरे इतना जल्दी राजा प्रसन्न हो गए?
1: हाँ,
0: तो जाते तो राजा कहते पंडित जी से कि जाओ, हमें एक कंगन ऐसे ही और होना चाहिए। पंडित जी कहते राजा जी से कि चलो हम कोशिश करेंगे और जा करके बहुत फिर स्नान करते हैं, और स्नान करके जितना कोशिश किया बस जल में होते हुए पसीना से बुड़ गया। माँ कोई व्यापारी थोड़े है, माँ से व्यापार करने को गए तो व्यापारी माँ थोड़े है। तो वहां से मुंह सूख गया और सूखा मुंह लेकर के अब जा रहे थे घरे, तो वही दुकान के पास पास हो रहा था, वहां कौन खड़ा था? वही मुझी जो अपना दुकान के आगे खड़ा था, और देखा पंडित जी आ रहे हैं तो दौड़ करके उनके चरण पकड़ लिए और पंडित जी को पालगी करते हुए ये प्रश्न किया कि प्रभु माँ तो मिले ना। उनको क्या पता था कि क्या हो चुके हैं। पंडित जी ने सारा वृतांत वो मूची से यानी जो चमड़े से काम करते हैं उनसे बताए, और इस बात को जब सुन करके मूची तो कहने लगे कि पंडित जी इतना छोटा बात के लिए आप इतना सूख गए हो। और जो जैसे कि राजेंद्र जी अपने अभी कहे थे कि कटौती में पानी, जो दुकान के आगे कटौती रखे गए थे, बोले उसमें दृष्टांत डालिए, और जा करके पंडित जी जब उसमें दृष्टांत डालते हैं तो देखते हैं उसी प्रकार के ढेर सारे और कंगन हीरो से। पंडित जी को ये ख्याल आ गए, और कहने के तात्पर्य ये है दोस्तों, जब हम विश्वास कुछ पे करें तो चाहे अभिमान क्यों ना हो, माँ गंगा उनका पवित्र कर देते हैं। भाई राजेंद्र जी, जिसका साथी है भगवान,
1: उसका साथी है भगवान। मोहम्मद रफ़ी जी ने बहुत ही अच्छी आवाज़ में, बहुत ही मधुर आवाज़ में इसको गाया है, जिसका साथी है भगवान। तो भगवान सबका साथी है, और कैसे मोहम्मद रफ़ी जी ने एकदम इसको और अच्छे से गाया है।

0: जिसका साथी है भगवान तो उससे कौन करेगा कुछ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जिसका साथी है भगवान, बताएं संजय जी पूर्णिमा के दिन का थोड़ा और प्रकाश डालेंगे हम। हाँ अब
1: तो जरूर उस पे थोड़ा से और संदेश दिया जाएगा। कहावत है कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार एवं हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। शांता जी भी कुछ तैयार करके रखे, शांता जी हो सके तो हमारे कार्यक्रम के कुछ बच्चों भी सुन रहे हैं और नीदरलैंड्स में हो सके तो कुछ हम सबको सुनाने।
2: जी हम नीदरलैंड्स में कुछ कहने जा रहे हैं फॉलोमान के बारे में। एंड दैट खत अस फॉलो द फॉलोमान है इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ऑन दैट द मान एंड द सन ऑफ एन लेनस्टान रोन द फॉलोमान एंड न्यू मान सेंड द खतेदग क्रॉक्टग ook wel springtij genoemd. Dat springie
1: woord. Arre, hem die sarmakka kehe, to springie mein wahan par pani chahar jata hai, ekdam peti talak.
2: Jee, hum log kheti bari karat hai, to bhi boord jata sab khawas. Door de weergesteldheid, tegen deze tijd gaat het veel regenen. En daardoor zijn er ook heel veel overstromingen.
1: Chanta ji, jo Nederlands mein hum sab ke liye kuch na kuch bataye hai. Bhai Rajender ji, aap kuch kehne wale the ki kuch aur hone wala hai ki is Purnima ke liye.
0: Haan, Sanjay ji, aap jaisa ki Chanta ji ne abhi bahut hi acha Dutch mein bataya. Bahut sare log yahan Dutch bhasha aur Suriname mein sunte hain to unko bada acha lagta hai, unko bada mohi lage. Purnima ke din Satyanarayan ki katha सुननी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की तोरण बांधनी चाहिए। आम के पत्तों की तोरण यानी आम का पत्तों की माला कहते हैं। ऐसा करने से भगवती माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और ऐसा करने से भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और पूर्णिमा का दिन भगवान शिव की पूजा करने से भी फलों की शुभ फलों की प्राप्ति होती है और विशेष अनुकम्पा बनी रहती है।
1: राजेंद्र जी, आपने ये तो मैं देखा हूँ इंडिया में जो आम के पत्तों के बना करके अपने द्वारी पे यानी कि फोर द्वार लगे यानी पहला दरवाजा लगे टांगते हैं, तो इसी कारण टांगते हैं
0: जी
1: पूर्णिमा को। ओके ओके, इसके बारे में मुझे ये ज्ञान नहीं था। और दोस्तों, जो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है, अपने जीवन के ज्योति के लिए कुछ ना कुछ प्रकाश यानी कि ना सिर्फ आपके पर हमारे भी कुछ ना कुछ इसमें संदेश हो जाता है। आगे आपने कहा कि यहाँ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजन और करने से शुभ फलों को प्राप्त होती है और विशेष अनुकंपा भी रहती है, यानी कि शिव जी का भी पूजन पूर्णिमा को किया जा सकते हैं।

0: पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। कहते हैं पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का वास होता है। बताइए संजय जी, अब आप इसमें क्या प्रकाश और डालना चाहते हैं?
1: ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम हम सब आपके लिए प्रस्तुत करते हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से, और हमारे सहयोग देने वाले मेस्टर ज्ञानदेव जंगली जी, जो एक फिलोसोफ भी है और हम सब के लिए भी कुछ ना कुछ लिख करके और भेजते हैं। उसमें वैसे तो काफ़ी लंबा है, पर हम छोटा से उसमें कुछ वृतांत डालेंगे, क्योंकि जो हमारे ओम तेईकन है दोस्तों, ये जो ओम तेईकन है तो उसमें देखो, देखा जाए तो यहाँ पर हमें पांच प्रकार के उसे संदेश दिए हैं। उसमें से सिर्फ एक ही पे थोड़ा से हम ध्यान देंगे कि जो ओम हम सब आ उ एम से लिखते हैं, ये फॉलहंस्ड यानी कि ईश्वरीय लिख के अनुसार कि दो आ और उ जो मिलाते हैं तो उससे बनते हैं ओ, और यो आ उ एम से बना हुआ ओम है तो पहला अक्षर ब्रह्मा जी के जो सतगुणों को यानी कि द लिख्त एंड इंसिख देने वाले, उ जो विष्णु जी के यानी कि रजगुणों के एक्टिविटेट एंड लैदन, और एम जो ओम का होता है वो महेश का, और वो तमोगुणों को यानी कि स्थनासिस एंड दैस्तनेस जो हमारे फरवाइडर यानी कि निकालने वाले को। तो दोस्तों ये छोटा रूप में हमारे जो मेस्टर ज्ञानदेव जी जो हम सबको यहाँ पर बनाकर भेजे है फाइव बतई कने सफान, तो हम सब नहीं कह पाएंगे आपसे, पर जरूर छोटा रूप में कहे गए। और राजेंद्र जी, हम देख रहे हैं कि शांता जी भी तैयार है कुछ कहने को, तो शांता जी सुना